तो श्वास से निर्मित होना चाहिए, सांसों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। श्वास से निर्मित कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम होता है तो हमें अपने आप में एक जागरूक की स्थिति बना देता है, एक जागरूक को उत्पन्न कर देता है। एक जागरूक की स्थिति इस तरीके से पनपने लगती है जब हम पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाते हैं, जान जाते हैं कि यह हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायामों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत और भ्रामरी, भस्तिका, बहुत सारे ऐसे प्रणव प्राणायाम, सारे प्राणायामों का जो मिश्रण होता है वह जागरण में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कोई भी अगर आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें उसके प्रति चेतावनी जरूर से होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हर किसी की व्यक्तित्व, हर किसी का शरीर, हर किसी के शरीर के ऑर्गन्स जो काम करने की शक्ति पर निर्भर करते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हर एक मनुष्य का रूपरेखा, चलन, बोलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, खान पान से सभी कुछ अलग होता है, हम यह कैसे मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार हर एक आसन, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होता है। कोई आसन, कोई प्राणायाम हमें उतना अंदर से प्रभावी नहीं बना रहा है या प्रभाव से परिपूर्ण है, तो हम जान जाते हैं कि यह आसन हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के, नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपकी योगनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आर्य समता लेकर के आती है। ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सक का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाएं। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों के मत से मिलता हुआ है। इसे भारत

आज की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझने बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनसे शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णतः नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती है और हम दवा लेने के लिए जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम

जय श्री हरि। सद्गुरु चरणों में सादर वंदन। आप सभी आत्म जिज्ञासुओं को प्रेम भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM पर अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जहां हर सुबह केवल सूरज नहीं उगता बल्कि आत्मा में भी प्रकाश फैलता है, जहां हर शब्द एक मंत्र की तरह मन को छू जाता है और हर भाव ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है।

आज का पहला विचार है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो, जो कि भगवान बुद्ध का कहना है। सच ही तो है, जब मन हरि नाम में लीन होता है, जब इंद्रियां वश में होती हैं और जब हृदय में प्रभु का निवास होता है, तभी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है, सच्चा सुख, सच्ची शांति, आत्मिक शांति। वो शांति जो मंदिर की घंटियों में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में है, वो मौन जो प्रभु की उपस्थिति का संदेश देता है, वो सन्नाटा जिसमें परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। तो आइए इस भक्तिमय सुबह में अपने मन को हरि चरणों में अर्पित करें, अपने चिंतन को शुद्ध करें और आत्मा को उस दिव्य शांति की ओर ले चलें, जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, केवल प्रेम, प्रकाश और परमात्मा है।

शांति वही है जहाँ भगवान है, और भगवान वही है जहाँ भक्ति है। यो माम पश्यार्थ सर्वत्र सर्वम चा मई पश्यति तस्यहं ना प्रणश्यामि साचा मेना प्रणश्यति। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त हर जगह मुझे यानी परमात्मा को देखता है और हर चीज में मुझे अनुभव करता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। आज के दिन की आत्मिक तरंग को पूर्ण करने के लिए आइए सुनते हैं ये भजन।

आइए अब आप सभी को एक कहानी के माध्यम से आत्मिक शांति की ओर ले चलती हूँ। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में गए। वहाँ एक युवक ने उनसे पूछा, भगवान मैं कई मंदिरों में गया, अनेक साधुओं की सेवा की, ध्यान किया, लेकिन अब भी मुझे शांति नहीं मिलती, क्या कारण है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा, इस दीपक को देखो, ये तब तक नहीं जल सकता जब तक बाती भीतर न हो और बाती में तेल न डाला जाए। ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारी शांति की खोज बाहर है, तब तक वह कभी स्थायी नहीं होगी। असली दीपक तुम्हारे भीतर है, बस उसे प्रभु प्रेम और आत्मचिंतन से जलाना है। युवक मौन हो गया और यहीं से उसकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। और इस कहानी के बाद एक और निर्गुण, मन रेतु काहे न धीर धरे।

प्रभु से जुड़ने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। बस 5 मिनट मौन बैठें, सांसों को देखें, अपने मन की गति को महसूस करें और धीरे धीरे ओम शांति शांति शांति इसका जाप करें। हर दिन ये छोटा सा अभ्यास आपको भीतर के मंदिर तक ले जाएगा, जहां ईश्वर सदा विराजमान है, और इस ध्यान के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करें। साथ ही साथ सुनिए प्यारा सा भजन।

आइए अब जानते हैं कि भारतीय दार्शनिकों एवं संतों के अनुसार आत्मिक शांति का मतलब क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। महात्मा गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पहले स्वयं के भीतर वो शांति विकसित करनी चाहिए जो वह संसार में देखना चाहता है। संत कबीर के अनुसार जहां खोजो तहां नाहीं, जहां नाहीं तहां पाइया। मतलब शांति बाहर खोजने पर नहीं, भीतर उतरने पर मिलती है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो अहम शिवो अहम। मतलब मैं मन बुद्धि या अहंकार नहीं, मैं तो शुद्ध शिव स्वरूप आत्मा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जब मन शांत होता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। यानी सभी का मानना बस एक ही है, जब मन हमारे वश में होता है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है।

आइए अब आपको ले चलते हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर, जहाँ पे आत्मिक शांति के कुछ विचारकों का विचार मैं आपसे साझा करूंगी। मार्क्स आरेलियस के अनुसार, जो स्वयं से संतुलन में रहता है वो पूरे ब्रह्मांड से संतुलन में होता है। लाओत्सु के अनुसार, जो कि ताओ दार्शनिक है, मौन एक महान शक्ति का स्रोत है जो आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। एकहार्ट टोल के अनुसार, आप शांति अपने जीवन की दिनचर्या को पुनर्व्यवस्थित करके नहीं, बल्कि ये समझ कर पाते हैं कि आप सबसे गहरे किस स्तर पर हैं। अर्थात आत्मिक शांति का जो जुड़ाव है वो कहीं अलग से नहीं, हमारी खुद की सोच और हमारी मना स्थिति पर निर्भर करता है।

शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये एक अवस्था है आत्मा से जुड़ने की। जब हम भगवान की ओर देखते हैं तो भीतर की हलचल एकदम शांत हो जाती है। आत्मिक शांति हर धर्म और आध्यात्मिक परंपरा का मूल उद्देश्य है। सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वे वेद हों, कुरान हो, बाइबल हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक या जैन अवेस्ता, आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से एकता और आंतरिक संतुलन की बात करते हैं।

आइए अब आपको धार्मिक दृष्टिकोण से शांति के महत्व की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि में लिखित कुछ वाक्य आत्मा और परमात्मा की एकता में निहित होती है शांति। भगवद गीता के 6 अध्याय के 15 दोहे में लिखा है, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधि गच्छति। यानी ध्यान में लीन योगी जब मन को स्थिर करता है तो वह परम शांति को प्राप्त करता है जो भगवान में स्थित होती है। उपनिषद के अनुसार शांति ही शांति ही शांति ही। ये त्रिविध शांति पाठ आत्मा, शरीर और मन के संतुलन की अभिव्यक्ति है। कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह पर संपूर्ण भरोसे और तस्लीम यानी समर्पण में है शांति। कुरान पाक की सूरा 13 में लिखा है, जान लो दिलों को सच्ची तसल्ली अल्लाह के जिक्र से मिलती है। सलाम शब्द ही शांति का प्रतीक है। इस्लाम का मूल संदेश भी शांति में जीवन है। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और प्रेम में है शांति।

में लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। रोमन्स के अनुसार जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए तो परमेश्वर से मेल मिला और उसके द्वारा शांति। बौद्ध धर्म तृष्णा का अंत और निर्वाण की प्राप्ति है शांति। धम्मपद में वर्ष 5वें में लिखा है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, क्षमा से वैर समाप्त होता है। यह सनातन नियम है और बुद्धवाणी के अनुसार जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चे विजेता हैं और उन्हें ही आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यहूदी धर्म यानी तनाख के अनुसार यहोवा अर्थात ईश्वर के साथ चलना और धर्मानुसार में जीवन जीना ही है आत्मिक शांति। तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर ले चलती हूँ। नाम सिमरन यानी ईश्वर का स्मरण और गुरु की वाणी पर चलना ही है आत्मिक शांति। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार मन शांत होवा वाजे नाद, अर्थात जब मन शांत होता है तभी भीतर का दिव्य नाद सुनाई देता है।

तो आत्मा परमात्मा की एकता है आत्मिक शांति। इस्लाम में अल्लाह के जिक्र व तवक्कुल से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास व प्रार्थना से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छाओं के अंत और ध्यान से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। सिख धर्म के अनुसार गुरुवाणी, नाम सिमरन, सेवा से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा, संयम और आत्मानुशासन से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। यहूदी धर्म के अनुसार ईश्वर पर विश्वास और धार्मिक जीवन से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। तो आइए एक आत्मिक शांति की ओर ले चलते हैं आपको इस भजन के माध्यम से।

तो आज हमने जाना कि सभी धर्म हो या कोई भी हो, कहीं से भी, सभी एक ही बात करते हैं और एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। ईश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब भीतर का द्वार खुलता है तो आत्मिक शांति ऐसे बरसती है जैसे गर्मी में वर्षा। आज का मंथन। शांति का मतलब संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि इसका मतलब संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की क्षमता है, जो हमें अध्यात्म के माध्यम से आसानी से प्राप्त होती है। जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो हमारा मन चित्त पूरी तरह से शांत होता है, और उसके बाद हम अपने दिनचर्या को, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9176। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: सलाम इश्क इश्क इश्क, और आज फाइनली सलाम संडे संडे संडे आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग वाला जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज है संडे मॉर्निंग, यानी कि पूरी तरह से आपकी मॉर्निंग, पूरी तरह से मेरी मॉर्निंग, पूरी तरह से हमारी मॉर्निंग। सो चलिए इसी खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत करते हैं। आज के बेहद खूबसूरत अंदाज में आए आज के थॉट ऑफ द डे का, और जाने की कोशिश करते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आज का थॉट ऑफ द डे हमसे क्या बता रहा है। सो आज का संडे स्पेशल थॉट कह रहा है कि आपका वक्त लिमिटेड है और आपकी आत्मा को आप संतुष्ट करें, समाज को नहीं। देखिए, सुनने के बाद कुछ विरोधाभास भी उत्पन्न होने वाले हैं आपके अंदर, और आप सवाल भी पूछने वाले हैं खुद से और इस थॉट से भी। तो जरा गौर से सुनिए, आज का थॉट कह रहा है कि आपका वक्त जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। आप अपनी आत्मा, अपनी सोल को आप सेटिस्फाइड करें, संतुष्ट करें, समाज को नहीं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहीं कुछ है तो वो है समाज को संतुष्ट करने की भावना, जो कि बहुत तेजी से उत्पन्न तो होती है लेकिन एक्चुअल में हम कर नहीं पाते, और एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब जब तक हम इस फेर में रहते हैं तब तक हमको जो जैसे चाहता है वैसे नचा लेता है। हम समझते हुए और जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हमको लगता है नहीं, वी आर बाउंडेड। सो कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम समझ लेंगे कि हमारा वक्त कितना ज़्यादा सीमित है, कितना ज़्यादा लिमिटेड है, और हमें अपनी ही चीज़ों को लेकर के हमको सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना है, देन हमको समझ में आएगा कि ये हमारा वक्त है, ये हमारी लाइफ है। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत कुछ ऐसा करते चले जाते हैं जिससे हम समाज को संतुष्ट तो करते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। सबको लगता है कि हाँ, जैसा सब कर रहे वैसे तुम भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ आप अलग करते हो आप अलग दिखने लग जाते हैं, आपके बारे में 40 बातें अलग से होने लग जाती है ना, कि आप ऐसे, आप वैसे, आपने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद फिर कोई और मिल जाता है, क्योंकि समाज के पास तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ तो कहते ही रहना है। लेकिन आज अगर हम अपना कुछ कर लेते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है एक्चुअल में ये है कि हम उसको आराम से समझ लेते हैं, उसके बाद हमको कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हाँ, ये मेरा खुद का डिसीजन है, ये मेरा खुद का फ़ैसला है, इसलिए कहीं ना कहीं हम इससे गुरेज नहीं करते, और हमको जो कुछ भी मिला है इस डिसीजन से वो हमारा अपना है। सो हमें किसी को कोई ब्लेम नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं है, और सब मानते चले जाना है कि हाँ भाई, ये हमारी चीज़ें हैं, और हमने लाख किसी के कहने से कुछ की है, सो डेफिनेटली लाइफ टाइम ऐसा लगता है कि हम अपने साथ क्यों ना इंसाफी कर गए, हम ही मिले थे क्या अपने साथ ऐसा करने के लिए, क्योंकि अंदर से मन ने हमेशा कुछ और कहा और बाहर से हम वही करते गए जो लोगों को सही लगा। वैसी सिचुएशन में हमको ये लगता है कि यार, काश को अपनी चीज़ों को हमने किया होता, क्योंकि ये वक्त तो अब जा रहा है, यह चला गया है, एक फेज़ तो लाइफ का गुजर गया है जिसे वापस तो कोई भी नहीं ला सकता है। हाँ, ये बात आज अगर समझ में आई है तो शायद अब जो भी वक्त है, क्योंकि देखिए, वक्त का जब कुछ भी पता नहीं तो आगे जो कोई भी वक्त मिल रहा है उतना ही कीमती है, तो इसलिए आज से, अभी से जो कुछ भी समझ में आया है और हमको लगता है कि हाँ, सच में हमारा वक्त बहुत लिमिटेड है और हमको अब हर वो चीज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमें लगता है हमारे लिए बेहतर है। और वैसे भी कहते हैं ना कि गलतियाँ करने से इतना क्या डरना, इतना क्यों डर डर के जीना कि गलती हो जाएगी। आप कुछ करते हैं तो गलती तो होना स्वाभाविक सी बात है, और गलती ही तो प्रोसेस है, गलती ही तो जर्नी है, बिना जर्नी के कौन सी मंजिल मिल जाती है, कभी नहीं। उतना ही अगर नेचुरल हम इस बात को देखेंगे, जितना ही कुछ पा जाना, तो शायद उस दिन से हम ये गलतियों से और जिसको हम अनसक्सेस कहते हैं उससे हम डरना छोड़ करके हम जीना शुरू कर देंगे। और यही कह रहा है आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे। बहुत ही प्यारी बात है,
मुझे तो बहुत प्यारा लगा भाई कि सच में हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और इसको हम हर जगह नहीं लगा जा सकते, क्योंकि हर कहीं लगाने का मतलब ये है कि हमने सब कुछ अपना दे ही दिया है। हमारे पास होते हुए भी, हमारा होते हुए भी, हम कहीं अलग ही चल रहे हैं, हम अलग ही ड्राइव हो रहे हैं। यानी ट्रेन तो हमारी बट इंजन कोई और बना हुआ है, ये वाली बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये संडे स्पेशल थॉट बहुत ही अहम है और शायद ये आपको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ सच में टाइम जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। और ऐसी जब बात आती है तो बात यही ख्याल आता है कि यार हम उन चीज़ों से महरूम ना रह जाएं जो हमने हमेशा से करना चाहा था। सो आज का थॉट ऑफ द डे तो देखिए यही कहता है। अब आपका खुद का क्या मानना है आज के इस थॉट ऑफ द डे के बारे में, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल ये है संडे स्पेशल गुड मॉर्निंग गोंडा शो, जिसमें मॉर्निंग चौक आरजे अदनान लाइव मौजूद हैं और साथ ही साथ आज 10 से 11 गायक गोंडा विद आरजे अदनान में आपसे हम बातचीत भी करने वाले हैं। और आज तारीख भी जो है वो 9th of August है ना। तो चलिए भाई, ये टाइम लिमिटेड है और ये टाइम पूरी तरह से आपका है, इस बात को आज नहीं कभी भी भूलना नहीं है आपको। ये पूरी तरह से आपका टाइम है, सो आप खुद तय करने वाले हैं कि ये कैसे जाने वाला है, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार आप हैं और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले लेते हैं तो आपको चिंताएं नहीं होती, आपको एक्साइटमेंट होता है क्योंकि लाइफ को किधर मोड़ना है, फिर वो आप तय करते हैं।

0: हाँ जी, तो भाई एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जो आरजे नाना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए काफी सारे मैसेजेस भी आते जा रहे हैं चैट बॉक्स पर, यानी वो लोग जो फिलहाल आ चुके हैं 89.6 एफएम के थ्रू सुनते सुनते चैट तक, और आपने मैसेजेस भी भेजे हैं। और ख़ास बात तो यही है एप्लीकेशन की, आप जो कुछ लिखते हैं वो लाइव आपके फेवरेट आरजेस तक गोंडा एफएम के पहुंच ही जाता है।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई देखिए ना, कितनी सारी बातें आपसे आज कहनी है, क्योंकि आज संडे है और आज संडे के अकॉर्डिंग हमें आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, क्योंकि आज की वाइब अलग होती है, आज का टाइम आपका और हमारा होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर मैसेजेस। सो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए। सबसे पहले अनूप मिश्र जी ने भेजा है, समय के साथ बदलते हैं लोग, रिश्तों की पहचान करा देते हैं। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और साथ ही साथ अगला मैसेज जो आया है वो पूर्णिमा का आया है, संडे वाला। गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, और संडे की जो एक्साइटमेंट है वो मुझे सैटरडे वाले दिन से ही फील होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही शाम में यहाँ से घर जाता हूँ उसके बाद से ऐसा लगता है कल का शो, कल का दिन, वाह क्या बात है। बड़ा ही सुकून का दिन होता है आज का, बड़े ही चीज़ें इत्मीनान से चलती हैं और बड़े फुर्सत से हमारी आपकी बातचीत हो जाती है ना। एंड इसके साथ सविता दुबे जी का हरखापुर गोंडा से मैसेज आया है, सुप्रभात सभी को। आपको भी सुप्रभात, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। प्रीति जी का बहराइच से है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग विद संडे। क्या बात है, आपको भी वेरी लवली मॉर्निंग विद संडे वाला। एंड यस, पूर्णिमा ने लिखा है थॉट बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड मुझे उम्मीद है कि हम इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे पास का जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड है और अपनी सोल को हमको सेटिस्फाइड करना है, सोसाइटी को नहीं। यस, क्योंकि हम जिम्मेदार सोल के हैं सोसाइटी को लेकर। मुझे लगता है कि अगर आप खुद को बेहतर रख पाते हैं तो आप सोसाइटी में एक बेहतर बंदे बन पाते हैं, जो सच में सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होता है और सोसाइटी के लिए सर्व कर पाता है। तो कहीं भी कोई भी चीज़ करने से बेहतर है कि पहले खुद को कूल करें, खुद को समझें, क्योंकि जो अपने इम्पोर्टेंस को समझता है वो इंसान और इंसानियत को बहुत अच्छे से समझ ही जाता है। आइए फिलहाल चलते हैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने और इस शो की वाइब को थोड़ा सा ट्यून करके और भी ज़्यादा बढ़ाने, और उसके बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला हम जारी रखने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी कुछ आज लेकर आने वाले हैं संडे को, और भी ज़्यादा फंडे, और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग, और भी ज़्यादा मॉर्निंग चीयरफुल वाली वाइब देने आपको आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आइए सॉन्ग को एंजॉय करते हैं।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: अरे एक मिनट भाई, आपको एक बात याद है कि नहीं याद है भाई? फ्राइडे में भी लास्ट में आपने कहा था कि ये काम हमारा फला हुआ नहीं है और इसको हम संडे में पूरा करते हैं, याद आया? मैं उसी काम की बात कर रहा हूँ। बहरहाल काम क्या वो तो आप ही जाने, लेकिन जो काम संडे को आपने करने का सोचा था वो आज करना है, याद है कि नहीं है? हाँ, वो कोई भी काम हो सकता है। खैर, काम आपका है तो वो जानेंगे भी आप, लेकिन बस मुझे तो रिमाइंडर देना था, दे दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक खूबसूरत सा गाना भी आपको एक रिमाइंडर की तरह दे रहा है।

अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफस्टाइल से, अपने निकलते हुए बाहर पेट से और अपनी थोड़ी सी काहिली से, सो डोंट वरी, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स आज बताने वाले हैं जिन्होंने रियल में अपनी लाइफ को एक्सट्रीमली चेंज किया है, बहुत बड़ी चीज नहीं करके, कुछ कुछ स्टेप्स लेकर के, और इसको करने के बाद आज बहुत बदला हुआ रूप है जिनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन एक सवाल भी था आपके लिए। सवाल ये कि अब जो अगला गाना हम प्ले करने वाले हैं, ज़रा उसके सिंगर का नाम आप बताइए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमस ये गाना हुआ था, और मुझे लगता है अगर इस गाने के सिंगर का नाम आपने बता दिया तो आप डेफिनेटली म्यूज़िक लवर हैं। सो चलिए फटाफट से इस गाने को जो हम प्ले कर रहे हैं इसको ज़रा सुनिए और गेस करके बताइए कि इसमें किस सिंगर की आवाज़ है। उसके बाद हम वापस से आकर आपके रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि आप लोगों ने आखिर किस सिंगर को गेस किया है।

प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना। सवाल सुना तो जरा बताना। खैर आपने सवाल भी सुन लिया और इसका जवाब भी दे दिया है। सो देखते हैं भाई, हमने पूछा था कि इसमें किस सिंगर की आवाज, ये तो बता दिया, साथ में आपने मुझे लगता है म्यूजिक कंपोजर को भी मेंशन कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल किसने क्या लिखा है जरा ये भी पढ़ करके हम बता ही देते हैं। सो मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड आया इस क्वेश्चन को लेके वो सविता दुबे जी ने बोला, उदित नारायण अनुराधा पौडवाल ओके, जबकि दीपक जी ने हथियागढ़ गोंडा से बोला है सोनू निगम ओके, पूर्णिमा लिखती हैं आनंद राज आनंद ओके, एंड महेंद्र लिखते हैं उदित नारायण अनुराधा पौडवाल शायद ये हैं ओके, एंड साथ ही साथ प्रीति जी लिखती हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। अब देखिए सविता जी डाउट में, सबसे पहले आंसर भी दिया उसके बाद पूछती सवाल क्या था। भैया इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे पास हैं, सच में मतलब काफ़ी भोले से हैं। सो सवाल हमारा यही था कि किसकी आवाज़ है, लेकिन अच्छी बात है कि म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में आपने बता भी दिया है। सो फिलहाल जे बेशक आपने सही फरमाया, इसमें जो आवाज़ है वो उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी की है, जबकि संगीतकार और गीतकार दोनों ही जो है आनंद राज आनंद हैं। गीतकार में देव कोहली जी भी साझा जिम्मेदारी निभा चुके हैं और ये सॉन्ग जो है बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है कि भाई आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब इसी कड़ी में एक ऐसा सॉन्ग भी आपको सुनाने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। अच्छा, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सुनने के बाद कहते हैं कि दिन की शुरुआत कभी भी आप सुन लिए वहीं से लगता है दिन शुरू हुआ है। ऐसा ही एक ये सॉन्ग है, जैसा लगेगा कि दिन बस अब यहीं से शुरू हुआ है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861-9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाई आप ये कहते हैं कि 30 साल की एज में काफ़ी देर हो गई, और स्पेशली जब कोई जॉब स्विच करनी है या कोई नया काम स्टार्ट करना है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको लगता है काफ़ी देर हो चुकी है, अब तो आधी एज निकल गई। अजीब बात है। अगर मैं एक ऐसा चेंज जो कि 44 साल में एक शख्स ने किया और बाकायदा उसका प्रूफ दिया और आज दुनिया देखती है, इवन आज आप खुद देख सकते हैं, तो आप खुद हैरान होने वाले हैं। और कोई ये स्टार नहीं है, कोई डेडिकेटेड पर्सन नहीं कि इसी काम को ही करना था या वो ऐसी कोई लाइन से जुड़े हुए हैं। फिटनेस के बारे में तो वो सोचते भी नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम हैं। हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, क्या ही बात है, कौन कहाँ भागा जा रहा है, तरह तरह की इस तरह की बातें। सो चलिए आपको हम अब ले चलते हैं गोंडा से निकाल करके वेस्ट यूपी के बरेली में। और बरेली में फ़िलहाल जिस शख्स के बारे में हम बताने वाले हैं, दरअसल वो धीरज हैं। सो धीरज ने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, और वो किसी आम इंसान के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं और धीरज के बारे में आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो जिस एज को लेकर के हर कोई ये कहता है कि अब तो काफ़ी देर हो गई और इस एज में तो कुछ भी नहीं होने वाला, उसी एज में कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास फैमिली से नहीं, बिल्कुल आम फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और उसी सोच के साथ क्या कल से कर लेंगे, जैसा शायद मैं भी यही सोचता हूँ और आपके साथ भी सेम चीज़ है। सो बरेली के हैं धीरज, जो कि रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और आज अपनी फिटनेस से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन दरअसल इनका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि 18 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपनी सेहत को हमेशा बाद में देखेंगे कह करके टाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टालते हैं और हम टालते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, काम की भाग दौड़, गलत खाना पीना और ख़राब लाइफस्टाइल ने धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया। अब कहाँ 18 साल के बाद से शुरू हुआ ये सफ़र 44 साल तक इनके पास आ गया और 44 तक इन्हें शुगर हो गई, बीपी हो गई और कई जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर हम आज की डेट में भी देखें, अपने गोंडा में देखें, अपने पड़ोस में देखें, जहाँ भी हम रह रहे हैं, सो 22-23 साल की एज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही जो शुरू होती है, उसके बाद 33, 35, 34 और 44, 43 तक तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि भाई किसी का पेट बाहर निकला आ रहा है, कोई बीपी का पेशेंट हो गया है, कोई शुगर का पेशेंट हो गया, और यही चीज़ धीरज के साथ हुई थी। जी हाँ, पर हुआ ये कि भाई जब 44 साल की उम्र तक इनको शुगर, बीपी जैसी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो फिर इन्होंने एक दिन ख़ुद को मौका देने का फ़ैसला लिया। डॉक्टर और ट्रेनर के ही बताए हुए रास्ते में इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव किया, खान पान को सुधारा, रोज़ इन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना लिया, यानी जिम जाने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, सादा खाने लगे, बाहर के खाने पीने से बचने लगे, हेल्दी खाना प्रेफर किया। सो आज अगर आप देखेंगे 44 साल के इन्हीं धीरज को, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा कोई शख्स चेंज हो सकता है, और बिल्कुल आम इंसान, बेशक आम इंसान, क्योंकि ये जो हमने बात बताई ये कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइज़ कराती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, सही शुरुआत हमारी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलती है। सो ये बात बिल्कुल सच है, और शायद फिटनेस के अगर हटा करके हम देखें या फिटनेस को लेकर ही देखें, तो शायद आपके पास भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपका खुद का भी एग्जांपल हो सकता है, आपके पड़ोस में, आपके घर में भी कोई ऐसा एग्जांपल सेट कर चुका होगा। तो कहीं ना कहीं एज को हटाएं, जिस भी एज में है आप, यहाँ से आप शुरुआत करें, और आज का संडे वो परफेक्ट दिन है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। सो फिलहाल धीरज, जो कि आज अगर आप उनको सोशल मीडिया

की भी होने ही लग जाती है। सो ये प्रॉब्लम हमारी खुद की है, हमारी लाइफस्टाइल की है, हमने ध्यान ही नहीं दिया है और इतने ज़्यादा चेंजेस हमारे अंदर आ गए हैं। फिलहाल मुझे लगता है धीरज की ये रियल लाइफ की स्टोरी आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर करने वाली है। आप जिस भी उम्र में इस वक्त आप इस रेडियो और इस मॉर्निंग शो को सुन रहे हैं, देर नहीं हुई है, बस सही शुरुआत करना है और उसके बाद चेंजेस बाहें फैलाएं आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। जो कुछ आप खुद को देखना चाहते हैं शायद उससे थोड़ा सा और भी ज्यादा बेहतर। सो आज का ये संडे हमारे लिए एक परफेक्ट शुरुआत है कि हम आराम से सोच सके, देख सके और समझ सके। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे भाग्यवान, अरे ईश्वर ने तुम्हें खूबसूरती और बेवकूफी एक साथ क्यों दे दी भाई?
1: खूबसूरती इसलिए कि तुम शादी का पैगाम दो, और बेवकूफी इसलिए कि तुम्हारे पैगाम को मैं मंजूर कर लूं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
3: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
2: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में,

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: क्या बात है, और लगातार कॉल्स भी आ रही है। फिलहाल 10:03 हो गए हैं, 10 से 11 गागा गुंडा विद आरजी अदनान, आपका स्पेशल शो, मॉर्निंग शो जो आरजी अदनान करते हैं। चलिए फिलहाल किसकी कॉल है और क्या कुछ उनको कहना है, ये सब कुछ जानने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। और देखते हैं भाई कॉलर इस वक्त कौन है। हाँ जी हेलो।
1: दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दिल जब भी चाहे याद कर लिया कीजिए, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, जब भी दिल चाहे बुला लिया कीजिए। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कहाँ घर है आपका?
1: जी सर, मेरा घर है जगदीशपुर शिवगढ़, दीवानों के शहर रायबरेली से पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ।
0: पिंकी रिंकी, आप दो बहनें अलग अलग बात कर रही हैं, सिंगल बात कर रही हैं आप?
1: सिंगल बात कर रहे हैं, लेकिन एक कॉल में सर दो ही नाम जाते हैं।
0: अच्छा, एक कॉल में दोनों नाम जाते हैं। अच्छा, आपने कहा बड़े पास हैं हम बुला लिया करिए, तो क्या रायबरेली से गोंडा की दूरी का अंदाजा है आपको?
1: नहीं सर, ये तो हमें नहीं पता, बस हमने रेडियो के माध्यम से ही सुना है। और सर ज्यादा दूर नहीं है, अगर चाहे तो सर सभी लोग आ सकते हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर आने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने आते ही, आप नए लिसनर हैं और आपने आते ही बताया कि जब मन करे बुला लिया करिए, तो ही मैंने कहा कि लगता है काफी दूरी कम हो चुकी है गोंडा टू रायबरेली।
1: जी सर, रेडियो ऐसा माध्यम है कि सर कितनी भी दूरियां हो वो सर कम ही लगती हैं।
0: वाह क्या बात है। सो पिंकी रिंकी, आप फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया है, और थोड़ा सा जुड़ने का किस्सा बताएंगी, कैसे जुड़ी है आप 89.6 FM से?
1: जी सर, मेरी अन्नु पांडे जो गोंडा में रहती है, उन्हीं के माध्यम से हम आपके कार्यक्रम में जुड़े हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, और कब से आप सुन रही हैं 89.6 FM को?
1: सर सुन तो नहीं
0: पा। नहीं करे, कब से सुन रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का इशू है आपके साथ में। हेलो। ऑलराइट, सो भाई ये तो रही पिंकी रिंकी, और इन्होंने रायबरेली से कॉल किया है फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रेडियो की जो है वो जबरा दीवानी है। बहुत अच्छी बात है। सो रेडियो का जो दीवाना होता है उसमें एक अलग ही प्रकार की क्रिएटिविटी नजर आती है, बोलने का अंदाज और बहुत ओपन सा माइंड, ऐसा बहुत कुछ होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भाई जो रेडियो सुनने वाले हैं उनको एक तो कई आवाज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड दूसरी बात ये कि भाई ऐसे लोग जो हैं वो बात करने में बड़े माहिर से हो जाते हैं, ये सुनते सुनते अपने अंदर ले आते हैं। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिलहाल एक बार वापस से पिंकी रिंकी जुड़ चुकी हैं, आइए देखते हैं क्या कह रही। हेलो हेलो ऑलराइट, सो चलिए फिलहाल दूसरी कॉल भी आ रही है, और चलते हैं दूसरे कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई दूसरी कॉल आखिर किसकी है और उनको क्या है कहना, क्योंकि लगातार आपकी कॉल्स आती जा रही है और हम आपसे बातचीत करने वाले हैं आपके संडे स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है जब हम आप बातचीत करते हैं संडे में स्पेशल, और आपकी बातें, आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा फील कराती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में अभी हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं किसकी आवाज़ है। हाँ पिंकी रिंकी है। ऑल राइट
1: सर, कॉल कट जा रही है, आज पता नहीं क्या हो गया।
0: हमें लगता है इसमें आपकी कोई साजिश है।
1: जी सर, हो सकता की बुरी नजर लग गई हो।
0: नहीं, नजर तो बुरी किसी की भी नहीं लग सकती है, क्योंकि हमने यहाँ नींबू और उसमें सुई लगा के टांगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप चाह रहे हो कि चार कॉल तो आपकी रहे, कट कट के ही सही, लेकिन चार बार एक ही दिन में आप बात करो, ऐसा है?
1: जी सर बिल्कुल। वैसे सर बताना चाहेंगे, रेडियो पे हम लोग इतने फेमस है कि दोस्त से ज्यादा तो सर दुश्मन ही हो गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, रेडियो सुनती है रिंकी पिंकी और हो जाती है लोगों से भूल।
1: सर, बहुत अच्छी लाइनें बोली आपने, इसके लिए दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू, लेकिन शुक्रिया मुझे दिल से मत बोलिए, ट्रक के पीछे लिखी होती है, वो लाइन बोली थी मैंने। सो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि अच्छा थैंक यू, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब करते हैं या आप क्या कर रहे हैं इस वक्त?
1: जी सर, हम तो घर पे रह के रेडियो सुनने का काम करते हैं और साथ में घर के कार्यक्रम को, मतलब घर के
0: कार्यक्रम भी आप निपटा देते हैं। बहुत सही, घर में ही रेडियो चलाया जा रहा है।
1: जी सर, बिल्कुल, हम भी सुनते हैं और सर हमारे घर में जो मेहमान लोग आते हैं और हमारी पूरी फैमिली के लोग भी सुनते हैं। मुझे रेडियो सुनना सबसे अच्छा लगता है सर।
0: रेडियो सुनना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है
1: जी सर, क्योंकि रेडियो सर बचपन से हम सुन रहे हैं। पहले हमारी बड़ी वाली दीदी थी तो वो सुना करती थी, फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए सर हम लोग भी सुनने लगे और सर काफी इंटरेस्ट लगता है।
0: आपको लगता है कि जैसे रेडियो सुनने से कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीजें आ गई कि अब आप भी थोड़ा सा बातें घुमा कर लेते हो या कई शब्द और भी आ गए आपके पास?
1: सर नहीं, बातें तो घुमा के नहीं करते सर, जो भी कहना होता सीधा सीधा ही कहते हैं। और सर अच्छा लगता है क्योंकि सर रेडियो ऐसा माध्यम है कि सर हम लोग मतलब पहले लोगों से बातें करने में डरते, अच्छा अब नहीं डरते, ये सब चीजें मतलब जो है रेडियो से ही हमने सीखी।
0: अब बातें करने में आपको डर नहीं लगता?
1: जी सर, मेरी कॉल कहीं भी किसी भी स्टेशन में लग जाए अब डर नहीं लग सकता। पहले हम लोग सोचते थे कि ये लोग कैसे कॉल करते, कैसे बात करते, और हम लोग ज्यादा मतलब किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, तो ये सब चीजें हमने रेडियो से सीखी।
0: अरे वाह, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बोलने का कॉन्फिडेंस आया है और शब्दों का भंडार आया वो रेडियो सुन सुन कर आया आपको?
1: जी सर बिल्कुल, क्योंकि रेडियो पे सर सभी अनाउंसर इतने प्यार से और ऐसे शब्द का प्रयोग करते जो सुनने में भी अच्छा लगता है और सर हमारे लिए मतलब मनोरंजन और जानकारियां भी देता है, तो सब हमारे जीवन में हमें काम आती है।
0: बहुत प्यारी बात कही। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये जो अनाउंसर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ये अपने घर पे कैसे बात करते होंगे?
1: सर ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि कुछ अनाउंसरों से कभी कभी ऐसी बात हो जाती है बतलाने में बहुत ही मुझे अजीब लगता है, क्योंकि सर बोलते तो बहुत मीठा है पर मतलब श्रोताओं से आप कुछ ऐसी बदतमीजी करते हैं कि अच्छा नहीं लगता सर।
0: अच्छा अच्छा, नहीं मैं बदतमीजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अनाउंसर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी कैटेगरी आप अलग कर दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने घर पे वो खुद कैसे बात करते होंगे, उनकी कितनी इज्जत होती होगी, आपको क्या लगता है?
1: सर ये तो हमें नहीं पता, और क्योंकि सर अभी तक हमारे बहुत सारे फेवरेट अनाउंसर हैं लेकिन हमने कभी किसी भी अपने पसंदीदा आर्टिस्ट से मुलाकात नहीं की, तो सर ये तो अनुभव हमें नहीं पता है।
0: अच्छा ये अनुभव नहीं पता, वैसे कोई इज्जत नहीं होती, हम आपको बता दें लिखित तौर पर घर पे इस तरह हम नहीं बात करते, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी आवाज़ निकलती है घर वाले इतना ज़्यादा चिढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा चिढ़ा देते हैं कि शर्म आने लगती है खुद पर।
1: जी सर होता है, कभी कभी होता है, लेकिन सर बहुत से श्रोता मतलब बहुत से आर्टिस्ट ऐसे जो मतलब जैसे हम लोग फोन ही में कॉल करते हैं तो मतलब वो हम लोगों की कॉल ही काट देते, बोलते हैं कि तो मतलब अगले मतलब नए श्रोताओं को मौका दो, फिर भी हम लोग उनकी बातें मानते फिर भी कॉल काट दी जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए,
0: ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे ख्याल से उनकी कैंची में धार ज्यादा होती, खट से कट जाता होगा।
1: जी सर हमें भी लगता है, लेकिन सर जैसे हम लोग उनकी बातें मानते हैं, उनका कहना भी सुनते हैं, तो सर श्रोताओं की भी बातें समझनी चाहिए और माननी चाहिए।
0: बेशक सुननी चाहिए और बेशक माननी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने फरमाया।
1: क्योंकि सर आप हमसे बड़े हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने श्रोताओं की दिल की बात सुने और उन्हें मतलब सर रेडियो के माध्यम से हम लोग घर पे बैठ के अपना हर टैलेंट मतलब दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकते हैं, तो सर सभी श्रोताओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देना चाहिए।
0: अच्छा वैसे क्या टैलेंट है आपका?
1: सर मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, बस टूटा फूटा टैलेंट है, मुझे शेरो शायरी और जिम जाना बहुत अच्छा लगता है।
0: शेरो शायरी और जिम जाना?
1: जी सर, थोड़ी बहुत रेडियो को सुनते सुनते हमने ये भी हुनर सीख लिया है सर, मुझे शेरो शायरी और गीत गाना बहुत अच्छा लगता, खास करके तो मुझे गाना सबसे अच्छा लगता है।
0: अच्छा तो कोई सुनाएंगे गीत जाते जाते आप?
1: जी सर बिल्कुल
0: जी, प्लीज।
1: सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा, हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये वादा तो मुझे आपसे लेना चाहिए था कि सिलसिले मुलाकातों के यानी कॉल्स के आपको नहीं तोड़ना है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो सिलसिला बन गया है रायबरेली। क्या, कौन सा शहर बताया था आपने, दिलवालों का शहर?
1: जी सर, मेरा नाम पिंकी और रिंकी है। मेरा गांव है जगदीशपुर, जो सीवर के पास में पड़ता है, और हमारा जिला रायबरेली है।
0: जो कौन सा शहर कहलाता है
1: सर? ये मतलब मेरा शहर नहीं है, मेरा गांव है, क्योंकि सर एक मतलब जगदीशपुर जो अमेठी में पड़ता है ना, वो शहर है, और जिस मतलब जगदीशपुर में हम लोग रहते हैं वो गांव है सर, नॉर्मल गांव।
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने क्या बोला था ना कि कौन सा शहर है ये, किन वालों का, दिल वालों का, राइट? सो आपने क्या बोला था, ये दिल वालों का शहर है?
1: नहीं सर, दीवानों का शहर।
0: अच्छा,
1: है मतलब रायबरेली में रेडियो के दीवाने और दीवानियां ज्यादा है, तो सर हमने अपने गांव का नाम खुद ही बदल कर जिला राय मतलब दीवानों के शहर जिला रायबरेली रख लिया।
0: अरे बाप रे भैया, बहुत पहुंच है आपकी, आप तो नाम हम खुद ही चेंज कर लेते हो।
1: जी सर, और सर मैं बताना चाहूंगी, हाँ, मेरा ये जो बोलने का अंदाज है दीवानों, हाँ, के शहर रायबरेली, ये मतलब अनाउंसरों को इतना पसंद आता है और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आता है।
0: अगर आप बोलते दिलवालों का शहर तो पता है हम क्या पूछते?
1: जी जी सर।
0: तो हम कहते क्या गोंडा फिर गुर्दों वालों का है क्या?
1: सर ये तो गोंडा वालों से ही पूछिए सर, क्योंकि सर बहुत से मतलब जैसे सर बाराबंकी है तो वहाँ के श्रोता बोलते हैं ये मोहब्बतों का शहर है, और जैसे उन्नाव के लोग बोलते हैं ये उम्मीदों का शहर है। तो सर हमने सोचा कि हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी अपने रायबरेली का नाम आगे बढ़ाते हैं और अपने मतलब जिले का नाम रोशन करते हैं।
0: पीछे तो नहीं है आप, इतना आगे आ गए हैं कि आप रायबरेली को क्रॉस करते हुए, लखनऊ क्रॉस करते हुए, बाराबंकी क्रॉस करते हुए, बहराइच क्रॉस करते हुए आप गोंडा के अंदर आ गए, इतना आ गया।
1: मुझे बहुत अच्छा लगा सर, ये सब क्रेडिट हमारी दोस्त को जाता है।
0: अच्छा, अब आप उनको मक्खन पॉलिश लगा रहे हो, सुन रही ना इस टाइम?
1: नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि श्रोताओं में सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी चैनल को नहीं जानते या नहीं सुन पाते, तो सर दोस्त के माध्यम से हम आपके कार्यक्रम में जुड़ पाते हैं और आपका कार्यक्रम सुन पाते हैं।
0: क्या बात है, बड़ी प्यारी बातें आपने कही है रिंकी एंड पिंकी, राइट?
1: जी सर बिल्कुल सही,
0: थैंक यू। एंड आपने जो उम्मीद लगाई है कि श्रोताओं को भी सुनना चाहिए, सो चलिए मैंने उस चीज को माना है, और मैं ऑलरेडी ये चीज करता आ रहा हूँ, लेकिन आज आपने कहा तो और भी इस पे ध्यान देंगे, एंड थैंक यू सो मच।
1: क्योंकि सर मित्र के माध्यम से यही चीजें होती हैं कि सर हम लोग जैसे बहुत सी बातें नहीं जान पाते, तो हमारे दोस्तों के माध्यम से हमें वो बातें पता चलती
0: हैं। हाँ राइट, सही बात है। बट
1: आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा, और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी और हमारी दोस्त।
0: अरे बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपको भी और आपकी दोस्त अनु जी को भी बहुत शुक्रिया।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते। सो भाई, ये तो थी रिंकी एंड पिंकी फ्रॉम रायबरेली, एंड आई होप कि आपने इनकी बातों को सुना होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई किस तरह से हमारी रिंकी एंड पिंकी ने जो बात बताई वो आखिर कितना ज़्यादा उसको रिलेट कर पा रही थी और किस तरह से उन बातों को समझ पा रही थी। उनके अपने भी कुछ पॉइंट्स थे बाकी एफएम्स को लेके। फिलहाल वो नई जुड़ी हैं और एक नई मेंबर ऐड हो गई हैं 89.6 एफएम पर। फिलहाल आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी हेलो।
2: हेलो नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बता दें।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: जी हिमाचल से बात करने वाले हमारे प्यारे राकेश जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, बहुत अच्छे है।
0: अरे वाह।
2: जी जी।
0: सो कैसा मौसम हो रहा है यहाँ? तो उत्तर प्रदेश में भी काफी बेहतरीन होता है जब बारिश हो जाती है, वहाँ कैसा मौसम हो रहा है?
2: यहाँ तो बेहतरीन से बेहतरीन है।
0: अच्छा।
2: जी जी जी, यहाँ तो बेहतरीन बेहतरीन मौसम है और बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है बीच बीच में।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब सारी खूबी इस वक्त आपने शिमला में समेट ली है। ऑलराइट। सो ये मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि अभी जो ये हफ्ता गुजरा है मंडे से सैटरडे और या आज का संडे भी जोड़ लें, तो इस हफ्ते में कोई ऐसी बड़ी प्यारी सी बात जो आपके साथ हुई हो और आप हमसे साझा करना चाहें, कि उसके वजह से काफी अच्छा आपको फील हुआ पूरे हफ्ते में, कोई एक है छोटी सी बात?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो मैं इस हफ्ते की जो अच्छी बात जो हुई है और ऐसी बात हुई है, तो सबसे बड़ी बात है इस हफ्ते जो मुझे प्रोग्राम में चुनने का मौका मिला है और प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें करने का मौका मिला, जैसे कि कोई टॉपिक वाला हो या कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हो, लेकिन जो भी है कुछ है ऐसी ऐसी टॉपिक, मैं एक टॉपिक ही साझा करना चाहता हूँ। तो पिछली बार मुझे टॉपिक पे बात करने का अवसर मिला था दोस्ती के ऊपर, तो दोस्ती ऊपर इतना अच्छा टॉपिक मिला तो मुझे उस पर खुल के बात करने का मौका मिला और उनने मेरी बात को भी सुना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दोस्ती के जो मायने भी होते हैं वो मुझे सबके साथ शेयर करने का जो है अवसर मिला है।
0: वाओ क्या बात है। सो मतलब ये जो एफएम पर आपको लास्ट वीक मौका मिला था और आज भी आप बात कर रहे हैं, यही सबसे बेस्ट रहा आपके लिए हफ्ते में? मैं
2: जी जी, तो इसमें तो लास्ट मिला, लेकिन जो अभी जो कल परसों जो फ्राइडे को जो मौका मिला था उज्जैन से मिला था, तो उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक रखा था दोस्ती पर, तो दोस्ती पर मुझे पूरा मौका मिला बोलने का कि किस तरह से दोस्ती निभानी चाहिए, तो बहुत अच्छा अवसर मिला। लेकिन आपको भी आपने भी मौका दे दिया, तो फिर ये जो सोमवार से सैटरडे संडे तक जो है पूरा मौका जो है इस पर मिला है, बहुत अच्छा लगा है।
0: वाह क्या बात है। अच्छा आपने आज के शो को सुना?
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका शो भी सुन रहा था और बाकी केंद्र पे भी मैं पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था, तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में चंडीगढ़ पे मैं एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो है सावन महीने में यादें, बचपन की यादें।
0: क्या बात है, बचपन की यादें।
2: जी जी जी, ये चंडीगढ़ पे टॉपिक चला है, तो आपसे बात करके मैं उधर प्रयास करूंगा।
0: अरे प्लीज प्लीज, आप उधर भी प्रयास जरूर करिए और बचपन की सारी यादों को आज आप चंडीगढ़ वाले एफएम पर जरूर बताइएगा।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उधर भी बताएंगे तो फिर इधर भी बताऊंगा। अभी मैंने शिमला पे भी गाना चलाया था आकाशवाणी शिमला पे, कागज कलम दवातला।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: जी जी जी जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और आपसे मैंने जो सवाल किया था कि पूरे हफ्ते में क्या अच्छा लगा वो आपने बता दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
2: जी जी जी जी,
0: थैंक यू सो मच राकेश जी।
2: ओके ओके,
0: धन्यवाद। सो दोस्तों आज है 9th of August और आज बुक लवर्स डे भी है, आपको पता हो या ना हो, फिलहाल बुक लवर्स को जरूर पता है। सो मे बी आप भी बुक लवर्स में से एक हो सकते हैं, या फिर शायद आप कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि अगर आपने कभी भी किताब कोई उठाई हो और पढ़ने की कोशिश की हो तो आपको क्या मिला उसमें, ये भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर साझा करें। फिलहाल इसी के साथ में आइए अगले कॉलर को जोड़ते हैं, देखते हैं कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो।
3: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम सविता दुबे और आज 9 तारीख है।
0: सॉरी आपकी आवाज कट रही है।
3: हेलो
0: जी, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाए।
3: अब ठीक है?
0: अभी एकदम परफेक्ट है।
3: मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, और मैं अर्जित नान बात कर रहा हूँ, बताइए।
3: और मैं सुन रही थी कि रिंकी पिंकी को मैं बहुत दिन से सुनती हूँ। अच्छा। पर आज उनको सुने हूँ रेडियो पे बोलते हुए।
0: तो इनको कहाँ सुनती थी आप?
3: मैं सुनती थी रेडियो पे ही सुनती थी रेडियो के, मैं भी तो पागल दीवानी हूँ ना, मैं भी रेडियो पे सुनती थी, और सबसे ज्यादा दीवानी तो मैं ज्ञानाष्टमी चैनल का हूँ।
0: अरे वाह।
3: और एक बात बता दे दूं आपको
0: जी।
3: आज हमारी समता मैम का जन्मदिन भी है, उनको भी सुनती हूँ, उनका मैं जो शो में जो गिफ्ट सब सुनती हूँ ना, जवान रहने के लिए, बुढ़ापा नहीं आने के लिए, जो सब सुनती हूँ वो मैं फॉलो करती हूँ। आपका भी बात फॉलो, आपको बात तो ज्यादा फॉलो करती हूँ ताकि मैं मेरा अंदर बचपना और भी कूद कूद कर भर जाए।
0: अरे वाह, चलिए ये तो बात है कि आपके अंदर बचपना कूद कूद कर भर गया है, लेकिन आपने जो क्या बताया था, जवानी खत्म करने के लिए बुढ़ापा लाने के लिए क्या करते हैं आप?
3: मैं नहीं जवान दिखने के लिए क्या क्या करता है, कोई क्या क्या लगाना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, वो सब सुनती
0: हूँ। और पहले आपने ही बोला कि जवानी खत्म करके बुढ़ापा लाने के लिए मैं उनको फॉलो करता हूँ।
3: नहीं नहीं, बुढ़ापा खत्म करना चाहिए।
0: भाई मैंने कहा भाई ये इतना बेहतरीन शो तो मेरे से कैसे मिस हो गया, मैंने क्यों नहीं सुना वो बात।
3: आप भी बहुत अच्छे बोलते हैं जो, जो जो सब बोलते हैं कि हमें तो आसास के मेरा रोटी जल जाता है, मेरा सब्जी भी जल जाती है आपका जो सुनते सुनते
0: है। इतनी प्यारी हंसी है कि बताइए, रोटी और सब्जी जैसी बेजान चीजें भी देख के आपको जल जाती।
3: मुझे नहीं, मैं ध्यान लगा देती हूँ ना रेडियो में।
0: अच्छा, ये बता नहीं, मैं उस चीज को और बेहतरीन तरीके से बता रहा था ताकि सुनने में और अच्छा लगे कि आए हाय हाय मेरी हंसी देख करके तो मेरी सब्जी और रोटी तक जल जाती है। अच्छा, किताबों के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई किताब कभी आपको पढ़ने के बाद पसंद आई है काफी ज्यादा?
3: हाँ, ना कुछ दिन पहले ही मैंने किताब लिया हूँ। अच्छा। किताब भी लिया हूँ, स्लेट भी लिया हूँ, थोड़ा अपने सीखूंगी हिंदी। हिंदी मुझे ढंग से नहीं आता ना, तो मैं हिंदी सीखने के लिए लिया हूँ किताब, पेंसिल, किताब पेंसिल स्लेट ये सब।
0: यानी आज के पश्चात आप हिंदी सीखने का प्रयास करेंगी?
3: हाँ, जरूर करूंगी, पर मेरा मन इतना चंचल है, धीरज नाम की कोई चीज है नहीं मुझ में, वो धीरज रहना चाहिए।
0: धीरज नाम की चीज बरेली में है।
3: हाँ, वो तो है, उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: अच्छा।
3: मुझ में है नहीं ना धीरज नाम की चीज, मैं इतना चंचल हूँ कि मैं घर वाले से भी डांट सुनती हूँ। हमारे घर वाले लोग चाहिए, उन लोगों के पास धीरज है नहीं, उन लोग भी ज्यादा चंचल है, आप भी वैसे ही चंचल है, सबको ही मेरा ससुराल वाले लोग अच्छे है।
0: अरे वाह, चलिए, ये तो बहुत
3: सबको ही चंचल चंचल,
0: ये बहुत कम लोगों को ऐसे कोई बोलते हुए मैंने सुना है। तो मतलब बिल्कुल धीरज नहीं, जैसे रात होती है तो आप डांटने लग जाती है सूरज को कि चलो निकलो निकलो, और तुरंत सुबह हो जाती है, क्या होता है?
3: नहीं, रात होता है तो रात में तो सोना चाहिए ना एकदम। अच्छा। सही टाइम पे 9 से 10 बजे के बीच ही सो जाना चाहिए। नींद लेना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि फोन पर ही हम कुछ देख रहे, रील देख रहे, वो सब नहीं, ठीक टाइम पे नींद लेना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बिल्कुल सही बात है। सो आज नींद हुई आपकी कल रात की?
3: हाँ, अच्छी तरह से हो गई, और मैं कल से बहुत खुश हूँ।
0: वजह?
3: कैसे खुश हूँ, मेरा मन का हालत ठीक है, पर मेरा तबीयत थोड़ा जुकाम पकड़ा है, इसके लिए थोड़ा अभी टाइम है, बहुत ही टाइम है, मैं बुआ बनने वाली हूँ।
0: अरे वाह, चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, और आपको अग्रिम बधाई बहुत बहुत, बड़ा अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सविता दुबे जी हरखापुर गोंडा से, आपसे बात करके बड़ा मजा आता है और आज भी काफी अच्छा लगा।
3: शुक्रिया सभी को नमस्ते
0: जी, थैंक यू सो मच। सो ये हमारे बीच में सविता जी ने अपनी बातों को रखा, और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है वो बड़ी प्यारी लगती है कि भाई आपको क्या बदलाव हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ जब आप हमसे साझा करते हैं इस स्पेशल शो में। फिलहाल हम चलेंगे अपने अगले कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करेंगे अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: हाँ जी, सो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताएं, आप कौन हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: अरे अविनाश जी, त्रिपुरा से आपका स्वागत करते हैं। इतनी दूर से तो आप हमको विश करते हैं कि हम सोचते हैं कि आपके रहने का इंतजाम भी पहले यहाँ करवा दें।
1: बिल्कुल करवा दीजिएगा, वो तो और भी फायदेमंद होगा।
0: बिल्कुल, और आपका इंतजार है। कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट से उत्तर प्रदेश की तरफ कभी आप कूच करें तो प्लीज आप यहाँ जरूर आए, बड़ा अच्छा लगता
1: जी,
0: है।
1: जी, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है क्योंकि मेरा जो पुराना जो मेरा गांव है वो तो वहीं पर है, उत्तर प्रदेश में ही है।
0: उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका गाँव है?
1: जी, मेरा गाँव है गाजीपुर।
0: गाजीपुर, अरे वाह, क्या बात है। फिर तो आपका आना जाना होता ही है और ये आप यहाँ गोंडा के आसपास से होकर ही गुजरते होंगे।
1: जी जी, तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखिए क्या है कि मुझे अब उत्तर पूर्वी भारत का भी सफर होता है और अपने उत्तर प्रदेश का भी, मतलब कि हम लोग देखिए 1921 से यहाँ पर आए हुए थे, तो 1921 में मेरे दादाजी आए थे, तो उसके बाद फिर हम सब यहीं पर यहीं का ही रह गए हो गए।
0: अच्छा, नहीं एक बार को तो हम डर गए, आपने कहा 1921 में हम आए थे, भाई मैंने कहा आज आपकी एज कितनी है।
1: मतलब कि मेरा उम्र का आपने अंदाजा ये लगा लिया कि 105 साल हो गया इनका।
0: मैंने कहा भाई धीरज जी को इतनी हम उनका बखान कर रहे थे, हमारे पास तो अविनाश जी सीधे सीधे 105 साल के जो बिल्कुल भी नहीं लगते।
1: और आवाज भी इतने दुरुस्त लग रहा है कि ये मतलब कि अभी 25-30 साल का लग रहा है।
0: वही मैंने कहा क्या बात है, वाह, मतलब कुछ जो चौंकना होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है। वैसे बढ़िया मजा आ गया, समझ गया।
1: मतलब ऐसा नहीं कि आपको चौंका तो मैं बाद में फिर अपने मतलब के अंदाजे पर दिया। मैंने ये बोला कि 1921 से हम यहाँ पर आए थे, उस पर फिर अगली पल मैंने ये बता दिया कि मेरे दादाजी आए थे यहाँ पर।
0: दादाजी आए, क्लियर हो गया। मैं डर जो डर रहा था, चौंक रहा था, सोच ओ अच्छा अच्छा अच्छा अभी समझ में आया। सो प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?
1: जी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देखिए कोई दीवानों के शहर से पहुंच रहा है, कोई शिमला से हवा लेके पहुंच रहा है, तो कोई बुआ बन रहा है, तो आपको भी मामा बनने वाले हैं आप भी।
0: हाँ बेशक, मुझे लग रहा है आपकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही बन जाऊंगा। आपकी दुआओं की वजह से।
1: So नहीं, ये तो देखिए ये तो रीत है, ये तो चला जाएगा, रिश्ते नाते तो बनते ही रहते हैं। और देखिए आपसे हम सबका जो रेडियो के माध्यम से जो एक मेल बंधन बना हुआ है जो दोस्ती के द्वारा, तो ये भी तो एक बहुत ही अच्छा है कि आरजे और श्रोताओं का भी।
0: सही बात है। अच्छा, ये जैसे सबने अपने कोई दीवानों का शहर, कोई उम्मीदों का शहर, कोई नवाबों का शहर, तो कोई दिल वालों का शहर, तो ये बताइए आप अपने शहर को क्या कहते हैं?
1: जी हम तो कहते हैं कि मेरे शहर का बस धर्म के शहर, क्योंकि देखिए हमारे जो शहर का नाम है वो है धर्मनगर, क्योंकि हम लोग धर्म का शहर बोलते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ बोलने वाले हैं कि अब पता नहीं अब कितने धर्म होते हैं या क्या होता है, लेकिन इसे बोला तो यही जाता है।
0: अच्छा, धर्मनगर नाम है उसका?
1: हाँ जी जी, मेरे शहर का नाम धर्मनगर है।
0: अरे क्या बात है। नहीं, आपने कभी कोई टाइटल देने की कोशिश की है कि अगर आपके शहर को देखा जाए तो आप इस नाम से पुकारना चाहेंगे?
1: जी ऐसा तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन आगे चल के सोचिए, आपको अगले हफ्ते फिर बताएंगे।
0: अगले हफ्ते? हाँ, ये आपका होमवर्क है, नोट कर ली, भूल ना जाइएगा कहीं आप।
1: जी जी बिल्कुल, अगले हफ्ते। अब एक हफ्ते का टाइम मिल जाएगा तो काफी टाइम होता है। क्योंकि देखिए जैसे एक मामा का जिक्र आया था ना, तो अपने भांजे, मतलब भांजे बोला था कि अरे ये 13 साल तुम वो क्या बोलते हैं, वो मामा जो शकुनी थे वो बोलते हैं 13 साल बहुत होते हैं भांजो। तो उसी तरह से तो उसी तरह से मैं आपको बोलूं यार, ये 7 दिन तो बहुत होते हैं।
0: वाह क्या बात है, मुझे लगता है आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, आपको जहाँ मौका मिलता है आप मिमिक्री करने से नहीं चूकते हैं।
1: जी जी, अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए ऐसे ही मतलब कि सबके एक एक, जैसे कि देखिए राकेश जी जब कॉल करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, वो ऐसे बोलते हैं। उसके बाद भगवान सिंह जब आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि नमस्ते सर जी, मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं, मतलब कि उसके बाद मतलब हर हाथ श्रोता का मतलब आवाज को मैं ऐसे ढाल चुका हूँ अपने आप में कि किसी की भी आवाज को मैं ऐसे मतलब को कौन सा अंदाज में बोलते हैं ये मैंने बना दिया है।
0: अच्छा तो आपने फिर हमारे कमल नयन जी को भी सुना होगा, जरा उनके बारे में बताइए, उनके बारे में हर आदमी जानना चाहता है।
1: नहीं आप देखिए ये आपके कार्यक्रम में तो ज्यादा दिन हुआ नहीं ना, देखिए अब कुछ दिन सुनना पड़ेगा फिर आपके अंदाज में धीरे धीरे बना ही लूंगा।
0: आप कमल जी को नहीं जानते?
1: नहीं जानते हैं लेकिन एक दो बार ही सुना है ना, क्योंकि आप देखिए मैं जुड़ा हूँ सिर्फ मात्र दो या तीन हफ्ते हुए हैं। इसीलिए तो
0: वही मैंने सोचा, मतलब आरजे अदनान से ज्यादा लोग कमल नयन जी को जानते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और आप क्या बोलते हैं, आपका इंस्टाग्राम आईडी पे भी तो फॉलो कर रखा है ना?
0: हाँ बेशक। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके अविनाश जी, और दुआएं हैं कि आप यूं ही मिमिक्री भी करते रहें, खुद तो हंसते ही हैं, आप हंसाने की भी कोशिश करते हैं और आपका ये नेक काम हमेशा ऐसे ही जारी रहे।
1: जी जी सबसे नेक काम तो आप करते हैं, क्योंकि ये हम सबको इतने मतलब कि कोई गम में डूबा होता है या फिर कोई किसी भी मूड में होता है, लेकिन आप सबकी दिल और दिमाग को फ्रेश कर देते हैं। 10 से 11 जो कार्यक्रम होता है तो हम सभी मतलब कि एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे एक एक बात छेड़ देते हैं कि अब जिस जो ना चाह के भी उसको भी मुस्कुराने का लिए आप मजबूर कर देते हैं।
0: थैंक यू सो मच, ये आपकी जरा नवाजी, और यूं अगर आप खुश होते हैं तो मैं हमेशा इसको जारी रखने वाला हूँ।
1: ये देखिए एक बात है ना कि जो हंसने हंसाने का काम करते हैं उसको भी एक डॉक्टर की रोल्स अगर दिया जाए तो कोई कम नहीं है, क्योंकि देखिए वो हंसने के लिए मतलब कि लोग तरस जाते हैं कि कैसे हंसे, और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल ही मतलब कि लोग अब देखिए कार्टून वगैरह ये सब देख के हंसते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में उनको हंसाने का काम करते हैं इसको तो डॉक्टर के बाद ही हम सोचते हैं, क्योंकि देखिए हंसने से काफी बहुत मतलब कि इतनी बीमारी हम सबके दिल दिमाग फ्रेश होते हैं कि बीमारी मतलब कि पलक का मौका ही नहीं मिलता है, बहुत सारी बीमारियों का अंत होता है।
0: जी बिग बॉस को आपकी बातें काफी अच्छी लगी हैं और बिग बॉस चाहते हैं कि आप ऐसे ही नेक काम करते रहें।
1: ये तो आपने खबरी लाल जो सोल वो तिरंगा मोमेंट है ना, खबरी लाल की खबरें अब समाप्त हुई।
0: खबरी लाल बना दिया आपने तिरंगा का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अविनाश जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे इंसान हैं और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
1: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। सो भाई ये थे हमारे साथ में त्रिपुरा से अविनाश जी, जिन्होंने लगातार बातचीत किया। इसी कड़ी में चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है आखिर। हाँ जी हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आवाज जरा जानी पहचानी सी है, जाने किसकी है ये आवाज? किसकी है ये आवाज, जरा कोई उठा के लेके जाए, यहाँ पे रखी हुई है। हाँ हेलो
2: सर, ये आवाज किसकी है, हमको नहीं पता किसकी है।
0: नहीं नहीं आपको कैसे पता होगा, आप तो खुद एक आवाज है। और बताइए कैसी है अनु आप?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए आप कैसी हो?
0: बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। भैया आपका परसपुर कौन से नाम से जाना जाता है?
2: मेरा नाम परसपुर नहीं है, बेलसर है।
0: सॉरी, बेलसर जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर कहलाता है आपका बेलसर?
2: सर बेलसर नहीं, मैं गोंडा ही बोलती हूँ।
0: गोंडा प्यार का शहर जाना जाता है,
2: क्योंकि मैं जब कहीं भी कॉल करती हूँ तो मैं बेलसर नहीं बताती हूँ, मैं गोंडा ही बताती हूँ।
0: अच्छा तो गोंडा प्यार का शहर बोलते हैं आप?
2: हाँ गोंडा प्यार का शहर है ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से जुड़ती हूँ और जिससे मैं जुड़ती हूँ सबको अपना बना लेती हूँ, और गोंडा वालों के अंदर ये खूबी है, सबके अंदर।
0: सबके अंदर है? पक्का पक्का।

0: है कि आज तक जब भी याद आती है तो बहुत हंसती हूँ, कबरी बिल्ली।
1: क्या नाम था बुक का?
0: बुक का नाम नहीं था।
1: हाँ
0: मतलब टॉपिक का, कत्ते का नाम था कबरी बिल्ली।
1: कबरी बिल्ली, ये इसका मतलब क्या निकल गया?
0: मतलब बिल्ली बिल्ली, वो कबरी बिल्ली वाला किस्सा।
1: अच्छा, तो उसमें क्या
0: हुआ? कहानी थी बिल्ली। हाँ। की ना है? वो मुझको बहुत पसंद आई थी।
1: अच्छा, तो बिल्ली
0: जब भी याद आता है तो बहुत हंसी आती है।
1: बहुत हंसी आती है। हाँ। अच्छा, बिल्ली की आवाज निकाल के बता सकते हो? उसमें बताया तो होगा कैसे निकालती बिल्ली आवाज।
0: लेकिन हमको निकालना नहीं आता, हमारी सिस्टर बहुत अच्छे से निकाल लेती है। वो बोलती है तो बिल्ली आ जाती है, और कभी बोलती है तो बिल्ली के बच्चे आ जाते हैं।
1: और कभी आपसे बोलती तो आप नहीं आते हैं?
0: हमको तो पता है कि हमारी सिस्टर है, फिर हम कहाँ से आएंगे।
1: अच्छा, अभी समझ में आया। जब वो मैं बोलती है तब आप जाती है, आप भी ऐसा करते हैं। मैं, हाँ बताओ क्या काम है? यानी आपको बकरी की
0: बात बुलाते हैं ना। हाँ हाँ। अगर हमको पता चल जाए कि वो बिल्ली है असलियत में ना, तो मैं डंडे लेकर जाऊँ। लेकिन पता चलता है बिल्ली नहीं है, सिस्टर है, तो फिर डंडे लेकर नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर हम एक दूसरे को बुलाते हैं तो हम लोग कैसे बुलाते हैं? ऐसे करते हैं।
1: कैसे? ये क्या था, मतलब किस चीज को पीट रहे हैं आप?
0: किसी को चीज नहीं पीट रहे, ऐसे मुझसे आवाज निकालेंगे। कहीं भी है, मान लो कितने भी लोग है, कैसे भी लोग हैं। हाँ। और करने भी है तो फिर हम एक दूसरे को अपनी तरफ ऐसे ही बुला लेते हैं।
1: ये मतलब आपकी सांकेतिक भाषा है, जो आप लोग इस साउंड से संकेत भेजते हैं एक दूसरे को।
0: हाँ।
1: अरे बाप रे,
0: एक बार ऐसी आवाज निकाले तो समझ लो हम ही दोनों बुला रहे हैं। हम अगर निकाले तो उसको पता चल जाएगा हम बुला रहे हैं, अगर वो निकालेगी तो हमको पता चल जाएगा।
1: एक बार और जरा बोली, हम रिकॉर्ड कर ले ताकि कभी हमारे पास आसपास ऐसी कोई आवाज आए तो हम जान जाए अच्छा आप ही दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड हो गई। मतलब बहुत बढ़िया एपिक है भैया, ये लोग अपनी बातचीत करने का जो तरीका निकाले हैं ये बड़ा ही धासु है।
0: पता है जितने लोग रहे चाहे जैसे भी रहे ना, तो जितने चालाक रहे ना, किसी को पता नहीं चलता है। कभी चिलो आज मौसम में निकालते हैं, कभी हाई मौसम में, जिससे जितनी दूरी हो और आराम से एक दूसरे को देखे नहीं कि बात समझ में आ गई।
1: जैसे मान लीजिए कोई बेलसर से बोल रहा है और कोई गोंडा शहर से सुन रहा हो, तो फिर कितनी तेज निकालते हैं?
0: तो कॉल करके निकालेंगे फिर।
1: कैसे?
0: तो पता चल जाएगा कोर्ट भाषा क्या है, अभी क्या बात करनी है हम दोनों को, क्या करना है।
1: इसमें है क्या, मतलब क्या छिपा है? हेलो है, हाय है, या इधर आओ है, या कोई गड़बड़ है? क्या बोलना चाहते हैं इस वर्ड में?
0: वो तो नहीं बताएंगे, वरना सबको पता चल जाएगा अभी तो।
1: अच्छा, मान लीजिए अगर आपको अपनी बहन से बोलना है जल्दी जाओ, बारिश होने वाली, कपड़े ऊपर फैले उठा लो, इसको कैसे समझाएंगे आप ऐसे करके?
0: क्या बोलना है?
1: मतलब जल्दी जाओ, बारिश होने वाली, कपड़े ऊपर सूख गए हैं, भीग जाएंगे, उठा लाओ। तो अपनी बहन को आप क्या बोलोगे इस लैंग्वेज में, कैसे करोगे? हाँ, तो इसका मतलब क्या वो समझेगी?
0: समझ जाएगी कि अभी बारिश आने वाली है, जैसे हम ऐसी आवाज देंगे तो उसको मतलब उस टाइम जैसे रहेगा वैसे समझ जाएगी अभी यही बात है।
1: भैया बड़े हाई लेवल के दोनों बहनों की बॉन्डिंग है, जिसको अभी फिलहाल आरजे अदनान खुद भी नहीं समझ पा रहे।
0: चलिए, हम लोग जब आपस में बात करते हैं, इशारे में बात करते हैं, तो जो लोग होते हैं आसपास सब लोग एकदम से चेहरा देखने लगते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं आप लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में, मुझे भी बताओ।
1: मतलब ऐसा कोई भी अगर विचित्र प्राणी देखेगा तो कोई भी चौकेगा, उसमें कोई हैरान वाली बात नहीं।
0: विचित्र प्राणी नहीं है।
1: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
0: लेकिन हाँ ये भाभी भी नहीं समझ पाती, भाभी भी ऐसे चेहरा देखती रहती है, क्या बातें कर रही है हमको भी बता दो, हम बता दे तो फिर कॉट क्या रह जाएगा।
1: सही बात है। अरे कितनी दिमाग वाली बात है आपने कर दी, मतलब लिटरली 21 तोपों में 19.5 तोपों की सलामी आपको भेजता हूँ। एंड थैंक यू सो मच कॉल करके बताने के लिए कि आप दोनों बहनों की सांकेतिक भाषा कौन सी है। थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए, एंड पिंकी रिंकी को जोड़ने के लिए भी थैंक यू।
0: ओके सर, बाय।
1: ओके बाय। सो भाई ये तो देखिए फिलहाल अनु थी जिन्होंने बताया, और पिंकी रिंकी को भी जोड़ा है तो जाहिर सी बात है। और फिलहाल अभी एक और अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कॉल पर कौन से लिसनर की आवाज़ है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग।
1: अरे वाह, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है।
1: हाँ, हाय कृतिका, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: जी हम एक गोंडा से ही बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, आपकी आवाज़ से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी बुक लवर हैं?
2: जी हाँ, पढ़ने का शौक है, पर बस जो स्कूल वाली बुक

0: होती है वो पढ़ने का शौक नहीं।
1: अरे बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि स्कूल वाली बुक्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो जिंदगी में काम है, उसके अलावा सारी बुक्स में ऐसी चीजें होती है। ये तो मेरा भी मानना यही है। तो वैसे अपनी कुछ बुक्स के बारे में प्लीज बताइए, क्योंकि आज बुक लवर्स डे भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे जानूं।
0: जी अभी तो कोई खास कोई ऐसी बुक पढ़ी नहीं है, बट हाँ एक अभी देखा था मैंने इंस्टा पे बहुत ज्यादा, मुसाफिर कैफे वगैरह ये सारी चल रही है, तो एक बार पढ़ने का जरूर कोशिश करेंगे कि वो पढ़े।
1: अरे वाह, वैसे आपको बता दूं कि ये मैंने पढ़ी हुई है और लाजवाब बुक है, मतलब अगर आप पढ़ती हैं इसको। लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी एक मूवी भी आई हुई है।
0: हाँ हाँ मैंने देखा है वो 12 फिल्म में जो एक्टर थे, क्या नाम है मुझे याद नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: वो शायद है इस मूवी में।
1: हाँ बिल्कुल। सो लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन फिर आपको जाएगा।
0: जी बताइए।
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक बार बुक पढ़ लेंगे तो प्लीज उस मूवी को फिर मत देखिएगा।
0: अच्छा ठीक है बिल्कुल।
1: नहीं लेकिन पूछेंगे नहीं क्यों ऐसा कह रहा हूँ।
0: क्यों कह रहे हैं बताइए।
1: क्योंकि इसके पीछे वजह साफ है, जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें इमेजिनेशन हमारा होता है।
0: जी
1: है ना, अपने हिसाब से हम सोचते हैं, और जब हमको कोई मूवी दिखाई जाती है तो जो दिखाई जाती है हम वही देख पाते हैं।
0: जी
1: सो अगर आप एक बार पढ़ लेंगी तो आपकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा इस कहानी को लेकर के हो जाएगी कि आप उसको अक्सर किसी ना किसी मौके पर सोचा करेंगे। और अगर आप मूवी देखेंगे तो एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ मूवी देखिएगा, फिर किताब मत पढ़िएगा। तो तय आपको करना ही करना है क्या, खैर ये आप पे मैंने छोड़ दिया है। एंड जहां तक बात रही वो स्टार कास्ट की, तो वो विक्रांत मेसी नाम है इनका जो उसमें रोल निभा रहा है, राइट। सो आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे अभी हम लोग बातें करते हैं थेरेपीज की बात करते हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग, मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं और वो बाकी चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन बुक्स के प्रति उनका लगाव इतना ज़्यादा होता है, तो अगर कृतिका कभी पढ़ती हैं तो उनको एक फिज़िकल बुक पढ़ने में और एक डिजिटल चीज़ों को स्क्रॉल करते हुए देखने में क्या फ़र्क नज़र आता है?
0: डिजिटल का थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं, आँख खराब हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ और बुक्स पढ़ेंगे तो वो एक अलग उसका मतलब पढ़ने से थोड़ा अच्छा फील होता है बुक्स पढ़ने से।
1: अरे वाह, लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी आपने, कुछ याद है अगर तो बता सकते हैं आप।
0: लास्ट टाइम तो मैंने मतलब वैसे अभी कोई बुक पढ़ी ही नहीं है वैसी अलग से कोई स्टोरी वाली, अभी तक खाली क्लासेस वाली बुक्स पढ़ी है।
1: अच्छा मैं एक बुक रिकमेंड करूं आपको।
0: जी बताइए।
1: इंकारा चिंकारा।
0: इंकारा चिंकारा,
1: हाँ इंकारा चिंकारा। ये ऐसी बुक है जो कोई पढ़ ही नहीं पाता, पता है क्यों?
0: अच्छा क्यों?
1: क्योंकि ये बुक ही नहीं है इसलिए कोई पढ़ ही नहीं पाता है। मुझे लगता है कि आज का वो दिन है कृतिका कि अगर हमको बुक पढ़नी है तो शायद आज वो संडे परफेक्ट डे है, थोड़ी सी स्टार्टिंग हम कर सकते हैं आज, क्या लगता है आपको?
0: तो बस ये लगता है कि विजिट करना चाहिए, बुक मंगानी चाहिए और पढ़नी चाहिए।
1: ऑफ कोर्स, अब किस बात का वेट है यार, मतलब इतने पैसे हम न जाने कहाँ कहाँ खर्च कर देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हमको दिल से सुकून देती है उसमें इतना नहीं सोचते हैं। एक अच्छी सी बुक आप आज मंगाइए, और मुझे लगता है जब अगले हफ्ते अगर आप मेरी बात आपसे हो रही होगी तो आप एक अचीवमेंट की तरह बता रहे होंगे कि बहुत मजा आया लिटरली।
0: सर एक्चुअली मैं हम कविता भी लिखते हैं थोड़ा बहुत, मतलब लिखते हैं ऐसे ही मेरा। अच्छा, मन किया।
1: अच्छा तो फटाफट से एक सुना दीजिए जरा अगर याद हो आपको।
0: एक कविता है, कविता काफी बड़ी है पर शेर सुना सकते हैं कि कविता सुनाएं, गाना सुनाएं, आप बताइए।
1: अरे बाप रे, ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमको कोई खुद ऑप्शन दे रहा है कि बताइए चाहिए क्या इसमें। चलिए तो जो भी आपको टॉप प्रायोरिटी पे लग रहा हो, गाना शेर या कविता, वो आप सुना दीजिए।
0: तो एक कविता है वो सुनाते हैं।
1: ओके।
0: ये कविता जो है वो एकता और अखंडता पे मैंने लिखी थी, 15 अगस्त 4 भी रहा है तो उसके लिए सही रहेगी।
1: हाँ जी बिल्कुल
0: जी, एक मिनट जी, एकता और एकजुटता केवल एक शब्द नहीं, राष्ट्र के उत्थान में इनका महत्व है कई। वसुधैव कुटुंबकम का सार जाना हमने भारत में, लेकिन आज न जाने क्यों मिलती नहीं इसकी पहचान कहीं। बचपन से सुनते आ रही एक शेर और चार बैलों की कहानी, पर न जाने क्या हो गया है आज की इस जनरेशन को, ये लड़ जाते हैं हर बात पर, रहते नहीं मेरे भाई भाई। काश कुछ ऐसा हो जाए, हिंदू मुस्लिम का भेद हटे, सिख और ईसाई का आपस में थोड़ा प्रेम बढ़े। काश ऐसा भी एक समय आए, कुर्सी के लिए नेता न लड़े। काश ऐसा कुछ हो जाए, फिर से सोने की चिड़िया भारत कहलाए। काश कुछ ऐसा हो जाए, एकता और अखंडता के लिए हमारा भारत देश जाना जाए।
1: वाओ, क्या बात है। मतलब जब ये कहा जाता है कि जेंजीज इस बारे में सोचते नहीं, तो देखिए एक जेंजी कृतिका ने खुद इसको लिखा है और उनकी ये भावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं अब चेंज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कर दिया इस कविता को लिख करके और हम तक सुना करके।
0: जी, एक शेर भी है, सुनाए?
1: दहाड़ता हुआ। ऑलराइट, सुनाइए।
0: मतलब इसमें तबस्सुम आया है, तबस्सुम का मतलब स्माइल होता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, मेरे पड़ोस में भी रहती है। खैर, हाँ बताइए।
0: मतलब हम भी आपके पड़ोस में ही रहते हैं।
1: अच्छा।
0: तेरे दीदार से चेहरे पे तबस्सुम का आना तो लाजमी है, कि तेरे दीदार से चेहरे पे तबस्सुम का आना तो लाजमी है। तेरे पास होने या ना होने पर भी तेरी याद का आना तो लाजमी है। अब ये इश्क है या कुछ और नहीं जानती, अब ये इश्क है या कुछ और नहीं जानती, पर तेरे दूर जाने पर मेरा मर जाना भी तो लाजमी है।
1: ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटेंस पोएम, बहुत जबरदस्त, बहुत गहरी, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आप लिखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इमोशन को जब समझा जाता है तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास चूंकि शब्दों का इतना भंडार है कि आप लिख पा रहे हैं, वो भी बहुत आसान से शब्दों में। सबसे अच्छी बात तो ये, आपकी वे ऑफ राइटिंग की सबसे खूबसूरती तो ये है कि आप बहुत आसान कविताओं में अपनी गहरी गहरी बातों को सुना रहे हैं हम तक। सो बहुत सारी विशेज आपको और बहुत सारी दुआएं आपको। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम भी जरूर अपनी कोई कविता जो लिखिएगा वो हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा।
0: एक्चुअली सर, जो मेरे बाबा जी थे वो भी क्या नाम है, कवि थे, शायर थे, तो इस वजह से थोड़ा उनका वो आ जाता है।
1: अरे क्या बात है, मतलब खानदानी है कहीं ना कहीं, ये आपके जीन में भी है।
0: जी।
1: और बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, मतलब गजब कविता लिखा है महेंद्र देपन जी ने राजस्थान से, और अंबर जी कहते हैं बहुत खूब कृतिका जी।
0: थैंक यू।
1: सो ऑफ कोर्स स्पेशल थैंक्स टू कृतिका कि आपने हम सब लोगों को इतना अच्छा फील कराया, इतनी बेहतरीन अपनी राइटिंग से रूबरू कराया, और हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स।
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच,
0: टू ऑल ऑफ यू,
1: थैंक यू। सो भाई, ये थी हमारे साथ में कृतिका, जिन्होंने भाई लिखा भी और सुनाया भी, और कहीं ना कहीं एकता और अखंडता पे कही हुई बात एक जेंजी की बात है, एक आज की जनरेशन की बात है जो इसमें अब भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और भविष्य बनने वाले हैं इस देश का, ऑफ कोर्स यंगस्टर्स हमारे। और अच्छी बात है कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सके, एक ऐसे समाज का जहाँ पर हर कोई तरक्की की राह पर चले और खुशहाली की तरफ बढ़े, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कड़ी में देखिए कितनी खूबसूरत बातें आपसे होती जाती हैं ये शो में, और मुझे लगता है कि भाई ये शो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो हम इससे कन्वे कर पाते हैं, बहुत सारी अपनी बातों को बोल पाते हैं। और संडे का ऐसा दिन होता है कि जब हम आपके आमने सामने होते हैं, और कुछ तो हमारे इतने बेहतरीन लिसनर्स हैं जो मुझको भी सेवेज रिप्लाइज दे देते हैं, फिर मैं भी सोचने मजबूर हो जाता हूँ कि आइला ये कैसे हुआ। सो इट्स ऑल अबाउट फन, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, एंड इट्स ऑल अबाउट आर सेल्फ। बहुत कुछ है जो इस शो में मिलता है मॉर्निंग के इस स्पेशल वाले शो में, एंड थैंक्स टू एवरी वन भाई की जो जो लोग इस शो से सुनते हैं और अपनी बातों को कन्वे करते हैं। और देखिए अलग अलग लिसनर के मन में अलग अलग बातें होती हैं, न जाने हम कौन कौन सी बातें कहां कहां से क्या क्या कह के करते हैं, इसके लिए हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपनी लगातार बातों को 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में लगातार रखते रहते हैं। थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में चलिए हम कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अगली जो कॉल आ रही है वो किसकी आ रही है और अगली कॉल पे आखिर कौन होने वाला है जो हमसे बात करने वाला। लेकिन हमें अच्छी बात ये लगी कि भाई तरह तरह की जो बातें हुई, यानी किसी में लिखने की बात है, किसी को कहने की बात है, कोई मिमिक्री काफ़ी अच्छा कर रहा है, हर कोई खुश रहने की कोशिश करता है। एट द एंड हम शायद सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और वो हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से नहीं कर सकते। स्पेशली हम बात करें अगर कि हम भाग दौड़ करके ही सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। सुकून के लिए लाइफ बनी है और सुकून लाइफ में हमको रियलाइज करना ही होगा। सुकून से ही हमारा काम चलने वाला, विदाउट सुकून हमको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ऐसा मुझे तो लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है, खैर आप भी ये ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा चैट बॉक्स पर बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं और आप लोगों ने कई सारी बातें अपनी यहाँ पर लिखी हुई है जो कि हम आप तक भी पहुँचाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ ही साथ चलिए अब चलेंगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल किसकी है और उनको क्या है कहना, क्योंकि लगातार आपकी कॉल साथ ही जा रही है और थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है क्योंकि हम बात को जल्दी कट नहीं कर पाते हैं एंड आप भी अपनी बातों को कहते जाते हैं। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम जोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बातों को कह सके इस संडे स्पेशल मॉर्निंग वाले शो में। एंड जिन लोगों की भी हम कॉल नहीं ले पाए इस वीक भी, उनसे हम माजरत चाहेंगे कि भाई शायद बातों को इतना इंटरेस्टिंग हो रही होती है कि उसमें बीच में हमें रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड आपकी कॉल नेक्स्ट वीक जिन लोगों की रह गई है, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उनकी भी कॉल्स लें और उनसे भी बातें करें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे क्योंकि हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप कि आप भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते होंगे और आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा। फ़िलहाल मैंने वक्त पर अभी निगाह डाली है तो देखा है कि भाई अब लगभग वक्त हो ही चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन साथ ही संडे जो है वो यादगार हमेशा हमेशा ही बन जाता है। कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए। हाँ जी हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: अरमान।
1: अरमान, आप स्पीकर से पास से हट जाए, थोड़ा सा आपकी वॉइस जो है रिपीट हो रही है। हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या सुनाना चाह रहे हैं आज आप?
2: आज मैं आपको एक ऐसा सा नाटक सुनाऊंगा जो बारे में दिल वाला रहा है।
1: हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि पूरी मत सुना करके आप थोड़ा सा सुनाइएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास अरमान। आई होप कि
2: यू अंडरस्टैंड।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सुनाइए आप।
2: पल से पल आमीन भी जब

पर आमी नबी जब तेरा लाला आया है ऐसा लगता है कि जन्नत में बिलाल आया है ऐसा लगता है कि जन्नत में बिलाल आया है उनके आहट सब मेरा से बोले आका उनके आ

0: ऐसा लगता है कि लगता ऐसा लगता है कि जमीन तुम्हें दिलाना आया है, ऐसा लगता है कि जमीन तुम्हें दिलाना आया है।
1: थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नात को पढ़ा और हम तक पहुंचाया अरमान, थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज
0: ओके,
1: अच्छा ओके, हेलो
2: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी भाई को कहा नहीं कि थोड़ा सा और आगे भी जाओ, स्टेजेस पे जाया करो, अच्छी आवाज है।
2: वो मेरा बेटा है।
1: अच्छा अच्छा, सॉरी, आप मदर है। तो आपने कभी इनको कहा नहीं कि बेटा आप जाओ कुछ स्टेजेस पे भी जाया करो?
2: जी ना, समय नहीं मिल पाता है, फिर बच्चे पढ़ने चले जाते हैं तो कोई लेकर जाने वाला नहीं है ना,
1: क्योंकि अरे वाह, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लिया जाए, लेकिन जो हुनर है और जो
2: जी इनका भी एडमिशन करवा दिया है गांधी में और हाई स्कूल में, ये भी जाते हैं।
1: चलिए, गांधी विद्यालय जा रहे हैं, हाई स्कूल में इनका एडमिशन हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि देखिए बच्चों को मौका ज़रूर हमेशा दीजिएगा, जो अगर बेहतर करना चाहते हो कोई भी हो, और जाहिर है अगर ये इतना अच्छा इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों को सुना पा रहे हैं लाइव रेडियो पर, तो इसमें आपकी काफी बेहतरीन परवरिश रही है, इसमें कोई शक नहीं है।
2: जी ये बहुत अच्छा नासरी पढ़ते हैं और बुलाए जाते हैं, यहाँ पर कहीं भी प्रोग्राम होता है तो इनको जरूर बुलाते हैं लोग, जितने भी जाते हैं।
1: अच्छा,
2: अच्छा पढ़ते हैं,
1: इनको तो हर कोई बुलाता है, हम आपको बुला रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली पे, आप किसी संडे में जरूर आकर के मुलाकात कीजिए। बिल्कुल, हाँ जी,
0: मेरी बहन है, थोड़ा सा उससे बात कर लीजिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: एक शायरी
1: सुनाना चाहती हूँ। ओके ओके ओके ओके,
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कुछ शायरी सुनाना चाह रहे हैं? अच्छा, तो हम सुनने के लिए तैयार है, बिल्कुल आप सुनाइए।
3: औरों की भीड़ में खड़ा मुझे वो बावला पसंद है, औरों की भीड़ में खड़ा मुझे वो बावला पसंद है, अरे हाँ जी मैं अभी चाय के शौकीन है, हमें लड़का बावला पसंद है।
1: कलर को लेकर जब दुनिया इतना ज्यादा रंग भेद करती है तो आपने सांवले को प्रमोट किया हुआ, क्या बात है, ये दो लाइन बड़ी असरदार रही आपकी तो।
3: अच्छा,
1: काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच कि आपने ये दो लाइंस जो थी वो हमको, शायरी जिसे आपने कहा वो हम तक पहुंचाई। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बेहतरीन फैमिली है। अरमान से बात हुई, उनकी वालिदा से, उनकी बहन से, और सबने बहुत अच्छे से बताया, बातें की। मुझे लगता है कि रेडियो ना यार एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप विदाउट एनी फिल्टर अपनी बातों को रख पाते हैं। हर इंसान के अंदर एक अलग दुनिया होती है जिसमें हमारे अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं, लेकिन हम कह पाने की हिम्मत बहुत ही कम कर पाते हैं। मेरी पर्सनल कोशिश होती है कि इस शो में लाइव कॉल इन प्रोग्राम के माध्यम से हम उन चीज़ों को थोड़ा सा और मौका दें, थोड़ा सा और खुलें और अपनी बातों को रख पाएं जो हम अंदर ही अंदर रखते हैं। बहरहाल चलते हैं एक और कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो,
4: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेलो जी, मनोज जी, मनोज जी है आपका नाम है ना?
1: नहीं, मेरा नाम तो अदनान है
4: जी, मनोज जी से आया है। तो चलिए, मेरा नाम है अनुप कुमार भट्टाचार्या
1: जी, जी जी
4: जी, अनुप कुमार भट्टाचार्या, और मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट भूमि असम से तालुका है।
1: अरे वाह, क्या बात है, असम से आपकी कॉल है। अच्छा एक चीज, अब जैसे ही असम नाम सुन रहे हैं तो हम सभी लोगों को वहाँ की बाढ़ की जो सीन है वो याद आ रही है। सॉरी मैं आपसे ऐसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ इस बारे में, लेकिन अभी हालात कैसे हैं वहाँ पे?
4: जी अभी क्लाइमेटिक जो हालात है, बारिश हो रहा है
1: जी।
4: और बहुत बारिश, दिन से लगातार बारिश हो रहा है और गर्मी का जो ये क्या बोले उमस भरी जो गर्मी थे वो थोड़ा बहुत कम हो गया है ना।
1: अच्छा, थोड़ी सी उमस कम हो गई है आपने बताया।
4: जी
1: उमस कम हो गई है वहाँ पे।
4: जी जी जी जी। अच्छा। और हमारे यहाँ पे तो आप तो आसाम में कभी आए हैं?
1: नहीं, कभी नहीं आए हैं और मुझे लगता है मैं आना ही चाहिए। बहुत खूबसूरत राज्य है वो, बहुत खूबसूरत
4: है। जी, असम नाम से एकदम पता चलता है, असम किसी से मैच नहीं होता है ना।
1: सही बात है।
4: और जी, और असम के जो चाय बागान जो है, चाय बगीचा जो है
1: जी,
4: और चाय की जो महक, चाय की जो क्या वो कड़कदार एक के खुशबूदार एक के ड्रिंक होता है हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल है और चारों ओर वो तो विदेश में एक्सपोर्ट होता है हमारे असम की चाय।
1: जी बेशक बेशक।
4: जी और यहाँ पे मतलब बात करते हैं जो हमारे दुर्गा देवी महामाया के जो 51 पीठ के एक पीठ है हमारे यहाँ पे नीलाचल पहाड़ के पर
1: जी,
4: जो कामाख्या मंदिर
1: जी,
4: नाम से पुकारते हैं
1: जी,
4: और बहुत श्रद्धालु आते हैं अम्बुबाची के अवसर पर और बहुत क्या बोलते हैं हमारे धरोहर सांस्कृतिक जो धरोहर है वो हमारे गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में दिखाई पड़ता है।
1: अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। और बहुत सारी दुआएं अनूप जी असम के लिए, असम वासियों के लिए कि इस वक्त जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई हुई है उससे बचें और कहीं ना कहीं सभी सुरक्षित रहें, ऐसी हम सभी लोगों की दुआ आप सभी लोगों के लिए है।
4: जी जी जी। यार एक बात कहूँ, मतलब एक तरफ से क्या होता है ये जो नेचुरल कैलामिटी नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो होता है वो जिम्मेदार तो हम ही है ना।
1: बेशक।
4: और क्या होता है नेचुरल जो ये नेचुरल जो ये है आपका पर्यावरण का संतुलन जो है वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम क्या बोलते हैं ये पेड़ पौधे ऐसे में क्या होता है काट देते हैं और इसके बदले में कोई पेड़ का चारा पौधे के चारा नहीं क्या बोलते हैं वो तो हार्वेस्ट नहीं करते है तो इसीलिए पर्यावरण तो ऐसा ही हो रहा है। और क्या प्राकृतिक जो डिस्ट्रक्शन जो है वो तो हो रहा है चारो।
1: बेशक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही और मुझे लगता है कि इसका जो ध्यान है अपने अगर स्तर पर हम कर सकते हैं तो हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें हम अपना एक अच्छा असर डाल सके। और बहुत सारी दुआएं अनूप जी आपके लिए और परिवार के लिए और असम वासियों के लिए।
4: जी जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच।
4: बहुत शुक्रिया आपका।
1: सो भाई ये तो थे हमारे साथ में अनूप कुमार भट्टाचार्य जी जिन्होंने असम से कॉल किया और इस वक्त असम का नाम आते ही हमको सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पर जो लगातार बाढ़ की तस्वीर देख रहे हैं, एक भयंकर तबाही देख रहे हैं वो सामने आ जाता है। सो बहुत सारी दुआएं वहां के रहवासियों के लिए। एक लास्ट कॉल है और इस लास्ट कॉल के बाद हम आपसे विदा लेने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो।
5: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
5: बस वही पुराने।
1: हाँ बादल गोयल जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आज बहुत देर तक चल रहा है तो।
1: हाँ आप ही का इंतजार था क्योंकि अनु बोल के गई थी गोंडा वाले जो हैं वो बड़े प्यार करते हैं तो मैंने पूछा भी था कि मतलब बादल जी भी, तो बस हमको इस बात को सुनना है आपसे, यही मेन आज की हमारी आपसे सवाल भी है।
5: तो प्यार करते हैं इसलिए तो बरसते हैं।
1: प्यार करते हैं इसलिए बरसते हैं।
5: और क्या, देर देर के
1: कुछ ज्यादा ही नहीं बरस गए हैं असम में बाढ़ ले आए हैं।
5: तो हम गोंडा वालों की बात कर रहे हैं, गोंडा की बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, वो अपना एरिया नहीं, अपना थाना नहीं लगता है?
5: नहीं।
1: वहाँ ड्यूटी नहीं लगती आपकी? इधर ही, इधर आसपास ही रहते
5: हैं।
1: क्षेत्र से बाहर है। ऑलराइट, सो चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे।
5: बिल्कुल बिल्कुल आपकी उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अपना ध्यान आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किताबों से जुड़ा बस एक ये लास्ट क्वेश्चन आपसे भी है कि आज बुक लवर्स डे है, कोई ऐसी किताब जो कभी आपके जीवन में कुछ भी उसने थोड़ा सा भी असर डाला हो तो प्लीज बताइए।
5: किताब ऐसी कोई हमने पढ़ी नहीं विशेष, किताब बुक सुनते रहते हैं।
1: एक गाना नहीं सुना आपने? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, अंबर जी का चेहरा कभी पढ़ के देखो। नहीं सुना? अरे फिर क्या सुना? नहीं सुना है, बेकार है। ये जो हमने गाना सुना है वो वाला नहीं सुना ना आपने?
5: वो वाला नहीं।
1: हाँ वही मैंने गाना, तो फिर बेकार है।
5: वो वाला सुना जो पहली लाइन थी।
1: पहली लाइन थी, दूसरी लाइन में ही तो सारा मामला चेंज हो गया। बहुत बढ़िया। और जाने जाते कुछ कहना चाहेंगे?
5: किस चीज पर बोले?
1: जिस चीज पर बोलना चाहें।
5: बहुत से सारे टॉपिक है जिस पे कही, उस पे बोले, टॉपिक की कमी थोड़े ना।
1: कोई टॉपिक नहीं, बस आज का शो आपको ऑल ओवर जो सबको सुना उसमें से कोई एक दो हाईलाइट जो आप बताना चाहें, बस कहना चाहें उस पर कोई अपनी बात।
5: पूरा शो कहाँ सुन पाते हैं आप, फ्रिक्वेंसी सही नहीं करा रहे हैं हमारे यहाँ।
1: जितनी आपने सुना है, जितनी सही फ्रिक्वेंसी में सही चीज सुना है आपने,
5: सही फ्रिक्वेंसी में कुछ वो सुने थे जिससे आप क्या पूछे थे, देखो दिमाग से स्लिप हो गया है।
1: ये बढ़ती उम्र का ही साइड इफेक्ट्स हैं।
5: नहीं नहीं वो बहुत ध्यान पूर्वक नहीं सुने, एफएम को फ्रिक्वेंसी सेट करने में लगे थे, उसका तार वार ऊपर इधर उधर कर रहे थे, लेकिन चला क्या ही बताएं।
1: कोई बात
5: कह रहे, थोड़ा सा हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, आप यही ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
1: हम इतना ध्यान दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते टावर के ऊपर चढ़ के देख रहे थे आपका घर, मैंने कहा दिखाई देगा तो पहुंचना चाहिए फिर यहाँ से नेटवर्क भी।
5: देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ से नहीं दिखाई देगा, जो भी टावर हमारे बगल में आपको टावर ही दिखाया होगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
5: शो आपका तो अच्छा ही रहता है फिलहाल, आवाज वाले के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
1: कोई बात नहीं, हम खैर क्षमा देते भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मांगना आपका फर्ज था और मना करना मेरा फर्ज है।
5: हम प्रार्थी तो है,
1: आपका आज्ञाकारी शिष्य जो हम लोग को लिखते थे एप्लीकेशन हिंदी वाले।
5: मुझे मुझे जो है वो क्या बोलते हैं, बीमार ना होते हुए भी बीमार होने का जो है काम दिया गया।
1: सही बात है। और ये जो आपका आज्ञाकारी लिखते हुए हाथ कांपते थे, क्योंकि आज तक कोई ऐसी आज्ञा का पालन किया नहीं मैंने टीचर की, तो मैं सोचता था क्या ही लिख रहा हूँ।
5: अरे तो आप जो है वो क्या बोलते हैं, दोपहर बाद जाते होंगे?
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं था, दोपहर बाद तो चले जाते थे।
5: अच्छा तो चले जाते
1: जी,
5: जाते समय पे थे।
1: जाते समय पे थे।
5: अच्छा तो आप फिजिकली प्रेजेंट रहते थे, मेंटली अब्सेंट रहते थे?
1: एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही पहचाना आपने।
5: ओके, ये चैलेंज, ये भी एक टैलेंट है।
1: हाँ हाँ बेशक।
5: दोपहर बाद जाना और मेंटली अब्सेंट रहना, ये दोनों एक टैलेंट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिलहाल
5: मेंटली अपसेट रहते थे एनसीसी के कैंप में।
1: अच्छा अच्छा, सावधान विश्राम।
5: जो 12 बजे, हाँ वो 8 बजे से 12 बजे तक वो जो कभी राइफल की ट्रेनिंग देते थे, कभी मशीन गन की ट्रेनिंग देते थे, कभी जीपीएस की ट्रेनिंग देते थे, उसमें नींद आने लगती थी।
1: सही है।
5: कॉपी किताब लेके बैठे रहो, सोते रहो।
1: करेक्ट। वैसे थोड़ा सा समय हो चला है, मुझे लगता है कि आपसे विदा लेना ही होगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल, अगले हफ्ते मिलेंगे।
1: बेशक, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो ये तो थे बादल गोयल जी फ्रॉम गोंडा। देखिए कुछ मैसेजेस आ गए हैं। जीशान बहुत बढ़िया, और महेंद्र ने लिखा है बहुत अच्छा लगता है लोगों की बातें और उनका अनुभव सुन करके, थैंक यू। अदनान सर जी, ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए शाम तक। ओहो हो, जब तक ये कॉल्स चलती रहेगी हमारी आवाज़ निकलती रहेगी, है ना। कुछ याद आया आपको शोले का? नगेश्वर लिखते हैं, हर इंसान में अलग अलग खूबी होती है, कोई अपने कामों में मस्त रहता है तो कोई दूसरों को हंसाकर खुश रहता है। बेशक, अंबर जी ने तारीफ की और थैंक यू सो मच कृतिका की। एंड महेंद्र जी ने भी बोला, मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू मुस्तफ़ा, आपका स्वागत है, वेलकम है। अंबर जी लिखते हैं, सुप्रभात आरजे अदनान जी, सुप्रभात आपको भी। इतनी लंबी बात पहली बार की, वरना आरजेस बोल देते हैं कितना समय नहीं है ना। मुझे दरअसल वो गुर्दों वाला पूछना था कि भाई अगर मान लीजिए रायबरेली दिलवालों का शहर है तो क्या गोंडा गुर्दों वाला का है, मतलब एक सवाल था। इस चक्कर में हम रुके रह गए काफ़ी देर तक। इरशाद जी हैं हथियागढ़ गोंडा से, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। दीपक जी आपका भी स्वागत करते हैं, आरजे अदनान नगेश्वर आपका भी वेलकम है, पूर्णिमा का भी स्वागत है, आप सब लोगों ने मैसेज किया, धर्मेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, अनूप मिश्र जी बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस, इतने सारा प्यार देने के लिए। फिलहाल जाते जाते ये गाना सुनिए और जस्ट लौट के आते हैं गीता दीदी के साथ, हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी वाले प्रोग्राम में।

0: सो यस, हम्प्टी डम्प्टी में एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, जैसा कि हमने बताया था। और आज है संडे, और संडे को हमारी मुलाकात हो जाती है रंग बिरंगी गीता दीदी जी से। अब आप सोचेंगे रंग बिरंगी क्यों भाई, इतने कलरफुल कपड़े जो पहन के आती गीता दीदी कि हम उनको रंग बिरंगा ही मानते हैं, यानी काफ़ी अच्छी लगती हैं, बच्चों के साथ खुद भी एक छोटी सी बच्ची लगती हैं। फिलहाल गीता दीदी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं, मौजूद हैं, और आज बताया उन्होंने नाश्ता बहुत अच्छा किया। खैर चलिए, ये तो हम आपको लाइव पूछ के बताते हैं, लेकिन पहले ले लेते हैं हालचाल।
1: हेलो एवरीवन।
0: चलिए आप लोग भी हाय बोल दीजिए गीता दीदी को। दीदी ने हेलो बोल दिया है, और जब तक आप हाय बोली तब तक आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गीता दीदी से। अपना हालचाल बता दीजिए पहले तो आप।
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
0: बहुत बढ़िया। सो
1: देखिए कैसे आज मैं तोता बन के आई हूँ, हरा हरा मैं तोता हूँ।
0: मैंने वही कहा ना कि गीता दीदी जो है हर हफ्ते कुछ ऐसे कलर में आती हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों की टोली में एक बच्ची और आ गई।
1: बिल्कुल हो ना भी, मेरे साथ एक बच्चा ऑलरेडी बैठा रहता है।
0: हाँ।
1: और जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि ऐसे ऐसे मतलब रहना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना चाहिए।
0: वाह क्या बात है। आपकी अच्छी बात पता है क्या है
1: जी,
0: आप कभी ये नहीं देखते कि कौन है, कहाँ है, कैसा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप सीखने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल। और ये मतलब जो ये लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बर्थ टू डेथ चलता ही रहता है।
0: क्या बात है, मतलब जन्म से मृत्यु तक का सफर
1: बिल्कुल
0: सीखते रहने में ही जाता है। वाओ,
1: हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो सीखते रहना चाहिए, इसमें बुराई क्या है।
0: अभी तक झूठ बोलना नहीं सीख पाए हम। कुछ आइडिया हो तो बताइए।
1: भाई झूठ तो बहुत बोला मैंने, तो झूठ की पराकाष्ठा जो होती है उसको तोड़ चुके।
0: ओह माय गॉड, आप तो कुख्यात है झूठ बोलने में।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मैं ऐसा कौन सा झूठ बोलूं, मैं पकड़ा जाता हूं, दिक्कत ही है।
1: बस यही तो झूठ बोलने का गुण ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाला पकड़ भी ना सके आपका झूठ।
0: तो दीदी मान ली अगर किसी दिन हम ऐसे हो गए कि हम झूठ बोलने लग गए और लोग ना पकड़ पाए, तो कोई सर्टिफिकेट आप देंगी?
1: बिल्कुल, आप मेरी टोली में शामिल हो जाए और आपको सर्टिफिकेट ना मिले, ये हो नहीं सकता है। ये झूठों की टोली है हमारी पूरी, तो उसमें एक नाम अदनान जी का भी आज से जुड़ गया। मैं इनको एकदम परफेक्टली झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगी।
0: चलिए भाई, मैंने तो अपने
1: झूठ भी दो तरीके के होते हैं।
0: अच्छा।
1: एक तो वो है जो दूसरे को कष्ट देते हैं, और
0: है।
1: एक जो वो होते हैं जो दूसरों को बिल्कुल कष्ट नहीं देते बल्कि दूसरों की भलाई में लग जाते हैं। तो हमें तो वैसे वाले झूठ बहुत अच्छे लगते हैं जिससे किसी का भला हो रहा हो, मैं फट से झूठ बोल देती हूँ।
0: हाँ, दूसरा वाला। वही वाला हम भी बात कर।
1: तो बहुत मजा आता है झूठ बोल के किसी को बचा लेना, झूठ बोल करके कुछ बचा लेना, तो ये होना चाहिए ना।
0: ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर भाई बहनों में क्या होता है कि एक दूसरे के इतने ज्यादा कांड पता होते हैं कि मजबूरी वश हम बता भी नहीं पाते।
1: तो देखिए जैसे मैंने कुछ अच्छी चीज रखी है फ्रिज में, मैंने खा लिया। अब अगला कह रहा मैंने नहीं खाया, मैंने कहा नहीं आपने ही खाया, मैंने आपको खाते हुए देखा।
0: सही बात है।
1: और इतना कॉन्फिडेंटली बोले कि अगला हाँ तुम ही नहीं खाया होगा।
0: सही बात है।
1: तो बड़ा मजा आता था ना,
0: मजा आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बचपन की बात है।
1: अब
0: तो
1: बाद में जो है दूर से उंगलियां दिखाई जाती थी कि इसका बदला मैं भी लूंगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और चलिए फिलहाल अब इसी बातचीत के दरमियान हमारे आपके स्टोरी की तरफ चलने का भी वक्त आ गया। हाँ, गीता दीदी आज
1: देखो आज की स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए कि जीवन में वो धारणा जो है धारण करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पानी का बहुत दुरुपयोग होता है, है ना।
0: हाँ जी।
1: तो पानी को थोड़ा सा हार्वेस्ट करना सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये हमारी कहानी में एक बात और छिपी हुई कि अगर हम किसी की बात सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है।
0: अच्छा होता है, बेशक सही।
1: हमेशा जो है दूसरों की सुनना भी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बस अपनी बात को सर्वोपरि और दूसरों की सुनते नहीं, तो वहाँ पे जो थोड़ा टकराव होता है वो जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहानी में बहुत कुछ ऐसा ही छिपा हुआ है। और अगर देर हो रही हो तो मैं कहानी शुरू कर दूं?
0: प्लीज,
1: क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके होंगे मेरी कहानी सुनने के लिए जैसा हमेशा सुनते हैं।
0: वही मैंने कहा ना, मैं खुद इसीलिए बैठता हूँ कि भाई आपसे आपकी कहानी जरूर सुनूं।
1: तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कि बहुत पुराने समय की बात है, वैसे नए समय की बात भी है ये। तो जो पहाड़ियाँ होती थी उन पे हरे भरे खेत हुआ करते थे और बीच में उन्हीं खेतों के बीच में एक सुखपुर नाम का बहुत सुंदर छोटा सा गांव था। गांव के लोग वैसे तो बहुत मेहनती थे लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी कमी थी कि हर व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था। किसी की बात सुनना उन्हें अपनी हार लगती थी। गांव में कोई समस्या आती तो समाधान खोजने से पहले 10 लोग सलाह देने और 20 लोग दूसरे की बात काटने के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो गांव के जैसे गांव के क्या आज भी बुजुर्ग लोग अक्सर ही कहा करते हैं कि जहां सुनने वाले कम और बोलने वाले अधिक हों वहां छोटी से छोटी समस्या भी बड़ा रूप धारण कर लेती है और उसका समाधान निकालना कठिन हो जाता है। क्यों अतनान जी, सही बात है ना?
0: अरे बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: तो एक बार यूं हुआ कि सुखपुर में बहुत बारिश बहुत कम हुई, जैसे हमारे गोंडा में भी बहुत कम हो रही है। तालाब सूखने लगे और कुओं का पानी जो जल स्तर था वो काफ़ी नीचे चला गया। अब गाँव वालों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत शुरू नहीं हुई थी कि गांव के मुखिया ने कहा, भाइयों परिस्थिति बहुत गंभीर है और हमें सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे पूरे गांव को पानी मिल सके। इतना सुनते ही एक रामदीन नाम का व्यक्ति खड़ा हो गया। तो इसमें सोचने की क्या बात है, गांव के बीच एक बहुत बड़ा कुआं खोद देते हैं, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब पीछे बैठे एक श्याम लाल ने तुरंत टोका, तुम्हें क्या पता पानी कहाँ है? मेरी मानो तो नदी से नहर खोद कर गांव तक पानी ले आया जाए। तभी तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, नहर में तो बहुत पैसा लग जाएगा, गांव के चारों ओर 10 छोटे छोटे तालाब बनवा दो, बस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब चौथा चिल्लाया, तालाब क्यों, हर घर में एक एक कुआं होना चाहिए। बस फिर क्या था, पंचायत समस्या के समाधान की जगह बहस का अखाड़ा बन गई। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हर व्यक्ति चाहता था कि उसकी योजना मानी जाए और उसका नाम गांव में प्रसिद्ध हो जाए। उसी पंचायत में गांव के एक वृद्ध शिक्षक हरिदास जी चुपचाप बैठे थे। उन्होंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया था और आसपास की भूमि तथा जल स्रोतों की अच्छी उनको जानकारी हो चुकी थी। मुखिया ने उनसे भी पूछा, गुरुजी आप चुप क्यों बैठे हैं, आप भी तो कुछ कहिए। हरिदास जी खड़े हुए और बोले, पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि वर्षा का पानी सबसे अधिक कहाँ बहकर नष्ट होता है। यदि पुराने तालाब को गहरा करके और उसके आसपास छोटी जल रोक संरचनाएं बनाकर पानी को रोक लिया जाए तो भूजल भी बढ़ जाएगा। और इतना कहना था कि उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ से आवाज़ आई, अरे गुरुजी आप बच्चों को पढ़ाइए, खेती और पानी का काम हम जानते हैं। इस पर सारे लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। हरिदास जी भी मुस्कुराए और फिर चुपचाप बैठ गए। अंततः पंचायत ने बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए गांव के बीच एक विशाल कुआं खोदने का निर्णय लिया। कई दिनों तक मजदूर लगे रहे, कुआं खोदा जाने लगा, गांव का बहुत पैसा खर्च हो गया, कुआं गहरा होता गया लेकिन पानी का नाम निशान नहीं था। पानी नहीं निकलना था तो नहीं निकला। कुछ लोगों ने कहा, और गहरा करो। कुआं और गहरा किया गया, फिर भी पानी नहीं मिला। अब गांव के पास ना पर्याप्त पैसा बचा था और ना ही पानी का कोई हल निकल पाया था। लोगों के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। तभी मुखिया हरिदास जी के घर पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, अरे गुरुजी हमसे भूल हो गई है, हमने आपकी बात सुने बिना निर्णय ले लिया, कृपया अब गांव को रास्ता आप ही दिखा सकते हैं, चलिए और हमें रास्ता दिखाइए। हरिदास जी ने कहा, गलती कुआं खोदने में नहीं हुई है, गलती यह मानने में हुई है कि केवल जोर से बोलने वाला ही सबसे बुद्धिमान होता है। अगले दिन हरिदास जी गांव वालों को लेकर पहाड़ी के नीचे पुराने तालाब के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि वर्षा के दिनों में पहाड़ी का अधिकांश पानी इसी रास्ते से बहकर दूर निकल जाता है। गांव वालों ने मिलकर पुराने तालाब को गहरा किया, फिर उसके आसपास छोटी छोटी मेड़े बनाई और पानी के प्राकृतिक रास्तों को तालाब की ओर ही मोड़ दिया गया। फिर क्या था, कुछ सप्ताहों के बाद वर्षा जोरदार हुई। पहाड़ी से बहता पानी इस बार गांव के बाहर नहीं गया, तालाब भरने लगा। धीरे धीरे आसपास के कुओं का जलस्तर भी बढ़ गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उसी शाम को पंचायत के सामने हरिदास जी ने कहा, बुद्धिमान वह नहीं है जो हर विषय में अपनी राय देता है, बुद्धिमान वह होता है जो ये जानता है कि कम बोलना है, कम कब सुनना है और किसकी बात का सम्मान करना है। मुखिया ने सभी की ओर देखकर कहा, आज हमने सीख लिया कि जहाँ समझदार लोगों की बात सुनने की परंपरा समाप्त हो जाती है और बिना किसी ज्ञान के हर व्यक्ति स्वयं को निर्णयकर्ता समझने लगता है, वहाँ समाधान नहीं केवल शोर पैदा होता है। तभी हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ मूर्खों का मंच होता है वहाँ हर कोई सरपंच होता है। बस उस दिन के बाद सुखपुर में एक नियम बन गया कि निर्णय से पहले चर्चा होगी, चर्चा से पहले तथ्य देखे जाएंगे और जिस विषय का जिसे ज्ञान होगा उसकी बात सम्मानपूर्वक सुनी जाएगी। तो अदनान जी, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पद, ऊंची आवाज और भीड़ का समर्थन किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकते। सच्ची बुद्धिमत्ता ज्ञान के साथ विनम्रता, सुनने की क्षमता और सही व्यक्ति की सलाह स्वीकार करने में होती है। जहाँ हर व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगे वहाँ अच्छे से अच्छा उद्देश्य भी असफल हो जाता है
0: बेशक। और ये हम अपने परिवार में बहुत अच्छे से देखते हैं
1: जी।
0: जिन परिवार में चिल्ला करके, डांट करके, मार करके बातें होती है वहाँ का माहौल अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज बाहर तक, और जहाँ बड़े ही प्यार से और हंसी खुशी सारी बातें होती है वहाँ तो
1: हर समस्या जो चुटकियों में
0: कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर कोई बाहर से इंसान पहुंच जाए तो उसको तो रियलाइज तक नहीं होता क्योंकि सब के सब फौरन मिल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, हर परिवार में यही होना चाहिए कि बड़ों की बात को सुनना चाहिए और उनकी बात का सम्मान भी रखना चाहिए।
0: बेशक, और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं या ऐसे स्पीकर्स जिनको हमको सुनना पसंद है वो बहुत आराम से बोलते हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: और धीरे बोलते हैं तो उनकी बात का वजन बहुत बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कहानी तो मुझे
1: कहानी बहुत तो ये भी बता रही है कि पानी को हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए और पानी जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल दीदी, मुझे लगता है कि अगर हम ब्रश भी करते हैं और टंकी खुली छोड़ देते हैं तो यहाँ से वो स्टेप लेने वाला
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, हर जगह मालूम है अदनान क्या होता है, कभी कभी मैं निकलती हूँ रास्तों से तो टंकी खुली हुई है, टैप खुली हुई है ना, अब वो टैप बंद करना लोग नहीं जानते नहीं है या जानबूझकर नहीं करते, मुझे तो समझ में नहीं आता और हैरानी भी होती है। फिर मैं स्वयं जाती हूँ और उस टैप को बंद करके तभी मुझे जो है तसल्ली मिलती है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब पानी बिना वजह बहाया जा रहा हो।
0: बिल्कुल सही बात है। सो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी सी बातें ही हमको हीरो बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी और की निगाह में तो बाद में हम अपनी निगाह में
1: हीरोइन।
0: यस, तो भाई आप भी बनिए हीरो और हीरोइन, ये तो बहुत प्यारी सी बात है। लेकिन ये स्टोरी कैसी लगी जो गीता दीदी ने हम तक पहुंचाई, हमको सुनाई, इसको लेकर आप भी चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं। फिलहाल गीता दीदी चली नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने। क्यों दीदी?
1: ओके, मैं चली नन्हे मुन्नों की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9 81 9 76। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: घर नानी के घर जाएंगे।
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाएंगे।
0: हलवा पूरी, मीठी चूरी और जलेबी खाएंगे। नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे। नानी।

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिला। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो बच्चों, कैसे हो?
1: ठीक है दीदी। ठीक है दीदी।
0: अरे गुड मॉर्निंग तो बोलो।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो सब कैसे सुस्त सुस्त से लग रहे हो, क्या बात है? धूप ज्यादा तेज है क्या?
3: जी दीदी।
0: आज धूप निकल आई है भाई। सावन का महीना है ये, और सावन के महीने में देखो चारों ओर कैसी हरियाली चमक रही है ना?
1: जी दीदी।
0: चारों तरफ सब हरा हरा वातावरण है। कोई बात नहीं है, एक दिन धूप निकल आती है तो देखो बिना धूप की ये हरियाली नहीं है, है ना?
1: जी दीदी।
0: तो जब धूप निकलती है तभी तो मालूम है क्या होता है कि जो पौधों में अंकुरण होता है ये इसी धूप की वजह से, और ये धूप जो होता है पौधों का भोजन होता है। फोटोसिंथेसिस का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा।
1: जी दीदी, दीदी, दीदी।
0: है ना? तो अपने लिए ये भोजन तैयार करते हैं, तो कभी कभी सूरज का निकलना भी जरूरी है। हाँ बेटा।
3: दीदी धूप होती तो बहुत तेज, बारिश भी होती तो बहुत तेज।
0: तेज भाई, धूप भी होती बहुत तेज। देखो पते की बात कही है हमारी क्या छोटी सी सानिध्या जो है बहुत पते की बात बोलती है। तो पहले तो हम ये पूछेंगे आप लोग कि कौन सा बहुत खास दिन आने वाला है नेक्स्ट वीक? कौन बच्चा बताएगा?
2: मैं बताऊं दीदी?
0: हाँ बताइए।
2: 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है।
0: ओके, देखो हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, सब इनको मालूम रहता है कि नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है। तो भाई देखिए धूप धड़ाके वाला दिन आ रहा है ना?
1: जी दीदी।
0: हाँ दी। आज़ादी का पर्व है ये, है ना? और हम लोग को खूब मजे से मनाना है, खूब धूमधाम से मनाना है ना? हमें तो बहुत मज़ा आता है। मेरे हाथ में जो है तिरंगी वाला बैंड होगा, मेरे हाथ में तिरंगा झंडा होगा, और मेरे कपड़े भी कुछ कुछ तिरंगे से मैच खाते होंगे। बहुत मज़ा आता है जब मैं यहाँ आती हूँ सज धज के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है सानिध्या?
3: दीदी बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा लगता है ना? और हमारे बलराज बताएं, देशराज बताएं, और विराट भी बोले, कैसा लगता है?
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दीदी।
0: अच्छा ये बताओ कि लड्डू मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं?
1: मिलते हैं दीदी।
0: अच्छा बहुत, हम लोग जब पढ़ते थे छोटे, तुम लोग के जैसे बच्चे थे ना, तो 4 लड्डू मिलते थे। कितने मिलते थे?
2: 4।
0: हाँ लेकिन अब जो है समय थोड़ा बदल गया है, तो अब तो केक आता है, कभी पेस्ट्री आ गई, कभी बिस्किट आ गए, कभी टॉफीज आ गई, या फिर कभी कभी चॉकलेट भी मिलता है। यही मिलता है ना आप कॉलेजेस में?
1: जी दीदी। स्कूल्स
0: में है ना,
1: चॉकलेट और चिप्स।
0: हाँ यही दे दिया जाता बच्चों को, लेकिन हम लोग के टाइम पे 4 लड्डू रंग बिरंगे जो वो पैकेट्स होते थे उसके अंदर सजा के मिलते, बहुत मज़ा आता था। हम लोग बस बाहर निकल के लड्डू खाना शुरू कर देते थे। तो चलो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करें? आज हम चलिए बलराज जी से शुरुआत करते हैं। और बलराज जी आज क्या बताने वाले हो, कौन सी पोयम लेके आए हो?
4: दीदी मैं पुष्प की अभिलाषा सुनाने वाला हूँ।
0: पुष्प की अभिलाषा, ये तो बहुत प्यारी पोयम है, और ये पोयम तो हमारे जो शहीद हैं उनके लिए डेडिकेट की गई है ना?
4: जी दीदी।
0: हाँ तो चलो सुनते हैं ये प्यारी सी पोयम, मुझे भी याद है याली, मैं तुमको ज्वाइन कर लूँगी। ओके
4: दीदी।
0: चलो।
4: चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को
0: ललचाऊँ,
4: चाह नहीं सम्राटों के सब पर
0: मैं हे हरिडाला जाऊँ,
4: चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इतराऊं,
0: मुझे तोड़ लेना वन माली उस पत पर तुम देना फेंक,
4: मुझे तोड़ लेना वन माली उस पत पर तुम देना फेंक,
0: जिस पत पर
4: मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
0: जिस पत जाए वीर अनेक। वाह भाई, तालियां तालियां तालियां, बहुत मजेदार। देखिए मतलब एक पुष्प है वो भी कितना मतलब अपने देश के प्रति सम्मान रखता है ना। कहता है क्या पुष्प की अभिलाषा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ जाए मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो भाई बहुत अच्छी ये कविता है, हमारे बलिदान से ही हमारा ये देश आज जो है पुष्पित और पल्लवित हो रहा है ना।
4: जी दीदी।
0: और ये बलिदान नहीं हो तो पता नहीं अब तक हमको कितने लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ था, है ना? और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। पहली बार जो है देश की आज़ाद हवा में हम सब ने सांस ली थी, और उसके पीछे कितने सारे शहीदों का बलिदान था, कितने सारे लोगों का बलिदान था, ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके
2: जी दीदी,
0: तो चलो चलते हैं हम। विराट जी, आज कोई आप पोयम लेके आए हैं?
2: नहीं दीदी, आज एक कहानी है।
0: तो चलिए आपकी कहानी हम बाद में सुनते हैं, लेकिन हमारी सानिध्य उनको बहुत जल्दी होती है कि वो जल्दी से सुनाए और हमारा मनोरंजन करें, साथ में अपने जो दोस्त हैं उनका भी मनोरंजन वो करती रहें। तो चलिए चलते हैं हम सानिध्य की ओर, देखते हैं सानिध्य आज क्या लेकर के आई है। सानिध्य आज क्या सुनाने वाली हो? अरे भाई, सानिध्य के पास तो बहुत सारा कंटेंट होता है, और वो
3: दीदी कविता
0: कविता, देखा मैंने कहा था ना उसके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। तो चलो सुनते हैं इनकी भी कविता क्या कहती है।
3: ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी, तब जाकर मेरे देश ने सच्ची आज़ादी पाई थी। अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था, खुशहाल रहे यह देश मेरा यह सोचकर सब कुछ खोया था। पर ये क्या देखो चारों ओर फैली यह तैसी लड़ाई है, क्या इसलिए उन वीरों ने अपनी जान दबाई है। एक दौर था वह जब लौट यहाँ इस पर मर मिटते थे, पर दौर ये है जब लौट यहाँ अपने ते ही दुश्मन बन बैठे थे बैठे हैं। आओ मिलकर एक बार पुनः एक नया जहान बनाते हैं। जो सपना शहीदों ने देखा था उसे उसको साकार बनाते हैं। आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उनका जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी।
0: बिल्कुल
3: ही देश से जिसने सच्ची मोहब्बत थी, उसने तुर्बानी लाजवाब थी, तब जाकर मेरे देश ने आज़ादी थी ये सौदा ली।
0: वाह वाह वाह, भाई ताली तो बजा दो सानिध्य के लिए। कितनी प्यारी पोयम सुनाई है सानिध्य ने, कि भाई हमें तो याद रखना ही चाहिए ना कि आज़ादी हमको किसने किसने दिलाई, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन से लोग, आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे?
1: जी दी दी।
0: कौन कौन से?
1: चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, खुदी राम बोस,
0: और हमारे बापू
1: भी थे
0: और भी बहुत सारे जिनके इतनी लंबी श्रृंखला है कि हम नाम लेते जाएंगे और वो सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत कुर्बानियाँ दी।
1: जी दीदी जी,
0: तो हमें तो उनका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, उनको हमेशा अपने गीतों में अपनी बातों में चर्चा का विषय बनाना चाहिए, उनको इसी तरीके से हम श्रद्धांजलि देते रहें, उन्हें याद करते रहें। बस ये एक दिन के लिए नहीं पर्व आता है कि स्वतंत्रता दिवस आया बस हमने थोड़ा सा कुछ उनके बारे में बोल दिया, हमें तो हर दिन हर पल हर सांस से उनको जो है शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद करते रहना चाहिए, है ना?
1: जी दीदी,
0: तभी तो हम अपने देश के प्रति सच्ची जो भक्ति है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। एक दिन के लिए नहीं, केवल हमारा तो हर दिन जो है देश के लिए समर्पित होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम किसकी तरफ चले अब? चलो चलते हैं हम देशराज की ओर, और देशराज आज आप क्या बताने वाले हैं?
1: दीदी आज 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे भी है।
0: ओ वाह, आज के दिन उनको गिरफ्तार किया गया था, है ना? काकोरी एक स्टेशन है हमारे उत्तर प्रदेश में,
1: लखनऊ में,
0: लखनऊ के आगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर एक बार सरकारी खजाना जा रहा था। वो सरकारी खजाना क्या हमारे देश का लूटा हुआ पैसा था, वो सरकारी खजाना बन गया था, और हमारे देश में जो है लड़ाइयाँ चल रही थी अंग्रेजों को से मुक्त कराने के लिए, भारत में प्रयास किए जा रहे थे, तो पैसे की काफ़ी कमी आती थी, और वो पैसा जो है कहाँ से आएगा, हमारे पास कोई ऐसा स्रोत नहीं था कि कहाँ से, और अंग्रेज लूट रहे थे हमारे देश को दिन प्रतिदिन। तो वो लूट करके ही हमारे देश का पैसा लेके जा रहे थे। तब तक पता चला कि इस ट्रेन से पैसा जा रहा है, तो सब ने प्लानिंग करके उस पर मतलब अटैक कर लिया और उस पैसे को हाईजैक कर लिया।
1: जी दीदी।
0: तो चलो आज तुम बता दो अपने दोस्तों को कि क्या कहानी थी। हमने तो थोड़ी सी कहानी बताई, आप विस्तार से बताइए।
1: 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे भी है, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के ही दिन 1925 को भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र रहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अन्य क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर ट्रेन से जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। उस समय क्रांतिकारियों के पास आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। इस घटना से अंग्रेज बहुत डर गए थे, किंतु पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, केवल चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।
0: जी।
1: सभी क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी।
0: जी, गोंडा जेल में है ना। और हमको मतलब मालूम है कि उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है, वो क्या कहते हैं, पीपल चौराहे के पास उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है।
1: जी दीदी।
0: है ना, आते जाते कभी हम, आपने देखा है?
2: हाँ।
1: जी दीदी।
2: जी दीदी।
0: तो हमेशा नमन करते हैं?
1: हाँ दीदी,
0: बिल्कुल करना भी चाहिए। और बहुत सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है पीपल चौराहे पर गोंडा के, तो हमारे ही गोंडा जेल में उनको फांसी दी गई थी, और समय से पूर्व दे दी गई थी, एक दिन पूर्व शायद दे दी गई थी, जो समय निर्धारित था उससे पहले ही राजेंद्र लाड़ी को फांसी की सजा दे दी गई।
1: जी दीदी, क्योंकि अंग्रेज बहुत डर गए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं हम विराट की ओर। और विराट, आज क्या बताने वाले हो?
2: आज हम एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है पते की बात।
0: पते की बात, अरे ये हुई ना पते की बात। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, ये हुई ना पते की बात। तो देखते हैं आज पते की बात क्या होने वाली है भाई।
2: आज भी हकीम लुकमान का नाम तमाम मुल्कों में बड़े आदर के साथ लिया जाता
0: है। जी।
2: उनके नाम से एक कहावत भी खूब प्रचलित है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं।
0: बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है।
2: वे जितने कुशल हकीम थे उतने ही नेक दिल इंसान भी।
0: जी बिल्कुल।
2: वे दवाओं के साथ नसीहत भी दूसरों को बांटा करते थे।
0: अच्छा।
2: उनके दोस्तों की संख्या भी बहुत अधिक थी।
0: जी।
2: बहरहाल बात उस दिन की है कि जब उनके एक परिचित ने कहा, हकीम साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी शिष्टता, इतनी समस्या कहाँ से सीखी?
0: सभ्यता। हाँ, कहाँ से सीखी? और फिर
2: मेरी इच्छा आपको अनुभव से लाभ उठाने की है।
0: बिल्कुल भाई।
2: अशिष्ट और असभ्य लोगों से, हकीम लुकमान ने तड़ से जवाब दिया।
0: असभ्य और
2: अशिष्ट,
0: अशिष्ट और असभ्य लोगों से। हाँ, फिर क्या हुआ?
2: हकीम लुकमान ने तड़ से जवाब दिया। जवाब देने में उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई।
0: जी।
2: हकीम लुकमान का जवाब कुछ अधिक गहरा था। कथन के मर्म तक वह परिचित
0: व्यक्ति नहीं पहुंच पाया था। हाँ, फिर क्या हुआ?
2: वह जरा अचकचा कर बोला, जनाब ये कैसे हो सकता है? असभ्य और अशिष्ट व्यक्ति भला दूसरों को क्या सिखला सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
2: भाई सच पूछो तो यह तुम्हारी समझ के फेर है। मैंने तो असभ्य और अशिष्ट लोगों से यह शिक्षा ली है।
0: जी।
2: कि उनकी जो बात मुझे बुरी लगी उसे मैंने फौरन त्याग दिया।
0: बिल्कुल।
2: मैंने सोचा जो बात मुझे बुरी लगी वह दूसरों को भी बुरी लगेगी। हकीम लुकमान ने सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बेहतर यह होगा जैसा व्यवहार तुम दूसरों को दूसरों से अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: परिचित व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हकीम साहब बड़े पते की बात है।
0: बिल्कुल
2: कही आपने।
0: हाँ ये थी
2: मान गया मैं आपको।
0: जी बिल्कुल भाई, ताली बजा दो हमारे विराट जी के लिए, इतनी अच्छी सी कहानी उन्होंने बताई पते की बात। अब चलते हैं हम किसकी तरफ चलें भाई, किसकी तरफ सोचना पड़ता है हमको। चलते हैं देशराज की ओर। और देशराज आज क्या बताने वाले हो?
1: आज मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मनुष्यता।
0: मनुष्यता
1: जी दीदी
0: चलिए सुनाइए।
1: विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यो सुमित्य जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही बस प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयाल दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मातृ बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीरण मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्त विहन जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। धरे न हेल मेल ना बढ़े न मित्रता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
0: वाह भाई तालियां बजा दीजिए। बहुत प्यारी पोयम थी कि अब देखिए आजकल है ना, हम ऐसे चलते चले जाते हैं और कोई बुद्धिहीन दुखी हमारे आसपास होता है, देखते तक नहीं है। कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है ना। हमको देखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन सा व्यक्ति किसी हेल्प के लिए परेशान है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। उसे अनदेखा नहीं करनी चाहिए। यही तो मनुष्यता है। हमको मनुष्य का जन्म लिया, हमको ईश्वर ने इस तरह का बनाया है कि हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी ही चाहिए, है ना।
2: जी दीदी
1: जी दीदी।
0: तो चलो भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कविता। देखिए जो कविताएं हैं, वैसे आज मालूम है कौन सा डे है? एक डे और बता दें आपको, आज है बुक्स लवर्स डे। तो मुझे तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को?
1: मुझे भी बहुत मुझे पसंद भी अच्छा है दीदी।
0: हाँ, तो ये जो कविताएं हैं, जो किताबों में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमको प्रेरित करती हैं कि हम भी अपना जो जीवन अच्छे से व्यतीत करें, दूसरों का दुख दर्द समझें और उनकी भी चिंता करना चाहिए। तो अब नंबर है बलराज जी का। कैसे हैं बलराज जी आप?
4: दीदी बहुत अच्छा हूँ।
0: तो चलिए क्या सुना रहे हैं आप?
4: दीदी आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है।
0: भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। 84 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। अरे वाह। तो चलो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
4: महात्मा
0: गांधी जी ने की थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों ने उनके कहने से भारत छोड़ भी दिया था। लेकिन उसके पीछे कितनी कहानियां छिपी हुई हैं, कितने अफसाने लिखे हुए हैं, कितने मतलब क्या कहते हैं शहीदों के बलिदान हुए हैं, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली है। तो चलिए आप अपनी कहानी पूरी कीजिए।
4: आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। यह भारत का पहला व्यापक और निर्णायक जन आंदोलन था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और देश भर में
0: डू एंड डाई
4: और देश भर में आज़ादी की नई लहर पैदा की। इस आंदोलन में सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनता ने आंदोलन समाप्त नहीं किया और अपने हिसाब से आंदोलन चलाने लगी। इसी आंदोलन का नेतृत्व असम में एक 16 वर्ष की लड़की कर रही थी, जिसका नाम कनकलता बरुआ था। कनकलता असम के गोपुर थाने में तिरंगा फहराने के लिए अपने साथियों के साथ निकली थी, किंतु थाने पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी, लेकिन कनकलता डरी नहीं और थाने के छत पर चढ़ गईं, जिस पर थाने के सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी और कनकलता अपने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। आज हम सभी कनकलता को उनके बलिदान के लिए सादर प्रणाम करते हैं।
0: भाई बहुत अच्छी बात बताई कनकलता, जैसे आप भी, हमको भी नहीं मालूम था कि कनकलता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो इनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हमें क्या तालियां बजानी चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो चलिए हमारी देखिए छोटी सी सानिध्या जो है फिर से तैयार हो गई है अपना एक कंठी निकाल करके और बोले दीदी अब मेरा नंबर है। बहुत बोल लिए ये लोग, चलो वैसे तो मैं देती हूँ ना तुम्हें मौका, लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले मैं सानिध्या को नंबर देती हूँ ना।
1: जी दीदी।
0: सानिध्या बहुत प्यारी है, चलो सानिध्या क्या सुनाने वाली हो अब तुम?
3: दीदी कविता।
0: कविता, आ तो कविता की झड़ी लगा दी है, तो सुना दो भाई कविता।
3: तुझ रंग भरे फूल, तुझ ठट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, तोई लाते मुझे दे, एक सोना जड़ा दिन, एक रुओ ती भरी रात, एक फूलों भरा दीद, एक दीती भरी बात, तोई लाते मुझे दे, एक छाता छावता, एक धूप ती छड़ी, एक बादलों ता तोट, एक डूब ती छड़ी, तोई लाते मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, तोई लाके मुझे दे।
0: कौन लाके देगा, इतनी प्यारी प्यारी ये कविताएं तुम सुनाती हो कि कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी सी बांसुरी की धुन, थोड़ा सा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। देखिए भाई कैसा, अच्छा आप लोग बरसाने गए हैं कि नहीं गए हैं?
1: नहीं गए दीदी।
0: अबे कभी मुझे मौका मिला तो आप सबको लेके मैं बरसाने जाऊंगी, मथुरा वृंदावन की सैर कराऊंगी और वहाँ देख के ही लगता है ये कि भाई थोड़ा सा जमुना का जल, थोड़ी सी बांसुरी की धुन, कोई ला के मुझे दे, वहाँ पर ये बिल्कुल चीज़ें देखने को मिलती हैं। पूरा का पूरा जो आपका वृंदावन है, बरसाना है, ये कृष्ण और राधा के रंग में रंगा रहता है और बहुत मज़ा आता है। मौका मिला तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर कराऊंगी। तो चलो चलते हैं हम। अच्छा ये बताओ कि किसी को देशभक्ति सॉन्ग आता है कि नहीं आता है? बलराज जी आप बताइए।
4: दीदी एक तिरंगा सॉन्ग आता है।
0: तिरंगा सॉन्ग है?
4: जी जी दीदी।
0: तो चलो तिरंगा सॉन्ग सुना दो जल्दी से अपने दर्शकों को और मुझे भी सुनाना है भाई। एक तिरंगा सॉन्ग क्या होता है आप लोग बच्चों की जुबानी सुनिएगा, बहुत प्यारा ये लोग गाने वाले हैं। क्या है तुम्हारा बोल बताइए जरा सा।
4: तिरंगा तेरा
5: हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा।
0: ओके तो चलो जल्दी से सुना दो।
4: तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा,

पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए तू हमें पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है कोई।

0: वाह वाह, वेरी गुड, तालियां बजाइए। बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा सुनाया भाई विराट जी ने, तो विराट ही हैं और साथ में बलराज, क्या नाम है दोनों का, विराट बलराज। तो ये जोड़ी भी भाई सलामत रहे, हमारी तो यही दुआ है। इतने अच्छे बच्चे हैं, देश के लिए इतना सुंदर सॉन्ग उन्होंने प्रस्तुत किया, इसके भी आपको बहुत बहुत बधाई। और चलिए, अच्छा ये बताइए, हम लोग तो करते ही अपने देश से प्यार, हर व्यक्ति ऐसे ही प्यार करता होगा?
1: जी दी
2: जी जी,
0: कहीं किसी भी देश का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है अपने देश से इतना ही प्यार करता है मेरी ख्याल से।
2: और जी
0: एक,
2: दी दी।
0: हाँ कभी कभी एक गीत बजता है मुझ पर, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है, वो क्या है गीत, ऐ मेरे प्यारे वतन, है ना, वो सुना है, एक कोई पिक्चर आई थी काबुली वाला, तो बाहर का व्यक्ति होता है हमारे देश में आता, तो उसको अपने देश की बहुत याद आती है, तब वो हमारे देश में ये वाला गीत गाता है, ऐसे मैंने सुना है, मुझे कुछ अभी बहुत ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन वो गीत इतना शानदार है कि क्या सुनोगे, थोड़ा सा मुझे याद है
1: जी दीदी।

0: तुझ पे दिल कुर्बान ना, कितना मीठा सॉन्ग, कितना प्यारा सॉन्ग है ये। पूरा तो मुझे नहीं आता, लेकिन बस ये एक दो लाइनें मुझे याद आती हैं, क्योंकि मुझे बहुत हार्ट टचिंग ये सॉन्ग लगता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई आप लोग के साथ, बहुत सारी गाने सुने, बहुत सारी कविताएं सुनी। तो अभी हमारी सानिध्या का जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है, और वो फिर से एक पेज लेकर के बैठी हुई है। क्या सुनाने वाली हो इस बार?
1: दीदी कहानी।
0: अब की बार कहानी है भाई, कौन सी कहानी है?
1: दीदी मूर्ख बंदर।
0: मूर्ख बंदर, अच्छा तो देखते हैं मूर्ख बंदर ने क्या किया।
1: पालते राज्य ते राजा दंडाधर के पास एक बंदर था।
0: हाँ।
1: उसका नाम दंडू था। दंडू बहुत
0: दंडू की गंडू क्या था?
1: दंडू
0: दंडू दंडू माने गंगू
1: जी दीदी
0: की दंडू चलो कोई बात नहीं, गंगू हो वो, दंडू हो वो, फंदू हो, आप सुना दीजिए।
1: वह बहुत मूर्ख था, फिर भी वह दंडाधर तो प्रिय था। दिन एक दिन दोपहर से भोजन के बाद दंडाधर अपने कमरे में सोने चला गया।
0: अच्छा।
1: दंडू भी उसके पीछे चल दिया। हाँ। जब दंडाधर लेट गया तो दंडू पंखे से हवा देने लगा। राजा दंडाधर तो नींद आ गई।
0: इतना अच्छा बंदर था कि वो हवा करता था पंखे से राजा को।
1: जी दीदी।
0: फिर क्या हुआ?
1: उसी समय एक मट्ठी दंडाधर के सिर पे आके बैठ गई।
0: मट्ठी थी क्या? था मक्खी।
1: जी दीदी।
0: ओ मक्खी, मैंने कहा मट्ठी कैसे। अच्छा मक्खी थी। हाँ फिर क्या हुआ?
1: मट्ठी तो दंडू ने मट्ठी तो भगाने का बहुत प्रयास किया।
0: मक्खी तो बड़ी ढीठ होती है ना, एक बार जिस जगह बैठेगी बार बार वहीं बैठने की कोशिश करती है।
1: लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मट्ठी बार बार उड़ती और दंडाधर पर बैठ जाती। दंडू मट्ठी से बहुत परेशान हो गया था। दंडू बहुत गुस्साया हुआ था। उसने मट्ठी को मारने का फैसला किया। इस बार मट्ठी दंडाधर की नाक पे बैठी थी। मूर्ख दंडू ने पास में रखी तलवारी उठाई और चला दी।
0: नहीं
1: और चला दी। मट्ठी तो उड़ गई लेकिन दंडाधर की नाक कट गई। दंडाधर चिल्लाते हुए उठा। उसने दंडू तो हमेशा के लिए राज्य से भगा दिया।
0: उसकी नाक ही काट दी। माय गॉड भाई, बंदर देखिए बंदर नकल तो करते हैं पर उनमें अकल की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था गंगाधर को कि एक बंदर को अपना नौकर बनाया। बंदर वो इतनी अकल नहीं होती कि मक्खी को कैसे भगाना, तो सोचने नाग ही काट दी। बहुत अच्छी कहानी थी। तो चलो बच्चों एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, और ब्रेक के बाद फिर आपसे ढेर सारी बातें होंगी। तो लेते हैं हम एक छोटा सा अर्धविराम और मिलते हैं आपको अर्धविराम के बाद।

0: तो लीजिए, हम फिर से हाजिर हैं एक बार अपने शैतान बच्चों की टोली को लेकर के। और अब हमारे साथ हैं, किसको बुलाएं? अच्छा, शेषकर को बुलाते हैं। शेषकर बहुत देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चलिए शेषकर को ही बुला लेते हैं। शेषकर जी, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: मैं ठीक हूँ। तो भाई चलिए, शशकर जी तो बिल्कुल ठीक है। और सुन लेते हैं, शशकर जी कुछ ले करके आप लोगों के लिए स्पेशल आए हैं। और ये जो सप्ताह है हमारा, ये हमारा सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के लिए डेडिकेटेड हो रहा है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं समर जी, साथ में सत्यम जी बैठे हुए हैं, और देशराज जी तो बैठे ही हैं, बाकी और भी बच्चे हैं। तो चलिए सुनते हैं हम शशकर जी से उनकी अपनी कहानी, है ना? कहानी है ना?
1: नहीं।
0: हाँ,
1: आज मैं
0: अच्छा, आज कहानी नहीं है, आज कुछ और है।
1: जी जी।
0: ओके, मुझे लगा कि हर बार आप कहानीकार बन चुके हैं तो कहानी ही सुनाएंगे। चलिए, क्या सुनाने वाले, बताइए पहले।
1: आज मैं अगस्त क्रांति दिवस के बारे में बताने आ रहा हूं।
0: अगस्त क्रांति दिवस।
1: जी दीदी।
0: चलिए,
1: आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय को याद कर रहे हैं।
0: जी,
1: अगस्त क्रांति दिवस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है।
0: जी।
1: यह दिन हमें साल 1942 की उस ऐतिहासिक जन आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। इसी ऐतिहासिक भाषण के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को करेंगे या मरेंगे का वह मंत्र दिया था, जिसने हर भारतीय के दिल में आज़ादी की एक नई चिंगारी जला दी थी। यह आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें देश के आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया था।
0: जी,
1: अगस्त क्रांति दिवस हमें यह सिखाता है कि जब पूरा देश एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती,
0: दुनिया खुद उसके सामने झुक जाती है।
1: आइए आज के इस पावन दिन पर हम उन सभी हुतात्माओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को सत सत नमन करें। साथ ही यह संकल्प लें कि हम अपने देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और एकता को हमेशा अक्षुण्ण रखेंगे।
0: बिल्कुल। तो इसके साथ ही एक कोटेशन मुझे याद आ रही है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में।

0: मिले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो हमारे जितने भी शहीद और जितने भी बलिदानी हैं उनको हम बार बार हृदय से शत शत नमन करते हैं। और हमारे साथ हैं देशराज जी। देशराज जी, अब आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: आज मैं, आज आदिवासी दिवस है तो उसके ऊपर सुनूंगा।
0: अच्छा, आज आदिवासी दिवस है। हाँ, ये तो मुझे याद था लेकिन मैं फिर से भूल गई, मुझे भूलने की बीमारी हो रही है। तो चलिए फिर से याद दिलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए शुरू करिए, आदिवासी दिवस की जानकारी हमारे दोस्तों के लिए उपलब्ध कराइए।
1: 9 अगस्त को दुनिया भर में आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आदि प्लस वासी। ऐसा लोग मानते हैं जिसका सामान्य अर्थ मूल निवासी होता है, किंतु आदिवासी का वास्तविक अर्थ यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने मूल परंपरा को बिना किसी परिवर्तन के कायम रखा है। आदिवासियों में धार्मिक आडंबर और धार्मिक किताबों का महत्व नहीं होता है। वह प्रकृति और धरती से जुड़े तत्वों जैसे नदी, जल, वन, अग्नि आदि की पूजा करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: भारत के आदिवासी समुदायों में गोंड, मुंडा, खड़िया, बोडो, संथाल, मीणा, कोली आदि आते हैं। अपने देवीपाटन मंडल में प्रमुख आदिवासी जातियां हैं जिन्हें थारू
0: बोलते हैं।
1: भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द या पद का प्रयोग किया गया है। इनके नियंत्रण व प्रशासन से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से 5वें तथा 6ठी अनुसूची में रखा गया है तथा इनकी सूची व पहचान से जुड़ा अनुच्छेद 342 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त 1982 को प्रस्ताव पारित किया और कार्यदल का गठन किया
0: जी।
1: तथा सदस्य देशों को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। ये विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी यानी कि देखिए वो आज भी जंगलों में निवास कर रहे हैं, है ना
2: जी, जी, जी।
0: और थोड़ा सा शिक्षा से भी वंचित हैं क्योंकि वहाँ तक जो शिक्षा की अलख है वो पूरी तरह से जल नहीं पाई है। तो आज भी जो बहुत सारा ये आदिवासी समाज है वो अंधकार में डूबा है। क्यों सत्यम, सच कह रहे हैं ना हम?
2: जी दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है
0: जी। तो आदिवासी का मतलब ये है कि जो जहाँ पे मूल रूप से रह रहा है वो वहीं रह रहा, वहीं वो पसंद कर रहा है, वो उसको हमारे यहाँ का आसपास का वातावरण जल्दी
2: नहीं
0: अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रकृति की गोद में पल रहा है, बड़ा हो रहा है
2: जी, जी।
0: और वो हमारे जो ग्रंथ हैं, गाथाएं हैं उनको नहीं जानता, उनको नहीं उसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के इतना करीब रहता है तो उनके महत्व को समझता है। और हम जो है भूलते जा रहे हैं, है ना, अग्नि, पानी, वायु, जल, ये उनके लिए पूजनीय है, है ना
2: जी।
0: इन्हीं की वो पूजा कर रहा है। और देखिए वहाँ के जो जलाशय हैं जो पूरी तरीके से स्वच्छ होते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, और हम क्या करते हैं अपनी नदियों को प्रदूषित करते चले आ रहे हैं
2: जी,
0: है ना। तो उनसे हमको इंस्पायर होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भी अपने जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उनको साफ और स्वच्छ रखना है। वो हमें बहुत कुछ, आदिवासी होते हुए वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं
2: जी,
0: उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो चल किसकी ओर चलते हैं हम? समर यानी आ गया है नंबर हवा का झोंका का। तो समर यानी हवा का झोंका, जो कि हमारे गणितज्ञ बन रहे हैं, और गणितज्ञ आज हम हो भी करते हैं कि वो आगे चल के गणितज्ञ ही बने। कुछ कहते हैं कि पूत के पांव फालने में नज़र आते हैं, तो हमारे समर जी भी ऐसी कुछ दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम आगे चल के गणितज्ञ ही बनेंगे। तो आज क्या जानकारी है मिस्टर समर?
3: तो जैसे मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें अनंत होती हैं, वैसे एक अनंत होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सॉरी। तो इरेशनल नंबर्स का कोई अंत नहीं होता, वो चलते जाते हैं, चलते जाते
0: लिखते
3: हैं,
0: लिखते रहो हाँ। लिखते रहो, उनका कोई अंत नहीं।
3: और जो सबसे फेमस है वो पाई है, वो सबसे ज़्यादा फेमस जो इरेशनल नंबर है वो पाई है, जिसका कभी अंत नहीं होता और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सियल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाई को 22/7 लिख देते हैं और कहते हैं कि ये तो पी वाई क्यू में हो गया, तो ये इरेशनल कैसे है। लेकिन 22/7 पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर हम 22/7 को कुछ डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो होगा समथिंग 3.1428 के आसपास, लेकिन असली पाई जो होता है वो होता है 3.1415926535 इसके आसपास, और इसके बाद भी डिजिट चलती रहती है इन्फिनाइट तक।
0: जी,
3: तो सबसे पहली बात तो ये डिजिट्स ख़त्म क्यों नहीं होती, और दूसरी बात तो ये पाई है क्या? तो जब हम हमारे बहुत बड़े बहुत पहले पूर्वजों ने सर्कल बनाना सीखा और सीखा कि पहिया कैसे बनेगा, तो परफेक्ट सर्कल के लिए उन्होंने उसके सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकाला, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किया तो वही पाई आ गया। और चूँकि एग्जैक्टली कभी हम गोल सरकमफेरेंस को मेज़र नहीं कर सकते, तो आज तक ऐसे इस टेक्निक से हम नहीं निकाल सकते पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। अब बात है कि निकाला कैसे जाता है फिर आज के युग में, तो आज के युग में पाई के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स की दी हुई गणना इतनी एक्यूरेट होती है कि वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा डिजिट्स निकाल चुके हैं पाई के, और डिजिट्स कभी रिपीट नहीं होते। मतलब उसमें इतने रैंडम डिजिट्स हैं जिसमें आपका बर्थडे, आपका मोबाइल नंबर और सब कुछ है उसमें, इतने सारे नंबर्स हैं उसमें। और 3.1 नासा जो है वो पाई के सिर्फ 9 डिजिट्स का यूज़ करता है
0: जी,
3: ताकि वो आराम से 1 मीटर की जो है एरर को दिखा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाई को मेज़र करने के लिए जो हमारे पहले जो मैथमेटिशियंस की खोज रही वो तो सबसे पहले आर्यभट्ट की रही, जिन्होंने कहा कि पाई इज इक्वल टू 6,832/20,000 के अप्रॉक्सीमेट होता है। उसके बाद भास्कराचार्य की रही, उसके बाद ब्रह्मगुप्त की रही, तो ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखे गए। लेकिन उसके बाद एक कहा जाता है कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन है इटालियन मैथमेटिशियन लेबनीज ने इनफाइनाइट सीरीज दी पाई को लेके, कि उसको जितना सॉल्व करते जाएंगे उतना पाई की एक्यूरेट वैल्यू पहुँचते जाएंगे। लेकिन जब उसके 1 मिलियन डिजिट्स यानी कि 1,10,00,000 डिजिट्स को हम सॉल्व करते हैं, तब हमको कुछ पाई की पॉइंट के बाद 9 एक्यूरेट प्लेसेस तक वैल्यू मिलती है। लेकिन जो इंडियन मैथमेटिशियन थे एक बहुत बड़े रामानुजन, उन्होंने एक सीरीज दी थी पाई के लिए, उसका सिर्फ 1 टर्म सॉल्व करने पे हम इतना नज़दीक पहुंच जाते हैं पाई के कि पूरे धरती का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं सिर्फ 1 मीटर के एरर से। मतलब पूरा धरती नाप लेंगे और सिर्फ 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेट का एरर आएगा उसमें, सिर्फ 1 टर्म सॉल्व करने पे।
0: जी,
3: 2 करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे। तो उनके सिर्फ 10 उनका सिर्फ 9 टर्म सॉल्व करके नासा यूज़ करता है आज, और उसी से सारी जो दुनिया की वैल्यूज़ हैं पाई की वो बिना एग्जैक्ट नापे हर बार निकाली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो है पाई डे, तो पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। इसलिए 14 मार्च को क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पहले मंथ लिखती हैं उसके बाद डेट लिखती हैं, तो 3/14 और ये अप्रॉक्सीमेट पाई होता है 3.14।
0: यही समथिंग जब 1 4 1 ऐसे करके डिजिट जो है बढ़ती चली जाती है
3: और वो इनफाइनाइट तक जाती है, हमको नहीं पता कहाँ तक जाती है। और वो इतनी रैंडम होती है कि उसमें आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, मेरा फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इतनी सारी रैंडम डिजिट्स आती हैं उसमें।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई कि पाई की कोई एक्यूरेट वो नहीं निकाली जा सकती है। तो हमारे साथ है सत्यम जी, टाइम बहुत कम है, सत्यम जी जल्दी से बताइए आज आप क्या जानकारी देने वाले हैं।
4: तो नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हम सभी के साप्ताहिक कार्यक्रम हमटी डमटी विद गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं काकोरी कांड के बारे में।
0: काकोरी कांड अभी एक बच्चे ने सुनाया था काकोरी कांड, और अच्छा ये जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ नया सा लगता है।
4: जी दीदी, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की है।
0: बिल्कुल,
4: इसी दिन लखनऊ के पास स्थित काकोरी स्टेशन के करीब देश के अमर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। पृष्ठभूमि और उद्देश्य, सहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद देश के युवाओं का एक वर्ग सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एलोगेशन के बैनर तले एकजुट हुए इन युवाओं का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजी दास्ता
0: से चंगुल से मुक्त कराना।
4: जी, इस लड़ाई को जारी रखने और हथियार खरीदने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। इसीलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान
0: थे और कौन समर बहुत सारे तो थे इसमें, कई गिरफ्तार हुए थे, अशफाक उल्ला खान थे,
3: पंडित बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आया था इसमें। वो करना ऐसा के चाहते थे कि उनको अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन लूट की और अंग्रेजों से लड़ने का मन बनाया था। इसी में बहुत सारे
0: उनको आतंकवादी करार दे दिया गया था,
3: इसी वजह से उनको आतंकवादी करार दे दिया गया था।
0: तो वही तो अभी मैंने बताया कि पैसे की बहुत कमी थी उस समय, अगर हम कोई लड़ाई लड़ना चाहते तो हमारे पास पूरी तरीके से हथियार नहीं थे और बिना हथियार के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी।
4: जी
0: तो
4: जी।
0: हाँ, इसीलिए उन्होंने जो डकैती, इसको कहना चाहिए, उन्होंने ट्रेन में डकैती डाली, तो उनको डकैत कह दिया गया था, जबकि वो हमारा ही पैसा था। तो फिर भी जो है उनको लूटा भाई, अच्छे काम के लिए लूटा था। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि आतंकवादी हैं, और भी हमारे देश के भी कई नेता थे जिन्होंने आतंकवादी उन्हें कहा था और उनको गिरफ्तार करवाने में मदद की थी
4: जी,
0: और उसके बाद फांसी के फंदे तक पहुंचाने में भी उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ये बात हम उन देशद्रोही उनको हम करार देते हैं, आज हम खुद अपने मंच से कहते हैं कि वो सारे देशद्रोही थे जिन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराया था जो देश के लिए समर्पित थे। क्या कहना चाहेंगे आप?
4: सही,
0: बिल्कुल हाँ। तो चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है और हमारा समय कह रहा है कि हम आपसे विदा ले लें और वादा करें कि हम अगले सप्ताह फिर इसी दिन इसी समय आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए हमारे बच्चों को इजाज़त दीजिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी है और वो सब घर जाना चाहते हैं। तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
4: सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: ये नंबर जोड़

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना 11 स्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने 11 स्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस 11 स्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस 11 स्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना एफएम।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप ही के शो आज है भाई रविवार। और रविवार के दिन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम में आपका टैलेंट, हम और आप एक दूसरे के सामने होते हैं, रूबरू होते हैं। जी हाँ, आपका स्वागत है आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपका दोस्त मनु, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी के फेवरेट आरजे यानी आरजे
1: अदनान। सो यस, आज का डे चूंकि संडे है
0: जी,
1: पर मुझे लगता है अभी आप जस्ट बाहर से आए हैं। और मौसम का मिजाज कैसा लगा संडे को आज आपको?
0: मतलब क्या मतलब, घटा छाई है, हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी बह रही थी,
1: थोड़ी थोड़ी अच्छी खासी लग रही हवा।
0: हाँ, मतलब
1: मुझे लगता है कि इस वक्त अगर कोई घर के अंदर है और निकल सकता अपने छत तक अपने विंडो तक तो जाना चाहिए,
0: जाना चाहिए। हाँ, मतलब ये नज़ारे अब तो बहुत रेयरेस्ट हो गए।
1: करेक्ट, और ये सीजन भी है तो इस सीजन का क्यों ना फायदा उठाया जाए। लेकिन एक फायदा मुझे लगता है और उठाने देना चाहिए सभी को।
0: जी बिल्कुल देना चाहिए।
1: नहीं, आप समझे कि मैं किस फायदे की बात कर रहा हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस फायदे की बात कर रहे हैं।
1: किस फायदे की बात कर रहा हूँ?
0: उस फायदे की बात कर रहे हैं कि आज हमारे बीच भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, और आज है बुक लवर्स डे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब ऐसे लोगों का दिन है जो किताबों से प्रेम करते हैं।
1: बेशक,
0: हमको भी मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है, और हमारे सुनने वालों को भी भाई किताबों से प्रेम होता ही है। एक इंटर में आपने पोम पढ़ी होगी रॉबर्ट साउदे की द स्कॉलर, तो वहाँ पर उसमें कहते हैं कि माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड एंड वेयर फॉर आई दीज कैजुअल आईज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हु माई कन्वर्स डे बाई डे। रॉबर्ट साउदे बैठे हुए हैं और उन्होंने किताबों के बीच बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के बीच, और वो कहते हैं कि मेरी निगाहें जहाँ कहीं भी आकस्मिक रूप से जाती हैं तो मैं उन किताबों को पाता हूँ, ऐसे विद्वान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे।
1: बिल्कुल,
0: और एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, मतलब वे मेरी कभी न धोखा देने वाली मित्र हैं।
1: क्या बात है,
0: मतलब अगर आपने किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है तो इस दुनिया में ज्ञान आपको धोखा नहीं देगा। बाकी हो सकता है जो दोस्त हो वो कहीं ना कहीं, नेवर फेलिंग अगर टर्म इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट साउदे को लगा होगा कि हाँ कुछ जो दोस्त हैं वो शायद दोस्ती नहीं निभा पाए होंगे, तो इन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। एंड मुझे भी लगता है कि बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर इन सॉलिट्यूड, जब हम एकांत में होते हैं तो हमको लगता है किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। क्या लगता है आपको?
1: बेशक, लेकिन आपने एक टर्म अभी इस्तेमाल किया था, ज्ञान। मुझे लगता है कि ज्ञान के अलावा बहुत कुछ है किताबों में।
0: हाँ, बहुत कुछ।
1: सिर्फ ज्ञान कहना तो शायद मुकम्मल बात किताबों के बारे में नहीं होगी, क्योंकि मैंने अक्सर जिन किताबों को मैंने पढ़ा है उससे तो मैंने खुद को ही जाना है। अब सोचने वाली बात आती है कि भाई मैं किसी और की लिखी हुई स्टोरी पढ़ रहा हूँ, किसी और का पर्सपेक्टिव पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं अपने बारे में कैसे जान रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और इंसान की ज़िंदगी में नज़रिए सबके होते हैं, तो एक नए नज़रिए से मुखातिब होना, या कभी कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि जिस चीज़ को लेखक ने बहुत एलैबोरेट करके लिखा है वो आपकी लाइफ में हुआ था, बहुत छोटी सी घटना थी और आपका उस पर ध्यान भी इतना गया ही नहीं था।
0: नहीं गया था।
1: लेकिन अब जब वो स्टोरी को पढ़ रहे हैं या उस कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी स्टोरी याद आ रही है।
0: हाँ, मतलब ह्यूमन वैल्यूज सिखाती हैं किताबें।
1: करेक्ट।
0: वो एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा बाबा भारती वाला, जिनके पास
1: घोड़े वाला,
0: हाँ घोड़े वाला था, मतलब उसकी एक पंक्ति है, मतलब उसने जब घोड़ा हथिया लिया, बाकी सब तो आप जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बाबा भारती ने कहा रुको, तो डाकू खड़ी ने कहा बाबा जी घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा, बाबा ने कहा घोड़ा तुम्हारा हो गया। एक पंक्ति थी कि ये बात किसी से बताना मत कि तुमने अपाहिज बनकर मेरे सामने आए और मैंने तुमको बिठा लिया। तो डाकू ने कहा क्यों, तो एक वाक्य है, क्योंकि उसके बाद कोई किसी गरीब पर या विवश पर विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है हर व्यक्ति समझे कि जैसा उसके साथ हुआ था, मतलब वो जो पंक्ति है वो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, अगर आपने पढ़ी होगी ईदगाह। हामिद जो है वो पूरी बाजार घूमता है, भूखा भी है, लेकिन याद आता है कि मेरी दादी माँ का हाथ जल जाता है जब वो रोटी सेकती है, तो वो चिमटा लेकर लौटता है। मतलब पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आंखों में नमी सी आ जाती है कि व्हाट कैन वी डू फॉर आवर पेरेंट्स। मतलब ये किताबें भी सिखाती हैं हमको, मतलब कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक बिंदु पर आप पहुँचते हैं और आपको लगता है कि हाँ किताबों ने आपको क्या दे दिया, मतलब जीवन का आधार दे दिया। कभी कुछ लगता है तो आपको, मतलब किताबों में हम देखें या अच्छे लेखकों में देखें, शायरों में देखें, तो आप इसको पसंद करते हैं?
1: शुरुआत कोई कहने की बात नहीं है। किताबों में अगर हम कहानियों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम इसलिए पहले आता है क्योंकि कोर्स में, सिलेबस में वो रहती ही रहती हैं, और ईदगाह हो गई या दो बैलों की कथा हो गई,
0: झोरी और मूर्तियाँ,
1: बिल्कुल, और इस तरह की और कई सारी किताबें हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसके अलावा लेकिन अब हम बात करें, जब आप शायद एक टीनेज में आते हैं और आपको इमेजिनेशन बड़ा पसंद आने लगता है, आप अपनी एक दुनिया अलग बना लेते हैं, तो फिर आप शायद जाते हैं नॉवेल्स की तरफ। एक एडवांस लेवल माना जाता है जहाँ पे आपकी ही गढ़ी हुई कहानी होती है, यानी कुछ कुछ सच्चाई होती है लेकिन उसके बाद फिर इमेजिनेशन होता है, गढ़ा जाता है पूरी किताब को। तो उसमें कुछ पुराने लेखकों को तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन नए में बड़े अच्छे नाम हैं। गीत चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा, उनकी लिखी कविताएं, अगर स्पेशली हम कविताओं की बात करें। इसके अलावा अगर आपने आजकल नाम सुना होगा मुसाफिर कैफे,
0: और
1: कुछ और उनकी ऐसी बुक्स हैं जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो वो है दिव्य प्रकाश दुबे जी की। ये महज एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि ये ही है बहुत सारे। बस हाँ, मेरा रबता अभी शुरुआत, चूँकि वापस से मैंने किया है, पारी को शुरू किया है पढ़ने की, तो अभी शुरुआत हुई है, तो फिलहाल मैं इतनों के बारे में तो जानता हूँ। लेकिन उन कहानियों के बीच में, जैसा बताया ना आपने एक लाइन, बाबा भारती का आपने एग्जांपल दिया, ऐसी जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो जो दो कैरेक्टर बात करते हैं उसके बीच की जो बातें होती है, उसमें एक लाइन जिसको आप अंडरलाइन करते हैं या जिसको आप हाईलाइटर लेके बैठते हैं और हाईलाइट करते हैं, वो लाइन आपको अपने लाइफ में बड़ी सटीक बैठती है। ऐसा लगता है बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया,
0: मिल गया,
1: कहाँ आप उलझे हुए थे और कहाँ इसने ज़िंदगी को इतनी इजीली डिफाइन कर दिया, और फिर वो कैरेक्टर फिर वो आगे बढ़ जाता है और बातचीत जारी रहती है, लेकिन आप वहीं कहीं ठहरे रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है यार ये चीज़ तो मेरी लाइफ में था और अभी तक क्या मैं इस नज़रिए को समझ नहीं पाया था। पर देखिए, लेखक ने उस कैरेक्टर के नज़रिए के माध्यम से हमको कैसे अपनी ही प्रॉब्लम को देखने का एक नया नज़रिया दे दिया।
0: और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा दर्द हल ले जाते हैं। वो एक किसी गजल में है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए।
1: वाह।
0: मतलब वो उधर से बयां कर रहे होते हैं, कभी आपने देखिए ऐसी भी होता है कि उन्होंने कुछ बयां किया और हमारे दिल में आता, अच्छा अच्छा यार ये तो मेरे भी साथ हुआ था, अरे वाह, अरे वाह ऐसे हुआ। तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा बल मिलता है, हमको लगता है कि मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मबल मिलता है अगर हम ऐसी किताबों को पढ़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमको लगता है कि भाई जो हमारे श्रोता हैं आज, अगर ये जो मौका है, चूँकि ये हसीन मौका है, बहुत ही खूबसूरत सा मौका है, तो अगर आप सुन रहे हैं हमको और आपको भी किसी किताब की कोई पंक्ति अच्छी लगी हो या कोई कविता जो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू सी गई हो, तो आप चाहें तो आपका दूरभाष क्रमांक वही है 63 93 31 64 29। आप हमको कॉल करके बता भी सकते हैं कि भाई आपको, आपने कौन सी बुक पढ़ी, आपने कौन सी किताब पढ़ी और किस किताब की किस घटना ने आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रेरित किया, कहीं ना कहीं आप जब छोड़ने वाले थे रास्ते को तो आपने एक रास्ता चुना, मतलब और वो किताबों की देन था। मतलब मुझको लगता है कि और आजकल के तो वक्त में भाई यही है वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और वास्तव में कभी कहा भी गया था कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे।
1: क्या बात है।
0: और अदनान सर आपको एक घटना बताता हूँ, मैं पढ़ा मैंने कि प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू वो झंडा फहरा करके और लाल किले से नीचे उतरे तो उन्हीं के साथ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो कहीं क्या हुआ कि थोड़ा सा पैर उनका आगे पीछे हुआ और लड़खड़ाए वो, तो दिनकर जी ने उनको तत्काल संभाल लिया। तो नीरज जी ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ दिनकर जी आपने हमें संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। दिनकर जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। दिनकर ने कहा इस देश की सियासत जब जब लड़खड़ाएगी तब तक साहित्य इसे सहारा देने के लिए मौजूद रहे।
1: वाह क्या बात है, बहुत बड़ा मैसेज इस एक लाइन से मिल गया है।
0: हाँ, मतलब उनकी एक पंक्ति कि मतलब ये सहारा मेरा नहीं है, ये सहारा साहित्य का है और ये सियासत को मिला है। मुझे लगता है कि अगर सियासतदान और साहित्यकार इन दोनों का एक बढ़िया सा संगम हो जाए तो एक बहुत अच्छा भारत हम खड़ा कर सकते हैं।
1: बेशक, और इसीलिए शायद आज भी अटल जी को इतने शिद्दत से याद किया जाता है क्योंकि वो एक राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन कवि भी रहे हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छे कवि रहे हैं,
1: बहुत साहित्य से जुड़ा। अच्छा, एक चीज़ जो है सवाल वो आपसे भी है, जैसे एक तो होता है शौक़ किताब को लेकर के पढ़ने का, अब पढ़ने वालों के पास अक्सर ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, पैसे उस तरह नहीं होते हैं, दोस्तों से यारों से लाइब्रेरीज से लेकर पढ़ते हैं, बेचारों को बार बार अल्टीमेटम भी दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई वो पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी तरह होते हैं, किताबें तो बहुत तमाम ख़रीद लेते हैं और लगा देते हैं ढेर, लगता है कि छोटी सी लाइब्रेरी सेट कर दी है, लेकिन पूछिए कि भाई कौन कौन सी किताब है तो ये भी बता पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो क्या लगता है कि ये रिलेवेंट बात है कि नहीं?
0: नहीं, बिल्कुल है। मतलब जितनी शौक से हम लोग किताबों को पढ़ते हैं, मतलब खरीदते समय एक अजीब सा चाव होता है, लेकिन हमको लगता है कि जब हम लेकर के आते हैं तो वो शुरुआत में आपने कभी अगर हाई स्कूल की परीक्षा के बाद जब आपने 11th की परीक्षा शुरू की होगी तो क्या लगा होगा, आपकी बार नंबर कम आया, आपकी बार इंटर में चीज देंगे, टाइम टेबल बनता था इतने से इतने में तक ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, दो तीन दिन तक चलता था, उसके बाद बैक टू पवेलियन।
1: करेक्ट।
0: मतलब ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि लाओ ऐसा करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप
1: क्या होता है?
0: आपने टाइगर वुड्स का नाम सुना होगा, आप गोल कैसे कर लेते हैं इतने ज्यादा, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा मैं होल को देखता हूँ और गेंद को देखता हूँ, फिर गेंद को देखता हूँ, होल को देखता हूँ, होल के बाद फिर गेंद को देखता हूँ, और तब तक देखता रहता हूँ जब तक मेरे दिमाग में ये मूवी नहीं बन जाती कि ये गेंद होल में जा रही है, और जब मूवी बन जाती है तब मैं गेंद को हिट करता हूँ। तो मतलब उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो पहले उसको अपनी कल्पनाओं में पूरा कर लीजिए। अगर आप अपनी कल्पनाओं में उस काम को पूरा कर लेंगे तो फिर वो चीज़ें संभव हो पाएंगी आपके लिए।
1: बेशक, सही बात है। तो मतलब वैसे संभव तो काफ़ी कुछ आज होने वाला है, पता है कैसे?
0: कैसे?
1: क्योंकि हम तो वैसे बुक्स पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो महज किताबें पढ़ते नहीं बल्कि किताब लिख चुके हैं, और सोचिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इतनी बड़ी शख्सियत जो खुद एक किताब लिख चुके हैं, और इसके अलावा भाई ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो आज के ही छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आज की जनरेशन जो बहुत छोटी सी प्यारी सी है आखिर इनका बुक से क्या लगाव है। लेकिन मुझे लगता है क्यों ना एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लिया जाए।
0: जी हाँ, संगीत में अंतराल के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: बिल्कुल, और ये बातचीत जारी रहेगी, और फिलहाल एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको और भी थोड़ी सी एनर्जी देने के लिए, उसके बाद हमारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन कैंडिडेट्स हैं जो मौजूद हैं 89.6 FM के स्टूडियो में।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। और जी हमारे साथ इस प्यारे से मौके पर कौन जुड़ चुके हैं जी?
4: अभिषेक, चूंकि हमने इनवाइट किया था कॉल करने के लिए, तो हमारे साथ में माय अगली कॉलर सविता शास्त्री जी जुड़ चुकी हैं गोंडा से ही,
3: गोरखपुर से।
4: आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर किताबों के बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ओपन माइक में।
5: जी नमस्कार सर।
4: नमस्कार, कैसी हैं आप?
5: मैं तो अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आज मैंने आपका कार्यक्रम सुना
4: जी।
5: मुझे बहुत ही अच्छा लगा, साहित्य के ऊपर है, प्रेमचंद जी के ऊपर है
4: जी।
5: तो मेरी भी इच्छा हुई कि कुछ मैं अपना विचार आप लोगों से साझा करूं
4: जी, प्लीज।
5: तो उनकी कहानियाँ मैंने बहुत सारी पढ़ी है।
4: हाँ जी।
5: तो उसमें से जो एक बूढ़ी काकी है, हमारे बीए में था
4: जी जी,
5: तो उस कहानी को पढ़ के पता नहीं क्यों मेरे मतलब अंतरात्मा तक वो कहानी झिंझकोर गई थी बहुत ज्यादा। तो उस कहानी को मैं साझा करना चाहूंगी, उनके विचार
4: जी।
5: उसमें किरदार था रूपा जो थी
4: जी।
5: तो जैसे आज के जमाने में हम लोग देखते हैं ना कि जो नई पीढ़ी है अपने उत्सव में, अपने उमंग में इतनी मदमस्त रहती है कि जो घर के बड़े बूढ़े हैं उपेक्षित सा हो जाते हैं। जैसे अगर घर में कुछ

0: है बच्चों को। तो वो मेरे को ये चीज अच्छा लगा कि जब रूपा जो कहानी में दिया है कि रूपा जो रहती है उनके घर में फंक्शन रहता है, त्योहार रहता है, लोगों को खाने पे बुलाया जाता है, लेकिन उसी घर में एक बूढ़ी काकी रहती है जो चुपचाप पड़ी रहती है और उसका मेहमान की खातिरदारी में वो इतना लगी रहती है कि घर के कोने में कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई किरदार ऐसा बैठा हुआ है जो कब से वो बाढ़ जो रहा है खाने के लिए। लेकिन सारे मेहमान जब खाना खाकर चले जाते हैं और वो जब लास्ट में उनके घर का जो पोता कहने से बच्चा जो रहता है वो जाता है तो जो जूठी पतले रहती है जब सब खा के चले जाते हैं समेटा रहता है तो वो बूढ़ी काकी को इतनी भूख लगती है कि वो जा करके चुपचाप ना शिकायत करती है ना कुछ बोलती है, चुपचाप वो भीड़ में जा करके वो जूठे पतलों से बिन बिनकर खाना खाने लगती है। उनका पोता देखता है इस चीज को। फिर बाद में जब रूपा आती है देखती है तो उसके ध्यान से देखती है कि उन्हें ना कोई शिकायत है ना कोई शिकवा है बूढ़ी काकी को, वो अपना चुपचाप मगन होके रस ले लेके खा रही है खाना को। और उसे आत्मग्लानी बहुत ज्यादा होती है और मन उसका दूसरी तरफ मुड़ता है निकल जाता है और वो उसकी अंतरात्मा से धिक्कारती है कि जहाँ मेरे घर में इतने लोगों ने खाना खाया वही हमारे घर का बूढ़ा सदस्य एक उपेक्षित सा पड़ा रहा। और उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरते हैं, पश्चाताप करती है और वो जा करके आदर से उन्हें उठा कर लाती है और खाना परोस करके उनको देती है और उनके चेहरे के भाव को देखती है, ना उसे कोई शिकायत रहती है ना कुछ, अब बस खुशी मन से उसको खाया जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कहानियां होती हैं जो आज के किरदार में इतनी परफेक्ट है कि हमारी जो नई जनरेशन जो भटक गई है उनको एक दृष्टिकोण देने की बहुत ही जरूरत है, एक संवेदना की और एक घर पारिवारिक प्रेम की। ये कहानी पता नहीं क्यों मेरे मन को बहुत ज्यादा कर गई थी। और दूसरा जो मैंने ओशो जी का पढ़ा
1: जी,
0: तो उसने जो साधना की परिभाषा बतलाई है तो किसी भी अपने अच्छे काम को इतना डूब कर करो, इतना डूब कर करो कि तुम्हें आसपास कोई चीज का ध्यान न रहे, उसमें इतना खो जाओ। जैसे एक नृत्यांगना रहती है, जब वो नृत्य करती है तो बिल्कुल आसपास उसका ध्यान नहीं जाता, उसमें डूब सी जाती है, यही असली साधना होती है। ये कुछ कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छा विचार आपने प्रकट किया, ओशो जी के बारे में हो या प्रेमचंद साहब की ये काकी के बारे में हो, बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने पॉइंट्स रखे और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है।
2: हाँ, तो बहुत आवश्यक है और आज के लिए
0: रिलेवेंट को सुनने पहुंचाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आज मैं प्रोग्राम सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इस चीज को साझा किया।
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत
2: बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद आपको।
1: सुबह ये हमारे साथ सविता शास्त्री जी थी, गोरखपुर से सुन रही थी। वैसे एक बात है कि हम ऐसा ये डाइट नहीं कह सकते शायद कि जनरेशन भटक गई है, गाइड करने वाले हम ही हैं। तो हम अपने भी एक बार किरदार को, रोल को देखें कि शायद अगर आज हम अपने छोटी बहन को टोकते हैं तो हम खुद भी कहीं मोबाइल में बिजी होते हैं।
2: सही बात।
1: दूसरे टाइम हम खुद ही टोके जाते हैं और बड़ा खिसियाहट सी होती है कि हाँ ये बात तो सच है। तो प्रयास तो हमको पहले करना होगा अपने ही अंदर ला करके और उसके बाद बच्चों पे भी उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ शायद करके ही, जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सलूशन जस्ट बात से ही निकल आता है। तो बहुत आसान होता है अगर आप हर चीज़ को बहुत इजीली करते हैं। खैर, वक्त कम है, कैंडिडेट हमारे पास ज़्यादा हैं, सो एक प्यारी सी आवाज़ क्यों ना आपको सुना दे आरजे मनु। आप बहुत देर से मिस कर रहे थे, आप बात ही बात कर रहे थे और आपको भी गाने पसंद है, मुझे भी। तो हमारे बीच में आपको पता है ना कौन है?
2: हाँ, वही है
1: हम सब की प्यारी शानवी है
2: जी।
1: सो शानवी, आपका सबसे पहले तो वेलकम करते हैं।
3: थैंक यू सर।
1: थैंक यू सो मच। क्या सुनाने वाली हैं शानवी आज?
3: आज मैं सुनाऊंगी, चूंकि 15 अगस्त आ रहा है और सबके स्कूल में बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां हो रही होंगी, तो मेरे स्कूल में भी हो रही है। और अच्छा। मैंने आज लाई हूँ, मतलब एक तरह से कहे तो इंडिपेंडेंस डे का सबसे इमोशनल सॉन्ग।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: मतलब स्कूल में ये जो है वो वंदे मातरम वाले पर कार्यक्रम कर रही है।
3: आपको कैसे पता?
2: कहा, देखो हम जानकारी रखते हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट वहाँ पर टीचर हैं, बता देते। शानवी ने कहा है ना वंदे मातरम में, आप देखिए, मैं जानता हूँ।
3: मैं ढोलक बजा रही हूँ, मेरे दो तीन प्रोग्राम में मतलब मुझे लिया गया है।
1: तो चलिए सुनते हैं फिर आपने जो गीत आज प्रिपेयर किया है सुनाने के लिए।

को, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में,

थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: सर आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है।
2: इमोशन के लिए जाना जाता है, वो आज आपकी सिंगिंग में भी काफी नजर आया। वाओ क्या बात है।
1: मतलब जो भी गीत लता जी ने गाया था तो जवाहरलाल नेहरू फपक फपक के जो पड़े थे, वही 1962 का युद्ध हुआ था,
2: बेशक
1: भारत और चाइना के बीच।
3: सैनिकों ने सुना होगा अगर, तो दिली दिल तुमको धन्यवाद दे रहा हूँ।
2: हाँ, बेशक,
3: क्योंकि देश के लिए वो जान देते हैं।
2: या हर वो शख्स जिसके अंदर एक सैनिक जिंदा है, हर वो शख्स दे रहा है।
0: अच्छा, हम लोग को जब ये इन सब गानों की प्रैक्टिस कराई जाती है तो स्पेशली जो ये वाला सॉन्ग है, हम लोग को कहा जाता है वो फील करो जो कारगिल वॉर हुई थी और इतनी सारी वॉर होती है, तो उसमें फील करो कि कितने लोगों के फैमिली मेंबर मतलब चले गए, वो अब उनसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे। ये इमोशन को तुम लोग अपने अंदर लेके करो। और बस एक बात ये है कि एक दिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और यही वाला सॉन्ग था, तो हम लोग को मैम ने यही चीज बताई थी कि तुम लोग को यही चीजें सोच के गाना है। अब हम लोग उस चीज में इतना ज्यादा डूब गए, इतना खो गए कि हम सबके आंख से, यानी कि मैम के खुद के आंख से भी आंसू आने लगे थे। हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि इस समय इतने वॉर हुए हैं, और कारगिल ले लो, चाहे वो वाला वॉर ले लो जो अप्रैल में हुआ था। तो मतलब ये सब एक तरह से हम लोग को बहुत थैंकफुल होना चाहिए उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो हमें सुलाने के लिए अपनी रातों की नींद गवा देते हैं।
3: यही बात शलिता शास्त्री जी ने भी कही थी,
2: बिल्कुल,
3: कि बेटा पूरे जुनून के साथ अपनी अपने टारगेट को अचीव, और वो पूरे जुनून के साथ अपनी जान हथेली पे रख के हमारे लिए कष्ट सहते हैं बेचारे।
2: सही बात है। और बहुत ही खूबसूरत आपने सिंगिंग के एंड आपस से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। एंड इसी के साथ अब हम वापस से रुख करते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ, क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज़ अभी हमारा बाकी रहेगा लास्ट के लिए। उससे पहले हमारे साथ में मिस्टर अंजनी श्रीवास्तव सर मौजूद हैं, जो कि एक राइटर भी हैं और उनकी किताब भी है बूंद जो बन गई मोती। चलिए सबसे पहले तो आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: धन्यवाद, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ।
2: और प्राउड इसलिए फील हो रहा है कि हमारे ही गोंडा के रहने वाले हैं, इस रेडियो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक ही रहते हैं।

0: आते हैं और अक्सर आप वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन आज बुलाने का ख़ास इसलिए मौका हुआ क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भाई रीडर्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक राइटर आखिर क्या सोचते हैं, और क्या राइटर भी किसी दूसरे की बुक को रीडर की तरह पढ़ते हैं या राइटर की तरह? कई ऐसे सवाल हैं जो शायद ऐसे जहन में हर किसी के आते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे मुबारकबाद पहले हम आपको देंगे, आज बुक लवर्स है डे है, और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे आपने जो बुक लिखी है उसके बारे में आप संक्षिप्त सा परिचय बताएं।
1: जी, चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था
0: जी
1: और बैंक से रिटायर हुआ, तो इस दौरान हमें बहुत से लोगों से मिलना हुआ और उनके बहुत तजुर्बात मेरे पास थे
0: जी।
1: और कोई भी बुक में अगर स्टोरी लिखी जाती है तो वो स्टोरी होती है, लेकिन अगर अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग समस्याएँ का कुछ जो समाधान मेरे समझ में आया उन लोगों से मिलने के बाद, वो हमने इसमें ब्रीफ किया। यानी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हमने कोशिश की कि जो बच्चा पढ़े तो उसको भी कुछ मिल जाए और बूढ़ा पढ़े तो उसको भी कुछ मिल जाए। और ख़ुद अपनी स्टडी में हमको शौक है, इसलिए हमको भी कुछ नई चीज़ें मिले, और इस तरह से हम सब का जीवन जो हमारे आसपास है या अपना खुद का जो जीवन का लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त करें। तो ये मेरा टारगेट रहा।
0: बूंद जो बन गई मोती, इसमें बूंद कहाँ थी, इस बात बूंद कहाँ आप?
1: एक हमारी सिस्टर थी
0: जी,
1: तो वो बहुत परोपकारी टाइप की थी
0: जी,
1: वो नहीं रह गई हम, उनके अंदर बहुत दया और उपकार की भावना थी
0: जी।
1: तो उनके जो जीवन का कार्यकाल था उस वो सबसे ज़्यादा उसने मुझे प्रभावित किया, और उनको इसमें मैंने अपना वो किया है, उसकी उनको किया
0: समर्पित किया है।
1: तो उनकी वजह से, उनकी प्रेरणाओं को देख, उनके इंसान, उनके बड़े दिल को देख के हमने इस बुक को ये लिखा कि बूंद जो एक छोटी सी हस्ती होती है इंसान की
0: जी,
1: और वो मोती बन गई जिसने आज हमको इतनी चीज़ें दे दी, इतनी अच्छी बातें सिखा दी कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: देखिए, उनका नाम डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव था।
0: डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव,
1: हाँ, और कोऑपरेटिव बैंक में वो सर्विस करती थी।
0: अरे वाह
1: जी,
0: देखिए किस तरह से कहाँ से प्रेरणा आपको मिलती है, और पूरा किताब का एक उनवान कोई शख्स हो सकता है, उसकी शख्सियत हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है।
2: बहुत बड़ी बात है। वास्तव में पानी की एक बूंद को मोती बना देना, ये केवल साहित्यकार कर भी सकता है। मुझे लगता है कि साहित्यकार के अलावा और ये जादू किसी के पास है नहीं। तो इस कविता के कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो हमें कुछ सिखा जाए, आपसे अपेक्षा की जाती है कि कुछ?
1: बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी बुरे वक्त पे अगर आप संतुलित रहते हैं और अपने शब्दों पर नियंत्रण करते हैं, उसका उनके जीवन का एक उदाहरण हम आपको देते हैं
2: जी।
1: और उसमें मेरी चूँकि माँ का भी योगदान था, वो उनकी ही बेटी थी, इसलिए उनके हुआ क्या कि उनकी शादी एक रिजेक्ट हो गई, परीक्षा वापस आ गई।
0: अच्छा।
1: और वो बहुत दुख का दिन था, चारों तरफ बात फैल गई थी कि लड़की सब सांवली है। तो मेरी माँ ने जो शब्द कहे वो मुझे याद है, वो तो दुखी थी भाई, वो लड़की थी। माँ ने जो शब्द ससुराल वालों से उनके कहे, वो हमारे लिए बहुत अपीलिंग हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा ये लक्ष्य था कि आपका बड़ा लड़का है और मेरी लड़की बहुत गुणी है, अगर ये आपके घर में जाएगी तो आपका घर समझ जाएगा, आपके 6 बच्चे हैं और घर में एका बना के चलेगी। तो मुझे इस बात की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन हमारी किस्मत में ये बला नहीं था, सो मुझे आपका सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला। ये कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी, और जो लोग परीक्षा वापस करने आए थे उनको बहुत स्वागत से और बहुत दूर बाहर गेट तक भेजने के लिए बहुत इज्जत से। ये जब वहाँ मैसेज गया लड़के के फादर के पास, तो लड़के ने के फादर ने कहा, उनका बड़काऊ घर का नाम था जीजा जी का, उन्होंने कहा बड़काऊ, ये शादी करोगे कैसे नहीं तुम, इतने अच्छे खानदान की लड़की और इतने अच्छे लोग जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और इतना बड़ा उनके साथ घटना हो गई, तो वो उस खानदान में जो कश्मीरी मेरा बड़ा बेटा शादी करेगा और वो बहू आएगी, भले ही वो सांवली है लेकिन वो हमारे घर को एक करके रखेगी। उनका निर्णय सही था, वो अनुभवी थे, और अंत में वो शादी हुई।
2: क्या बात।
1: लड़के लड़का भी मतलब पिता भक्त था, और उसने पिता से कहा कि आप जैसा ठीक समझे, तो वो शादी हुई। तो कहने का मतलब बुरे वक्त में आप अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये महत्वपूर्ण
2: क्या बात,
1: इसका दृष्टांत है।
2: क्या बात,
0: प्यार से कितने आसानी से आपने एक छोटी सी घटना से बता दिया। वाओ, मतलब ये हम सब की लाइफ का है, और शायद अभी हम निकले और पीछे से कोई 3-4 बार हॉर्न ब्लो करे तो हम शायद उल्टा सीधा भी बोल देंगे पकड़ करके।
2: मतलब कोई हल्का सा कभी स्क्रैच आ जाता है तो लगता है जीवन की सारी कमाई इनकी इसी में खर्च हो गई,
1: इसी पे कितने अपराध हो जाते हैं।
0: लेकिन कितनी बढ़िया बात, मतलब आपने कह दी। कहना तो आसान हमको शायद सुनने में तो लगा, लेकिन ये तो आपने जब उस वक्त रियलाइज किया होगा और सच में घटना घटित हुई होगी। ये कहना आसान है कि सब्र कर लो, लेकिन सच में जो करता है वो बड़ी बात होती है। हमने हमेशा कहा ना, गुस्सा दिखाना आसान है, सह जाए तब तो आप बात है, तब तो आपके अंदर है वो क्वालिटी। क्योंकि जो हर शख्स कर रहा है वो आप भी कर रहे हो, तो आप हर में गिने जाओगे,
2: गिने जाएंगे।
0: और जो हर कोई नहीं कर पाता
1: है, जो व्यक्तित्व है वो इतना सुंदर है, पहली बार जब हम आए थे तो उससे और आज तक बिल्कुल सेम। और यहाँ पर आने वाला आदमी एक बार इनको याद करता है कि भाई ये
2: बहुत बहुत
0: ये आपका बड़प्पन है और आपकी जरा नवाजी है,
1: आपने इस एफएम को इतना अच्छे से वो किया है, मैनेज किया है, हम लोग आपके आभारी हैं।
0: अरे
2: नहीं नहीं, मतलब आज के दिन तो हम लोग आभारी हैं भाई, और हमेशा
1: शब्दों में भी बड़ा नियंत्रण है।
2: हाँ,
1: शब्दों में भी बड़ा।
0: थैंक यू।
2: और आपके पास तो भंडार है
0: बेशक।
2: और मतलब बूंद जो बन गई मोती, ऐसा नहीं है कि कुछ सिखाती है, ये कुछ ऐसे भी है कि थोड़ा सा हंसाती भी है।
0: अरे थोड़ा सा हंसाती है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती है।
1: ये एक छोटी लड़की अभी बैठी है।
0: हाँ बेशक। सो चलिए, हमारा वक्त भी हो चला है और अपने लास्ट कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। और आइए इस बच्ची से खुद ही इनका नाम पूछते हैं, क्योंकि इनका जितना बोलना होता है मुझे इनकी छोटी वाली बोली वाली भाषा बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे आपका नाम क्या है, आप बताइए। मीशा नाम है।
3: निमिषा
0: नाम है। देखिए हर बार ये बताती हैं और हर बार इनको ये लगता है कि सर को नाम याद नहीं।
1: इन्होंने निमिषा का अर्थ भी बताया था, हमें याद पड़ रहा है।
0: बेशक। सो निमिषा, क्या लाई बच्चे आज आप?
3: तेरा हिमालय।
0: अरे वाह, क्या बात है। आज तो निमिषा भी भाई 15 अगस्त की पहले ही प्रिपरेशन करके आ गई हैं। तो चलिए चलते हैं निमिषा के तेरे हिमालय की तरफ। हम सब तैयार हैं आपको सुनने के लिए।

0: क्या बात है भाई, माँ से माटी, माँ से माथा और माँ से हम भी,
1: शाबाश,
0: तीन माह हो गया।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बड़े ही सही जगह पे हम आकर के पहुँचे हैं, जहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं। और देश के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो पढ़ाई होती है, वो तरक्की एजुकेशन से आती है, शिक्षा से आती है, और शुरुआत भी शिक्षा से है और सब कुछ हासिल भी शिक्षा से ही है।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो आज स्पेशली चूँकि बुक लवर्स डे भी है, उन सभी को ख़ास मैं और आरजे मानवेंद्र और हमारी पूरी टीम की तरफ से हर उस एक शख्स को मुबारकबाद जो किताबों में दिलचस्पी लेते हैं, जो किताबों को पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं, और उनको दिल से सलाम जो किताबों को लिखते हैं।
0: क्या बात है, हाँ भाई लिखते हैं, और वो जो बूंद को मोती बना देते हैं उन, तो उनके तो बाकमाल।
2: बेशक, सही बात है। सो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे श्रोताओं को ये आज संडे स्पेशल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।
0: जी,
2: क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल सही है।
2: सो चलिए, आज का कैसा शो लगा आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, और फिलहाल अब आपसे हम लोग विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः मिलेंगे आपसे ठीक 1 बजे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
2: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
8: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हां जी, हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपके संडे के आफ्टरनून वाला स्पेशल शो इंटर टॉप 20 में आप सभी का स्वागत करती है आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आयशा नतीजा मौजूद हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाला स्टूडियो में। एंड ऑफ कोर्स आज स्टूडियो का मौसम होने वाला है बहुत सुहाना। रीजन बताऊं? चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि भैया आज हमारे स्टूडियो में ना रोना धोना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमने इसको कैंसिल कर रखा है। क्यों कैंसिल कर रखा है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में पास्ट लाइफ में बहुत जिया करते हैं। क्यों जीते भैया? जिंदगी में पास्ट में जीने से कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है प्रेजेंट में मिलता है बाबूजान। और इसीलिए हमने सोचा क्यों ना जिनका हो चुका है कुछ प्रॉब्लम वाला इशू, उनके लिए आज को धमाकेदार प्लेलिस्ट ले लिया जाए। और ऑफ कोर्स जैसा कि मैं खुद सुनती रहती हूं गाने, हाई बीट हाई एनर्जेटिक, और इस आफ्टरनून वाली प्लेलिस्ट में ऑफ कोर्स मेरे पास हाई बीट सॉन्ग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, नक्कुन निल्ले कभी नहीं। तो भैया आज जो हम आपके लिए गाने लेकर आए हैं ना, वो आपकी सारी टेंशन को छू मंतर करने को लेकर आए हैं। स्पेशली अगर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रखा है और आप सोच रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा काहे होता है भैया, तो आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ वक्त के लिए ये चुटकी बजाते हुए गायब ज़रूर कर सकती हूँ। तो बने रहिएगा आज मेरे साथ, क्योंकि आपके लिए प्रेजेंट है एक ऐसी प्लेलिस्ट जो आपकी सारी टेंशन इवन आपका ब्रेकअप तक भुलवा दे सकती है। जी हाँ, लेकिन नहीं होता तो जुड़ के देख लो। फिलहाल आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह है गोना शहर की धड़कन पर। वक्त है हमारे पहले गाने की तरफ चलने का, और जस्ट बिकॉज आपने पहले गाने पे ही एंट्री की है, तो जो पहले गाने पर आने के बाद सोचते हैं कि चलो घर चलते हैं मजा नहीं आने वाला है, ये गाना स्पेशली उनके लिए है, बिकॉज धत्ते रे की मुझे घर नहीं जाना। जी हाँ, ये गाना आपने बहुत पहले सुना था और कल रात में एंजॉय कर रही थी, और एंजॉय करते करते याद आया कि भैया अकेले का ही एंजॉय करना है, हमारे लिस्नर भी तो बैठे हुए हैं ना, उनको भी थोड़ा सा सुनाया जाए ना, तो क्यों ना आपको ये साथ एंजॉय करते हैं, सारी टेंशन को छू मंतर करते हैं, आज का संडे और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हुए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 20 तेरी की मुझे घर नहीं जाना। ऑफ कोर्स मुझे भी घर नहीं जाना पिछले 3 घंटों के लिए, यानी कि आने वाले 3 घंटों के लिए, और आपको भी कहीं नहीं जाना है आने वाले 3 घंटों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आप सुनने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 20 इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट का पहला गाना अपनी आर्जुनती के साथ। एंजॉय करते रहिए, अपनी रेटिंग देना मत भूलिएगा प्लीज, और इसके अलावा अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दीजिए, ताकि मैं भी तो देखूं मेरे साथ इस वक्त मौजूद कौन कौन है और कहाँ कहाँ से है। इवन आप अपना शहर भी बता दीजिएगा कि आप मुझे सुन किस एरिया से रहे, किस क्षेत्र से रहे, किस राज्य से, किस जिले से, एमपी से, गोंडा से, लखनऊ से, बरेली से, या फिर आप सुन रहे हैं मुझे बैंगलोर या जयपुर या फिर इंडिया के बाहर से, कहीं से भी हो अपनी अटेंडेंस के साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमें इन्जॉय कर रहे हैं और कौन सा आपका पसंदीदा गाना आज की प्लेलिस्ट में होने वाला है। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 20.

0: हाँ जी, तो भैया आपको घर बिल्कुल नहीं जाना है, जैसा कि मैंने अनाउंस कर दिया है कि आपको घर नहीं जाना है। और स्पेशली पता है गाना मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर इमरान खान है और विशाल शेखर का म्यूजिक है, ऑफकोर्स सनम पुरी, अदिति सिंह शर्मा की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया गोरी तेरे प्यार में फिल्म से। फिलहाल हम आपको बता दें, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद आरजी उन्नति और ये है आपका अपना रेडियो 11.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन। और महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं, भैया नमस्कार मैम जी, नमस्कार टू यू, कैसे हैं आप? और साथ ही लिखा है, हम अभी अभी सूरत से सुन रहे हैं, हमारा पसंदीदा गाना है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, तुमने पढ़ी तो है यार लेकिन भूल जाती हो मैं किताबों के अंदर लिखा क्या होता है। हाँ, चेहरे पढ़ने की आदत आ चुकी है लेकिन अभी भी थोड़े से कच्चे खिलाड़ी हैं हम, फिलहाल आप नहीं है मुझे पता है। और क्योंकि भैया आज की प्लेलिस्ट थोड़ी सी हटकर थोड़ी सी झटके वाली है, बिकॉज बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गए रोमांटिक गाने, और अब तक मैं बहुत सारे रोमांटिक गाने आपके लिए प्ले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं कोई भी रोमांटिक सॉन्ग प्ले नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको सिर्फ हाई बीट, हाई एनर्जेटिक और वो गाने सुनाऊंगी जिससे आपकी बॉडी में 440 वोल्ट का झटका जरूर लगे और आप सोचें कि यार टेंशन है ही नहीं कुछ, टेंशन वेंशन किस चिड़िया का नाम है, टेंशन छोड़ दो, वेंशन भी छोड़ दो, पेंशन मत छोड़ना यार, पेंशन पकड़ के रखना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बट क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन के बीच में ना, हमेशा हम जब प्लेलिस्ट ढूंढते हैं वही रोमांटिक गाने वापस आ जाते हैं, तो कभी कभार हमारा दिमाग लगता है कि भैया बस करो, रोमांटिक गाने भी नहीं सुनने हैं। स्पेशली अगर आपका भी अभी ब्रेकअप हुआ है तो रोमांटिक गाने तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं सर्च कर रही थी कि ब्रेकअप पे सॉन्ग क्या क्या हो सकते हैं, बॉलीवुड ने मुझे इतनी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट ली ली, लेकिन उस प्लेलिस्ट में ना एक चीज़ मिसिंग थी। मिसिंग ये थी कि मुझे जिस बंदे का ब्रेकअप हुआ है या फिर जिस बंदे को जो उदास है मुझे उसको हंसाना है, और वो मुझे और रुलाने वाली प्लेलिस्ट दे रहा है कि वो अलग गाना बजा रहे हैं, कभी सैड सॉन्ग बजा रहे हैं, कभी कह रहे हैं इश्क ना करना, ये ना करना, वो क्यों नहीं करना, करना है ज़रूर करना है, लेकिन अभी नहीं, रुक के करना है, थोड़ा सा संभलिए, रुकिए, ठहरिए, थमिए, आंसू पोछिए। और अगर आपके पास आंसू पोछने का कोई सवाल ना तो कह दो रुमाल हम दे, हालांकि हम लेकर नहीं आते हैं, वो बात अलग है, बट ऑफकोर्स आपके आंसू पोछने का काम मेरा ही है। और मुझे नहीं लगता कि जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो मौजूद हो इस वक्त, वो चाहे उसकी फैमिली इशूज़ हों, उसके खुद के इशूज़ हों, फ्रेंडशिप इशूज़ हों, रिलेशनशिप इशूज़ हों, उसको ऐसे सैड सॉन्ग सुनने चाहिए, क्योंकि भैया सैड सॉन्ग सुनने से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जो कि मुझे नहीं पसंद है। मुझे क्या, आपकी बॉडी को खुद भी नहीं पसंद है, तभी आपकी नींद उड़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है पंख लगा करके और आपको पता भी नहीं चलता है, उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं। तो बॉलीवुड से मेरी बड़ी शिकायत है, जब भी कोई ब्रेकअप का सॉन्ग बनाए ना तो इस तरह से ना बनाए, सैड सॉन्ग ना बनाए, एकदम हाई एनर्जेटिक सॉन्ग बनाए। और इसीलिए मैंने सोचा जब बॉलीवुड ये जिम्मा नहीं उठा रहा तो क्यों ना मैं ही उठा लूं और आपको कुछ ऐसे गाने सुनाऊं जिसमें आपके भी होश उड़ जाए या फिर होश वापस आ जाए। रोना धोना खत्म करते हैं, कोई रोमांटिक गाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप, आपका मन, आपका दिल, और ऑफ कोर्स हम एंजॉय करेंगे सुपर सुपर हिट वाली प्लेलिस्ट में बहुत ही जबरदस्त हाई एनर्जेटिक सॉन्ग, बिल्कुल मेरी तरह स्पीड वाले, क्योंकि हमारे के जी अब भी आते हैं और हमसे यही कहते हैं कि स्पीड वाली उन्नति जी, जी हाँ स्पीड वाले ही सही, और गाने भी आज आपको स्पीड वाले ही मिलने वाले हैं। तो डोंट वरी, आज आपको कोई भी ऐसा गाना नहीं मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा भी किसी और की याद आए, किसी सिचुएशन की याद आए, या फिर आप सोचे कि यार ये तो बिल्कुल मेरे ही ऊपर फिट बैठ रहा है, ऐसा कोई गाना बजाऊंगी ही नहीं, सारे के सारे जबरदस्त सॉन्ग बजने वाले हैं। तो इंतजार मत कीजिए, आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग थोड़ा सा, क्योंकि हमारे 90s के कुछ बेहद ही पसंदीदा लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें कि उन 90 के दशक के बहुत सारे गाने पसंद हैं, और 90 के दशक में जब मैं गाना सुन रही थी तो मुझे एक मिला था एक दिल रुबा है, और उसका जस्ट अपोजिट मिला था मुझे एक बेवफा है। तुमने सोचा क्यों ना आपको यही सुना दिया जाए, क्योंकि सिचुएशंस कभी कभार बड़ी बेवफा हो जाती है, वक्त बड़ा बेवफा हो जाता है, और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है जब भी मैं इस तरह के गाने लेकर आती हूँ ना, वक्त सबसे पहले मुझे धोखा देता है। तो इसको तो मैं अपने डेडिकेट करने वाली हूँ संडे के स्पेशल 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। बट आप इसको इंजॉय करते हुए बताइएगा कि इस गाने में आपको सोनू निगम की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर एक दिल रुबा है में जो उदित नारायण जी ने गाया वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम सॉन्ग, डिफरेंट लिरिक्स, सेम स्टाइल, बट डिफरेंट सिंगर्स, उदित नारायण, सोनू निगम, और इसके अलावा भी एक और सिंगर है जिन्होंने सेम म्यूजिक पे गाना गाया है। अब एक फिल्म के अंदर 3 वर्जन है इस गाने की, और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सेकंड वाला, जो फिल्म आया गया है अक्षय कुमार के ऊपर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं बेवफा फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में एक बेवफा है। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 11.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: हां जी, और ये वो गाना था जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बजाया था 90s के उन स्टार्स के लिए, उन लिसनर्स के लिए जिन्हें 19 या फिर कहें तो 1990 या फिर 90 दशक के गाने बहुत ज्यादा पसंद है, और सोनू निगम ने ऐसे जबरदस्त गाने ऑफकोर्स दिए हुए हैं। तो इकलौता मैंने सैड सॉन्ग आपके लिए प्ले कर दिया, बट इसके अलावा मैं कोई भी गाना प्ले नहीं करने वाली हूँ और हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले महेंद्र जी लिख रहे हैं कि मुझे भी सैड सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैम जी, गुड चॉइस, बहुत बढ़िया। सैड सॉन्ग पसंद होने भी नहीं चाहिए, मतलब आप पसंद कर सकते हो बट तब नहीं जब आप उदास हो। जब आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत केमिकल लोचा होता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। केमिकल सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे ही वो आपके शरीर के अंदर शुरू हो जाता है ना, टेंशन ही टेंशन बढ़ जाती है, स्यापे ही स्यापे बढ़ जाते हैं। और मैं नहीं चाहती भैया किसी की लाइफ में कोई भी स्यापे हो। जितना ज़्यादा ड्रामा होता है उतना ज़्यादा हमारा मेंटल पीस हर्ट होता है, और जितना ज़्यादा हमारा मेंटल पीस, हमारा मेंटल हेल्थ हर्ट होता है, उतनी ही हमारी चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे लिसनर्स का कोई भी खराब हो, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं सैड सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए। सैड सॉन्ग आप तब सुने जब आप उदास ना हो, बहुत हैप्पी हो और आपका सुनने का मन कर रहा है, चलो भैया सुन के रोना नहीं आएगा, तब तो आप सुन सकते हो। बट अगर आप इसलिए सुन रहे हो कि सुन के रोना ही है तो फिर राय दो, ना सुना जाए। फिलहाल आइए चलते हैं डॉन फिल्म की तरफ और हम सुनते हैं 2006 में आया एक जबरदस्त हिट सॉन्ग, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gara 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

विशाल ददलानी की आवाज में और सुनिधि चौहान की आवाज में आपने एंजॉय किया शोलोसी। और हम आपको बता दें ये वो सॉन्ग था, इसको सुनने के बाद आपको भी शोलोसी करने का मन कर रहा होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ही जबरदस्त हिट सॉन्ग है। एंड विशाल ददलानी की अगर बात की जाए तो जिन गानों में उन्होंने म्यूजिक दिया है वो तो जबरदस्त होते ही है, लेकिन भाई साहब ने जब खुद किसी गाने को गाया है तो क्या ही लाजवाब गाते हैं। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि हर एक गाने में एक अलग सी पावर झलकती है उनकी आवाज़ में, उनके अंदाज़ में, उनके गाने के तरीके में। स्पेशली अगर मैं आपको उनके को दो तीन गाने सुनाऊंगी ना तो उनके फ़ैन हो जाने वाले हो। अभी तक मुझे लगता था कि विशाल ददलानी सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक देते हैं, बट जब पहली दफ़ा उनका गाना सुना था मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनकी फ़ैन बन चुकी थी कि आवाज़ क्या ही ज़बरदस्त है। एंड हमारे साथ सनी पांडे जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग आरजे मैम, गुड इवनिंग टू यू। फिलहाल इवनिंग तो नहीं हुई है, आपने हमें दोपहर में ही शाम का दीदार करा दिया है वापस से। फिलहाल कैसे हैं आप, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। और क्या ख्याल है, अगले गाने की तरफ चलें? जी हाँ बिल्कुल, आइए अगले गाने की तरफ चलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगला सॉन्ग हम लेकर आए हैं बार बार देखो फिल्म से। और एक वक्त था ना जब नेहा कक्कर की आवाज़ ने पूरे बॉलीवुड में धूम मचा रखी थी, हर कोई नेहा कक्कर का फ़ैन था, उनके कोई भी गाना रिलीज़ होते ही बिलियंस क्रॉस जाता था। इवन कई सारे गाने रिलीज़ होते हैं और लोग हमेशा से नेहा कक्कर को ट्रॉल करते आए हैं उनकी आवाज़ के लिए, उनके सॉन्ग्स के लिए, जो उनके भाई के साथ उन्होंने सॉन्ग्स गाए हुए हैं उसके लिए कई बार उन्हें ट्रॉल किया जाता है। बट ये सिर्फ एक मार्केटिंग हुआ करती थी। आपको बता दें कि टोनी कक्कर और नेहा कक्कर ने मिलकर इतने ज़बरदस्त सॉन्ग दिए हैं। टोनी कक्कर ने भले ही आपको जो भी गाने दिए हों वो आपको क्रिंज लगते हो या ऐसे लगते हो कि ये कैसे गाने बना रहे हो, ये क्या गाने, ये चॉकलेट चॉकलेट, ये क्या सारे गाने। बट टोनी कक्कर की अगर आप रियल सॉन्ग को सुनते हो, अगर आप उनके सच में गानों को पसंद करते हो तो आपको समझ में आएगा जो उनका ओरिजिनल मास्टरपीस होते हैं वो इतने ज़्यादा अंडररेटेड हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा उस गाने को गाया कैसे। मोहित चौहान की आवाज़ में आपने सुना था एक सॉन्ग, खुदा भी जब तुझे देखता होगा, ठीक है, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। इसको लिखने वाला कोई और नहीं, टोनी कक्कर ही है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने ऐसे बहुत सारे गाने लिखे हैं जो आप तक कभी पहुँचे ही नहीं, जिंदगी बता दे तू, ऐसे ही उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हिट सॉन्ग दिए हुए हैं। बट बात ये है कि वो गाने बहुत ही अंडररेटेड है, इवन ऐसे कहें तो ये वो मास्टरपीस है जिनको छुपा कर रखा गया है। और नेहा कक्कर की आवाज़ जब और नौरा फतेही के ऊपर फिट बैठती थी, करीना कपूर, कैटरीना, इन सभी लोगों के ऊपर जब उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी बॉलीवुड में स्पेशली पार्टी सॉन्ग, तो उस टाइम का एरा सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड था नेहा कक्कर को। हालांकि आज हम उनके गाने बहुत कम सुनते हैं, बहुत लिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज़ किए जाते हैं साल में एक या दो गाना, लेकिन उस वक्त हर दूसरा गाना हर एक फिल्म में नेहा कक्कर की आवाज़ में होता था, बिलियंस क्रॉस। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि उस वक्त नेहा कक्कर की फ़ैन फॉलोइंग किस लेवल की थी और कितने गाने उनके इन्जॉय किए जाते हैं। तो आइए इन्जॉय करते हैं उनकी आवाज़ में

भैया आपको काला चश्मा जचता है या पीला मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाना हर पार्टी में जरूर जचता है। आपने एंजॉय किया बादशाह का गाना नेहा कक्कड़ की आवाज में ऑफ कोर्स। और मैंने बात की थी कि कैटरीना की ड्रेस को लेकर इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, यानी इस सॉन्ग में स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कैटरीना का जब एंट्री होती है सॉन्ग में तो वो लहंगा पहनकर होती है, बट जैसे ही इस डांस की शूटिंग स्टार्ट होती है और ये स्टेप्स किए जाते हैं, कैटरीना को महसूस होता है कि इस लहंगे के अंदर उनके जो पैरों की मूवमेंट है वो छुप रही है, हुक स्टेप छुप रहा है, और इसीलिए वो डायरेक्टर से जाकर कहती हैं कि ऐसा करो लहंगा हटाओ साड़ी दो, बिकॉज साड़ी इस तरह से ड्रेप की जाएगी, जीन्स के स्टाइल में ड्रेप की जाएगी और इससे समझ में आएगा कि जो मेरे हुक स्टेप्स हैं, जो मेरे पैरों के मूवमेंट है वो कितने क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। डायरेक्टर को पहले ये आइडिया बहुत बोरिंग लगा था ये सोच करके कि यार लहंगे में स्टार्टिंग कर चुके हैं और मैंने तो सोचा था कि इसमें लहंगा जाएगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ज़बरदस्ती ज़िद करके बोला कि नहीं इस गाने में मुझे कोई लहंगा वहंगा नहीं चाहिए, साड़ी चाहिए, ड्रेपिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो लगे कि हाँ मैंने कोई जीन्स पहनी हुई है, कोई पैंट पहनी हुई है। साड़ी को साड़ी की तरह ड्रेप नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मॉडर्न ड्रेप किया जाएगा। और ऑन द स्पॉट उसी सेट पर मनीष ने तुरंत ही साड़ी का डिज़ाइन तैयार किया और ये साड़ी उनको पहनाई गई। ड्रेपिंग ऐसी स्टाइल आपने देखी है ऑफकोर्स, बिल्कुल साड़ी की तरह इसको ड्रेप नहीं किया गया, एक पैंट की तरह इसको ड्रेप किया गया, और उसके बाद जो मूवमेंट सामने आए हैं वो इतने क्लियर हैं कि आज हर दूसरा इंसान इसी हुक स्टेप को फॉलो भी कर रहा है। डायरेक्टर ने जब इस गाने को हिट होने के बाद अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कैटरीना को थैंक यू भी कहा था कि थैंक्स टू हर, बिकॉज उसने अगर ये आइडिया नहीं दिया होता, उसने ज़बरदस्ती नहीं की होती ये कह करके कि लहंगा हटाओ यार साड़ी दो, साड़ी की ड्रेपिंग चेंज करो, तो शायद आज ये गाना इतना ज़्यादा हिट नहीं जाता। हम आपको बता दें कैटरीना वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अक्सर अपने फिल्म में पहने गए कपड़े खुद डिज़ाइन करवाती हैं। इवन आपको भी पता होगा उनके बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसमें उनकी ड्रेसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें आती हैं कि उन्होंने अपनी ड्रेस खुद चुनी है, पिंक कलर चुना है, और ऐसा पिंक बारबी भी उन्हें कहा जाता है, बिकॉज जब बारबी के रैम वॉक हो रहा था, रैम वॉक किया जा रहा था, तब उन्हें चुना गया था एज अ पिंक बारबी, बिकॉज वो अच्छी लगती है और पिंक कलर उनको डेडिकेटेड भी।

0: किया जा चुका है बॉलीवुड में। हर दूसरा बंदा चाहता है कि भैया एक टाइम था जब कटरीना जब पिंक कपड़े पहन के आती थी, तो यही लोग यानी कि हमारी लड़कियां जो 2000 में देख रही थी कटरीना को पिंक ड्रेसेस में, उनका ख्वाब था, उनका सपना हुआ करता था कि क्यों नहीं कटरीना वाली जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेसेस हैं, जो चीज़ें वो पहन के घूम रही हैं, वो हमारे पास भी हों। इवन क्योंकि अब ये चीज़ें पॉपुलर होने लगी हैं, मिलने लगी हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जाकर के आज भी कई लोग कटरीना के पिंक ड्रेसेस की डिमांड पे लगे हुए हैं। अब आप बताइएगा कि एक मॉडल जो कि मॉडलिंग से निकल के डायरेक्ट फिल्मों में आई, जिसको हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, उसने इतनी खूबसूरत हिंदी बोली, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस को बनवाया और अपनी फिल्मों में ज़बरदस्ती ड्रेसेस चेंज करवा देने का आइडिया जो उनका होता था वो किस हद तक हिट होता था। कई बार वो अपने खुद के पैसे खर्च कर देती थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट ड्रेस चाहिए एक परफेक्ट हुक स्टेप के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एन एक्ट्रेस। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं जो अगेन लिख रहे हैं गुड इवनिंग आज ज्योति जी, भैया ऐसा कौन सा शहर है जहाँ शाम हो चुकी, क्योंकि मेरे शहर में तो अभी सूरज दादा मेरे सर के ऊपर ही बैठे हुए हैं, हालांकि अभी सर के ऊपर छत आ चुकी है, बट हाँ मुझे इतना यकीन है कि वो मेरे सर के ऊपर ही हैं और अभी दोपहर चल रही है। फिलहाल गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एंड आपका स्वागत करते हैं द टॉप 20 में, और आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया, बताइएगा ज़रूर, एंड ऑफकोर्स एन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 15 आई हेट लव स्टोरी, एंजॉय करते रहिए, मतलब इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: विशाल दद्दानी की आवाज में आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरी ऑफ कोर्स, और फिल्म का नाम भी है आई हेट लव स्टोरी। और ऑफ कोर्स सबलू जी लिख रहे हैं आजकल आज सभी लंबे समय छुट्टी मना रही हैं। भैया कौन छुट्टी मना रहा है, मैं तो नहीं मना रही और ना ही कोई आरजे भी मना रहे। शायद आप ही थोड़े से देर से आए हैं इसीलिए आपको नहीं पता कि आज संडे है और संडे के दिन ऑफ कोर्स आपकी आरजेज की छुट्टी होती है। बट हाँ, बाकी जिनकी भी ड्यूटी आज है वो मौजूद हैं और हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ डांस करते हुए। यूं ही डिस्को डांस करते रहिए क्योंकि अगला सॉन्ग आपके लिए पेश कर रहे हैं हम बॉस फिल्म से हम न तोड़े। ऑफ कोर्स ये भी विशाल ददलानी की आवाज़ में होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त हिट सॉन्ग है। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर बॉलीवुड न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरजूती के साथ आपके आफ्टरनून का स्पेशल प्रोग्राम इंडिया टॉप 20। क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।
4: हजारे ताऊ बॉस आ रहा से बेरा कोनी के तने बॉस रे बॉस।

रे खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले, रे गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद, रे पीपड़ी ले फूक ले हवानी भरी के अंदर, रे ऑर्केस्ट्रा बजा।

0: हाँ जी, तो आपने एंजॉय किया एक बहुत ही जबरदस्त हाई बीट, हाई एनर्जेटिक और मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला सॉन्ग। जी हाँ, जब भी आपको लगे ना कि आपका ऑरा थोड़ा कम पड़ रहा है, आप थोड़े से लो फील कर रहे हो, इस तरह के गाने सुनने चाहिए भैया। जब भी आपको लगे ना कि आपका ऑरा थोड़ा कम पड़ रहा है, आप थोड़े से लो फील कर रहे हो, इस तरह के गाने सुनने चाहिए भैया। आपको समझ में आ जाता है कि यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, और इसके बाद आप नहीं भूलते हो कि हम ही हैं बॉस, हम में है दम, बाकी सारे पानी और चाय कम। फिलहाल जी हाँ, आपकी किस्मत में किस दिन छुट्टी लिखी है? मेरी किस्मत में छुट्टी लिखी है थर्सडे को, और ऑफ कोर्स इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद जी जो लिख रहे हैं, अच्छा सॉन्ग था, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नति मैम नमस्कार, नागेश्वर धाकर जी को बहुत देर में याद आया कि आज उन्नति मैम मौजूद हैं। फिलहाल अगेन से नमस्कार आप सभी को। आइए चलते हैं बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बॉलीवुड की तरफ लेकर चलेंगे, और क्योंकि रामायण को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, इतने में ही जो प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा जी और डायरेक्टर नितेश तिवारी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, कंफर्म किया है कि हमेशा से लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम के पोर्ट्रेट में, उनके कैरेक्टर में उनकी पहली पसंद रणवीर ही थे, इसके अलावा कोई भी उन्हें पसंद नहीं था, रणवीर कपूर ही उनकी पहली पसंद थे, पहली और आखिरी पसंद कह सकते हैं, ना ऑप्शन में कोई ए बी सी रखा था उन्होंने, ना कभी रखेंगे। यह फिल्म भले ही लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है बिकॉज ऑफ देयर आउटफिट्स, यानी कि जो कपड़े, जो ज्वेलरी और जो डिज़ाइंस उन्होंने कैरी किए हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में थोड़ी बातें ज़रूर हैं, बट ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। इसके अलावा रणवीर कपूर को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, रावण यानी कि यश को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है उनके कैरेक्टर के लिए। और अब चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप सुने जा रहे हैं हमारा सॉन्ग नंबर 13, टिकट टू हॉलीवुड। भैया बॉलीवुड की टिकट तो कट नहीं रही, लेकिन सीधे हम हॉलीवुड की कटवा देते हैं आपकी, और यहाँ से आप अपनी फ्लाइट पकड़ के उड़ेंगे सीधे अमेरिका। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं द टॉप 20 विद राज उन्नति। ऑफ कोर्स आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं आपका सॉन्ग नंबर 12 दीदार दे, सुनिधि चौहान की आवाज में आपने एंजॉय किया। और इसी के साथ आइए चलते हैं बॉलीवुड न्यूज की तरफ और हम आपको सुना दें कि बॉलीवुड से आपके लिए क्या न्यूज आ रही है। फिलहाल एक चीज जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस वक्त इंस्टाग्राम पर, उसका नाम है मुसाफिर कैफे। और जी हाँ, आपने सुना होगा सुधा एंड प्रीति के बारे में अक्सर लोग बात कर रहे हैं। इवन न जाने कितने लोग आकर के रिलेशनशिप एडवाइस देने लग गए हैं मुसाफिर कैफे के अकॉर्डिंग। और नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि मुसाफिर कैफे का सीजन 2 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सुधा भी नजर आने वाली है, ऑफ कोर्स प्रीति भी नजर आने वाली है, बिकॉज शी इज द मेन कैरेक्टर। फिलहाल ये तो थी एक छोटी सी न्यूज जो मैंने आपको बता दी। और हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी जुड़ गए हैं और उनका स्वागत कर लेते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ मिश्रा फ्रॉम गोंडा, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। गुड आफ्टरनून लिखा है, गुड आफ्टरनून टू यू। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मैम हम तो सुन रहे थे लेकिन आपकी छटपटी आवाज़ सुनने को नहीं मिली है, तो मतलब पिछले 2 घंटे से हम कर क्या रहे थे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और आपका स्वागत है अगेन से। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 11 आपका वेट कर रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं इंडिया टॉप 20 की जबरदस्त हिट वाली प्लेलिस्ट। ऑफ कोर्स आज कोई भी रोना धोना नहीं मचेगा, इसीलिए हमारा सॉन्ग नंबर 11 भी आपको लेकर जाएगा हाई एनर्जेटिक बीट की तरफ। और आप एंजॉय करने जा रहे हैं ओम मंगलम कंबख्त इश्क से। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपकी आज रही मौजूद है आप सभी के साथ सनी का स्पेशल वाले प्रोग्राम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 11.

0: हां जी, तो आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 11 ओ मंगलम, और आपने इस गाने को एंजॉय करने के बाद क्यों ना बॉलीवुड की तरफ दोबारा से रुख कर ले। जी हाँ, अगर आपको KGF की फिल्में पसंद आई थी या फिर यश पसंद आए हैं तो उनकी एक और फिल्म है जिसकी ट्रेलर के ऊपर रिपोर्ट कर दी गई थी, यानी कि केस कर दिया गया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था। और उनका एक स्टेटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो कुछ इस तरह से है कि भैया यश ने कहा है कि उनकी जो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाइल्ड इमोशनल होने वाली है, इतनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, इतनी ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है जिसके लिए वो माफ़ी भी नहीं मांग सकते बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टू मच। और ऑफ कोर्स उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब लोग थिएटर छोड़ेंगे तो उनके उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा कि व्हाट द हेल, ये था क्या, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रॉ कैसे हो सकती है, इतनी ज़्यादा इमोशनल कैसे हो सकती है, इतना ज़्यादा एक्शन के साथ वाइल्ड कैसे हो सकती है। भैया ये तो यश ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। अब नियर बाय थिएटर्स में जब आप देखने जाएंगे तो आपके रिएक्शन क्या उनके इस स्टेटमेंट से मैच होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आप जब देख कर आएंगे तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और आप इन्जॉय करने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 10 वेलकम टू कराची से शकीरा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद राज 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: रेडियो गोंडा 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

हाँ जी, तो भैया इस गाने को सुनने के बाद अगर आपको सुशांत की याद आ गई ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त हिट सॉन्ग था। और ऑफकोर्स एक ऐसे एक्टर जिनको हमने बहुत वक्त पहले खो दिया है, बट हाँ ये उनका गाना है और जब भी उनके गाने हम ज़रूर सुनते हैं तो उनकी एक्टिंग, उनके तरीके ज़रूर याद आते हैं। डाउन टू अर्थ एक्टर माना जाता था और ऑफकोर्स आज भी उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज भी वो हमारे दिल में वैसे ही बसते हैं जैसे पहले बसा करते थे। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे आपकी मिर्ज़ापुर की खबर की तरफ, बिकॉज मिर्ज़ापुर को लेकर के कुछ नया नई खबर मेरे पास आई है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 8 हनी सिंह की आवाज़ में, जाम द कसीनो सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: और भैया इसी के साथ हम आपको बता दें कि डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने अनाउंसमेंट कर दी है कि मिर्जापुर सीजन 4 की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द ये आपको देखने को भी मिल सकता है। तो भैया जिनको मिर्जापुर पसंद आई है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आप देख चुके हैं, तो ये उनके लिए बड़ी खबर है कि डायरेक्टर ने जब कंफर्म कर दिया है तो बहुत जल्द ये आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो तैयार रहिएगा आप अपने उसी वाइफ के साथ, उसी ऑरा के साथ, उसी पॉजिटिव कैरेक्टर एनर्जी के साथ। फिलहाल थोड़ा सा मार धाड़, यानी जिसको एक्शन वैक्शन ज़्यादा पसंद है, उनको इस तरह की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनके लिए अच्छी खबर थी ये। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप सुनने जा रहे हैं हाउसफुल से प्यार की। अब हाउसफुल एंजॉय करते रहिए, और ऑफ कोर्स इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले सॉन्ग की तरफ, यानी कि सॉन्ग नंबर 5 की तरफ। आप सुन रहे हैं टॉप 20 और मैं हूं आपकी अपनी आज ज्योति, आपकी होस्ट एंड दोस्त, मौजूद हूं आप सभी के साथ। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 6.

0: हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे मेरे ब्रदर की दुल्हन से मधुबाला, और वक्त है हमारे अगले गाने की तरफ चलने का, क्योंकि जिंदगी में लोग कहते हैं चार लोग, चार चीजें, चार बातें और चार ही दिन, तो क्यों ना आपको सुना दिया जाए जीने के हैं चार दिन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 4।

और इसी गाने को सुनने के बाद मम्मी से शाम की चाय नहीं बस चाय चाय मांगी जाती थी, और मम्मी कहती थी आप यहाँ से जाए जाए, आपको कोई चाय नहीं मिलने वाली है। और इस गाने को मैं हमेशा ऐसे ही गाते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से ही ना ये टैलेंट हमेशा से, और मैं कितनी बार अनाउंस कर चुकी हूँ कि लिरिक्स को गलत गाने की जो आदत है वो मेरी कभी जा नहीं सकती। एंड ओके, महेंद्र जी लिख रहे हैं, जब चार वेद हैं, दिशाएं चार हैं, युग चार हैं, तो फिर लोग और दिन भी चार ही होने थे। बट यार मैं तो पिछले 22 साल से जी रही हूँ, कहीं मैं अमर वमर तो नहीं हो गई। फिलहाल के लिए ये बहुत ही घिसा पिटा जोक था जो मैंने आपको सुना दिया है, और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और आप सुनने जा रहे हैं बचनाए हसीनो फिल्म से उसका टाइटल ट्रैक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने अगले दो गानों को लेकर के, यानी कि आखिरी के दो सॉन्ग तक के लिए।

0: हां जी, और उसी के साथ अब वक्त है अपने आखिरी के दो गानों की तरफ चलने का। लेकिन उससे पहले ओके, तो सनी पांडे जी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं और बहुत सारी इमोजी सेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका सेकंड सॉन्ग यानी कि सॉन्ग नंबर जो 2 है वो है डार्लिंग साथ खून माफ से, और सॉन्ग नंबर 1 छू मंतर ऑफकोर्स। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का। लेकिन आज की प्लेलिस्ट आपको लगी कैसी बताइएगा जरूर, क्योंकि आज हमने बहुत ही जबरदस्त हिट वाले गाने सुने थे। एंड अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। प्लस प्लस प्लस आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगले हफ्ते यानी कि आने वाले नेक्स्ट संडे में आप किस तरह की प्लेलिस्ट सुनना चाहेंगे, हिट सॉन्ग या फिर ऑफकोर्स अगर आपका कोई भी डिमांड है, कोई भी जॉनरा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, अगली प्लेलिस्ट आपके नाम जा रही है। तो बताना मत भूलेगा, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कुछ लम्हों के बाद यानी कि थोड़े से वक्त के बाद अपने अगले शो के लिए ज्ञान असली में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
1: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे।
2: हां जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। घड़ी में वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम यानी कि संडे का स्पेशल वाले प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञानसली का, जो कि आपका हेल्थ का प्रोग्राम है और हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूं आपकी अपनी आरजी नदी और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मेरे को होस्ट और आपके हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि ऑफकोर्स हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। सेहत सही लाभ के बैंक के तले लेकर आए रेडियो ज्ञानसली और स्मार्ट एनजीओ की बहुत ही खूबसूरत पहल, जिसमें बात करते हैं हम आपके सेहत की। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं सर, कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम अच्छे हैं पहले ही की तरह और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
2: बेशक, और आपका इंतज़ार हमारे लिसनर्स बहुत पहले से कर रहे हैं। हम आपको बता दें, आपके आने से पहले ही लोगों ने आपके लिए गुड इवनिंग और नमस्कार भेज दिया है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा देख करके और सुन करके मुझे कि पहले से ही लोग एक्टिव हो जाते हैं, और मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ उनके अपने पसंदीदा वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट मैसेज में या फिर कॉल करके अपनी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं।
2: इसके अलावा हम आपको बता दें भैया, आप हमें डायरेक्ट चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारा चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM के नाम से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर मौजूद है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 6393316429, आई रिपीट 6393316429 पर, और आपके सवालों के जवाब ऑफकोर्स मैं नहीं राहुल सर देंगे।
3: जी बिल्कुल, उन सवालों के जवाब देंगे और किसी एक विशेष टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हर सेगमेंट में करते हैं। और चलिए उन्नति मैम से जानते हैं कि आज के इस चर्चा का विषय ये क्या लेकर के आई हैं।
2: एक्चुअली आपको भी याद होगा कि हमारे एक लिसनर ने कहा था कि अगली बार जब आप आना तो आप कान के ऊपर बात करना, यानी कि कानों के ऊपर बात करना, और पिछली बार मैं नहीं ला पाई थी क्योंकि हमने पिछली बार कुछ और कवर किया था। तो इस बार उनकी इस फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए मैं ईयर इन्फेक्शन के बारे में ही बात करने जा रही हूँ।
3: जी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है। वैसे भी हम लोगों ने शायद, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, बट शायद हम लोगों ने कान पर कवर किया है, बट फिर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे पर्दे जो है वो कान से हटाएंगे।
2: पर्दे कान से हटाएंगे तो सुनेंगे कैसे?
3: कान का पर्दा नहीं हटाएंगे, कान से पर्दे हटाएंगे।
2: चलिए, क्योंकि कान एक ऐसी चीज है जो बहुत नाजुक है, हमारी आंखों की तरह ही, और छोटा सा है तो हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। कुछ भी अपने कानों के अंदर डाला करते हैं, कुछ भी किया करते हैं उसके साथ, कभी हेडफोन्स लगा करके, कभी फुल वॉल्यूम में गाना बजा करके। डीजे वाले भैया अगर कम वॉल्यूम में बजा भी रहे हो तो हम उनसे और भी कहते हैं कि थोड़ा और वॉल्यूम। वो अलग बात है कि उसकी बीट हमारी दिल की धड़कनों तक महसूस हो जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब कोई समस्या पैदा होती है तो सबसे पहले उसमें सरसों का तेल डाल करके।
2: हाँ, मुझे ये भी जानना कि कान में तेल डालने से क्या कान ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरे कान तो बंद हो जाते थे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आज इन्हीं सभी चीजों पे चर्चाएं करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स भी चेक करेंगे कि वो मिथ हैं या फैक्ट हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है और जानते हैं कि क्या प्रश्न उन्नति मैम पूछने वाली हैं।
2: बिल्कुल, और कभी कभार जो आपके कानों में सीटी बज जाती है वो क्यों बजती है, बेवजह सा जो एक बीप सा साउंड सुनाई पड़ता है वो, और कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि आपके कानों में जो आवाज़ जा रही है वो 4K HD में जाने लगी, अचानक से बहुत क्लियर हो जाती है।
3: जी जी, ऐसे भी चीज़ें,
2: ऐसा कभी बबल फूट गया अंदर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हाई क्वालिटी में वॉइस जो है ये ट्रांसमिट होने लगती है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे, आपके कान से संबंधित सवालों के जवाब भी देंगे। तो जल्दी से आप, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं कान के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें।
2: तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ईयर इन्फेक्शन क्या होता है, किस वजह से होता है, और क्या कान में दर्द होने के अलावा भी कोई सिम्टम होता है ईयर इन्फेक्शन का?
3: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत यहीं से सबसे बेहतर की जा सकती थी। जैसा कि हमने इन्फेक्शन के बारे में पहले भी सुन रखा है, समझ रखा है कि इन्फेक्शन कहते हैं किसी प्रकार के संक्रमण को। अब संक्रमण कई कारणों से होता है, किसी जीवाणु के माध्यम से होता है, किसी विषाणु के माध्यम से होता है, मतलब किसी बैक्टीरिया से होता है, किसी वायरस से भी होता है, फंगस के वजह से भी हो जाता है, कभी कभी पैरासाइट्स के वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं ईयर इन्फेक्शन के, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये बेसिकली मेनली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। समटाइम्स कभी कभी मिक्स ओटाइटिस आती है जिसमें बैक्टीरियल फंगल मतलब कई तरह के इन्फेक्शन रहते हैं, एटलीस्ट ये दो तरह के तो रहते ही रहते हैं।
2: अच्छा, कानों में कभी कभार बेवजह भी दर्द हो जाता है बहुत तेज से और अचानक से वो ठीक भी हो जाता
3: जी।
2: है, इसके पीछे का रीजन ईयर इन्फेक्शन होता है या कुछ और?
3: देखिए, सबसे पहले तो हम ईयर इन्फेक्शन के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न था उसमें ये भी प्रश्न था कि क्या दर्द के अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। देखिए, कान की जहाँ तक बात की जाए तो वैसे तो जो अगर कान में मान लीजिए अगर इन्फेक्शन है तो इसके कुछ लक्षण आपको जैसे कान में दर्द का होना, बार बार इचिंग होना, खुजली मतलब बार बार होना, जैसे कभी कभार इचिंग होना साधारण बात हो सकती है पर बार बार इचिंग होना ये साधारण बात नहीं हो सकती है, तो बार बार इचिंग का होना, कभी कभी कानों से पस का आना, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली शहरों में तो मुझे उतना देखने को नहीं मिलता है बट जब हम रूरल एरियाज़ में अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वहाँ के पेशेंट्स को देखते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है कि कान बहने की समस्या बहुत आती है। वो इस टर्मिनोलॉजी को ऐसे जनरली बताते भी हैं कि कान बह रहा है, कान मेरा बहुत दिन से बहता है और कान बहुत लंबे समय से बह रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो
2: एक्चुअल में मैं जानना चाहूँगी जब कान बहता है तो उसमें फ्लूइड कौन सा होता है?
3: उसमें ज़्यादातर तो पस होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में,
2: मतलब वो इन्फेक्शन है किसी तरह का।
3: जी बिल्कुल, वो 100% इन्फेक्शन ही है किसी तरह का। समटाइम्स वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या समटाइम्स वो मिक्स्ड ओटाइटिस होता है। और ये जो कान बहता है तो उसमें ज़्यादा टाइम मतलब पस रहता है, यानी कि मवाद जिसे कहते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का नेचर रहता है बट वो भी धीरे धीरे पस में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसको लोग पंचा मवाद ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं।
2: ओके, चलिए, तो भैया कानों से आपके पस निकल सकता है, इसका मतलब आपका कान बह रहा है। इवन मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं सुना है, शहरों में तो नहीं सुना है ऐसा
3: जी, बट गाँव के क्षेत्रों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कान का बहना बच्चों में, बड़ों में भी, इनफैक्ट कान का बहना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं। शहरों में मैं बता रहा हूँ कि कम आते हैं बहने वाले केसेस, बट गाँव में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं।
2: तो ये होता क्यों है, मतलब किसी वजह से हमने कानों में कुछ डाल लिया है या फिर कहीं चोट लग गई है, कोई हाई वॉल्यूम में चीज़ सुन ली है?
3: जी बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, वैसे हाई वॉल्यूम में सुनने से इन्फेक्शन तो क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। कानों में दर्द आ सकता है, सुनने का मतलब जो एबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, उसमें प्रभावित हो सकती है, बट बहना तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो अभी जो कारण है कि कान बहते क्यों हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता है। किस तरह से होता है अगर आपका प्रश्न ये है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे बच्चों में जो मैंने कॉमन केसेस देखे हैं, बच्चों में क्या होता है कि वो कान में कुछ भी डाल लेते हैं या ज़मीन पे हाथ रखते हैं या कुछ भी गंदी चीज़ छूते हैं, उसी से कभी अपना कान खुजा देते हैं, तो वो बैक्टीरिया वगैरह अंदर पहुंच करके कान के इंटरनल कैनाल में पहुंच करके और वो इसको उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। समटाइम्स उसमें मतलब फोड़ा वगैरह भी अपीयर होता है, पस काफ़ी ज़्यादा भरा होता है। तो ये बच्चों में इसका कारण ये होता है कि बच्चे मतलब कहीं भी हाथ रख देते हैं, उसी से वो कान भी छू लेते हैं, कान को जो है संक्रमित हो जाता है उनके हाथों से, या कई बार वो लकड़ी वगैरह जो है उससे भी वो टच कर लेते हैं, ये कारण होता है। बड़ों में बेसिकली जितने केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो ज़्यादातर केसेस आते हैं, उनमें केसेस होते हैं पर्दे के डैमेज होने का, ठीक है, जो ईयर ड्रम है वो रप्चर होने के केसेस होते हैं, मतलब उनके पर्दे में सुराख होता है, छेद होता है, और उसके वजह से कभी नहाने के दौरान या कभी ट्रैफिक वगैरह में सड़कों पे धूल वगैरह ज़्यादा अंदर चली जाती है, उसके वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होकर के और वो बहना स्टार्ट कर देता है। बड़ों में ज़्यादातर ये केसेस मुझे देखने को मिले हैं जिनमें ईयर ड्रम रप्चर रहा है, यानी कि पर्दे के कान के पर्दे में सुराख रहा है, छेद रहा है, और बच्चों में पर्दे में छेद नहीं भी रहा है फिर भी उनके मतलब वो संक्रमण से इन्फेक्शन की वजह से कान बहने की समस्या मैंने बहुत देखी है ग्रामीण क्षेत्रों में।
2: अच्छा, आपने कहा कि जब हमारा ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, सुराख हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो ये होता है, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईयर ड्रम रप्चर होता कैसे है, ताकि वो ध्यान रखा जा सके अपने, क्योंकि कान का पर्दा एक ऐसी चीज होती है जो शायद चेंज नहीं की जा सकती है।
3: बिल्कुल नहीं चेंज की जा सकती है, कुछ
2: अगर एक बार कान से सुनाई देना बंद हुआ तो वो ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है।
3: जी ऑलमोस्ट वो परमानेंट लॉस ही होता है हियरिंग का। ज्यादातर केसेस में। बट जो आपका प्रश्न है कि जो ईयर ड्रम रप्चर है या पर्दा जो है वो छेद हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ये कैसे होता है? देखिए, इसके दो बेसिक कारण समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पर्दे का थिकनेस होती है, यानी पर्दे की जो मोटाई होती है कान के पर्दे की, ये जो आप नॉर्मल कागज़ जिस पर लिखते हैं, लिखने वाला जो कागज़ होता है कॉपियों में, उससे भी पतला होता है हमारे कान का पर्दा।
2: टिश्यू पेपर मान के चलूं अगर
3: आप तो? ये मान के चलिए कि टिश्यू पेपर जितना पतला होता है उसकी थिकनेस होती है, बट मतलब मजबूत थोड़ा टिश्यू पेपर से ज्यादा होता है, क्योंकि वो भाई भगवान की बनाई हुई संरचना है,
2: क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकती, इससे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान
3: ज्यादा ध्यान दिया गया है उस पे। तो ये जो कान का पर्दा होता है ईयर ड्रम, ये बहुत ही बारीक, बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है।
2: ओके,
3: इसके अंदर बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, महीन महीन नसें होती हैं, जो उस पर्दे को पोषण और ब्लड की सप्लाई पहुंचाती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि लंबे समय से किसी तरह का इन्फेक्शन है कान वगैरह में, और उसको लोग अवॉइड करते हैं। गाँव में तो मैंने देखा है कि मैं पूछता हूँ कि पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कान बह रहा है, मैं पूछता हूँ कितने दिन से बह रहा है, वो बोलते हैं 6 महीने से बह रहा है।
2: 6 महीने से आपके कान में कोई इश्यूज है और आप हॉस्पिटल ही नहीं जा रहे हो?
3: मतलब वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो जा भी रहे हैं, बट जो वहाँ के आसपास के जो छोटे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या छोटे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या है कि उस केसेस को उतना डीपली रीड नहीं कर पाते हैं
2: जी।
3: और वो हायर फैसिलिटेटेड सेंटर पे या स्पेशलिस्ट के पास वो पहुंच नहीं पाते हैं
2: जी।
3: तो वो कान में कुछ भी डाल रहे होते हैं, कभी सिप्लॉक्स ड्रॉप डाल रहे होते हैं, कभी ईयरवेल ड्रॉप डाल रहे होते हैं, कुछ भी डाल रहे होते हैं। देखिए
2: ओके, मैं आपसे एक मिनट माफी चाहूंगी, हमारे साथ एक लिसनर जुड़ी है। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी, आपका नाम?
4: मेरा नाम सविता दुबे।
2: जी सविता दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में। कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ। मैं आज सुन रही हूँ कि कान को लेके बारे में हो रहा है
2: जी,
4: तो
2: जी,
4: मैं 7 महीना पहले दिखाने गई थी राहुल सर को कान के बारे
2: ओके,
4: में।
2: ओके, तो भाई राहुल सर आपके लिए फीडबैक है कुछ?
3: जी सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: तो मैंने आपको दिखाने गई थी कान
3: जी,
4: मेरे कान में जो समस्या हो रहा था
3: जी,
4: समस्या जानती हूँ, वो मेरे वजह से हुई थी, ताकि मैं गाना सुनने का बड़ा शौकीन था, तो मैंने कान में लीड लगा के सुनती थी, सो जाती थी
3: जी। जी आपने मतलब बताया भी था।
4: हाँ, आई भी थी 7 महीने पहले। उसके बाद 7 महीने पहले मेरे को महसूस हुआ कि मैं धीमी आवाज में सुनती थी मोबाइल पे ज्ञानस्थली, तो मेरा बाएं कान में एक अजीब सा एक आवाज होता था, जैसे लगा कि चीटी घुसा है, कि बहुत अजीब सा आवाज होता था। तो मैं इसीलिए मैंने आपको दिखाने गई, तो आपने देखे, दवा दिए, तो मेरा कान अभी बिल्कुल सही हो गया।
3: अच्छा, और अभी वो जो कान में आपके आवाज आती थी वो सब तो नहीं महसूस होता?
4: नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है।
3: अच्छा, ठीक से बराबर सुनाई देता है आपको कान से?
4: जी जी जी।
3: चलिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कीमती फीडबैक दिया सविता दुबे जी ने, और बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इसके अलावा और कोई कीमती फीडबैक या कोई जानकारी चाहती हैं सविता जी आप?
4: हाँ, सुनी रही हूँ, बताइए, मैं रेडियो पे सुनूंगी।
3: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ एक हमारे लिसनर सविता दुबे जी, बहुत ही प्यारी सी हमारी श्रोता हैं, अपने सुझाव भी देती हैं और अपने कीमती फीडबैक भी देती हैं। एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई लिसनर हमें कोई सुझाव देता है, हमें किसी टॉपिक के बारे में बताता है, हमसे बातें करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए और उन्हीं को सर्व करने के लिए, उन्हीं से जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो आपसे ये हमारा निवेदन है कि ज़रूर आप अपना कीमती फीडबैक, आपका सुझाव, आपके टॉपिक्स, मतलब जो भी आप हमसे बात करना चाहें, आप ज़रूर किया करें हेल्थ से संबंधित।
2: जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं, अभी उसी पर वापस आते हैं। इन्फेक्शन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे और आपने बताया मुझे
3: जी,
2: गाँव में ज़्यादातर ये केसेस देखने को मिलते हैं, इवन वो डॉक्टर्स को दिखाते भी नहीं हैं कई बार।
3: जी, कई बार दिखाते भी नहीं हैं, कई बार दिखाते हैं तो उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि देखिए जब कान से बहुत भारी मात्रा में यदि पस आ रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ डालने की दवा सफिशियंट नहीं रहती है, खाने की भी दवाओं को दे करके संक्रमण को कम करना होता है। और एक और फैक्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये शायद मेरे कुछ अगर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स जो सुन रहे हो शायद उनके काम आए। कई बार मैं देखता हूँ कि जो मतलब प्रीवियस डॉक्टर्स या एडवाइज़र्स के पास पेशेंट होकर के आते हैं, उन्होंने दवा तो उनको ठीक ठाक दे रखी होती है जिन दवा से उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए होता है, बट ये रिलीफ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उसके कान को साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, जिस कारण से जो दवा होती है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुँच नहीं पाती है,
5: बीच में ही वो रुक जाती
3: है, वो आगे ही बीच में ही रुक जाती है और इसके वजह से वो दवा काम नहीं कर पाती है। तो मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूँगा कि कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको कान को जो उसमें पस है वो भरा हुआ है, पूरा कान का ब्लॉक है ईयर कैनाल, तो उसको अच्छे से साफ करें मल्टीपल बार, मल्टीपल कॉटन बड से या जैसे भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स क्लीन करने के बाद उसके बाद वो दवा डालें ताकि वो दवा एटलीस्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच सके।
5: मैं आपसे वापस से माफी चाहूंगी, हमारे साथ एक और लिसनर है।
3: जी
5: हेलो।
6: हेलो गुड इवनिंग मैम।
5: हेलो गुड इवनिंग जी, आपका नाम?
6: कमल लैन
5: बोल रहे हैं। ओके, तो हमारे साथ कमल लैन जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम क्लिनिक ज्ञान असली में। जी कमल लैन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, राहुल सर आपको सुन रहे हैं।
3: हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं कमल जी?
6: क्या नुकसान है
3: जी? कमल जी अभी तक की आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा से अपना प्रश्न पूछिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कमल नयन जी पूछा है, और ठीक है मैं आपसे चाहूंगा कि क्या इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है?
6: सर प्रश्न ये है कि जैसे कान में नहाते वक्त पानी चला जाता है तो बाद में दर्द होने लगता है।
3: ठीक है, मैं आपके दोनों प्रश्नों का बहुत विस्तार से जवाब देने जा रहा हूं, तो कृपया आप हमें ऑन एयर सुने ताकि और भी लिसनर्स को हम अच्छे से समझा सकें, क्योंकि आपका प्रश्न काफी अच्छा है। ठीक है, हमारे साथ एक लिसनर जुड़े थे और उन्होंने प्रश्न ये किया कि कान में हाइड्रोक्साइड करके एक केमिकल डालते हैं जिसमें डालने के बाद वो चावल की तरह उबलने लगता है, जी क्या ये सेफ होता है? और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि कान में पानी जाने के बाद दर्द होता है, क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो समझिए, जो ये ऑक्साइड करके जिस केमिकल का वो बता रहे थे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझिए कि जिन भी जगहों पे हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ब्लड हो गया, पस हो गया, ठीक है, और भी किसी तरह का बॉडी फ्लूइड अगर जमा हुआ है वहाँ पर इकट्ठा है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। कई बार डॉक्टर्स इसका प्रयोग करते हैं, कानों में भी करते हैं, कई बार अपने प्रैक्टिस के दौरान हमने भी किया है, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सपोज़ करिए कि आपके कान में 10 दिन से, हफ्ते भर से, 5 दिन से इन्फेक्शन है, कान बह भी रहा है, और वो इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे पर्दे तक पहुंच गया है, तो वो चूँकि क्या करता है कि उसको आप यूँ समझिए कि जिस तरह से एसिड जो होता है, तेज़ाब जो होता है, वो मैल को काट के निकालता है और सतह को या सरफेस को साफ कर देता है, लेकिन यदि कभी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती होगी तो आपने देखा होगा कि वो मैल को काटने के साथ साथ फर्श को भी काट देता है, फर्श को भी डैमेज कर देता है, या टाइल्स वगैरह जो भी लगी है उसको भी डैमेज कर देता है।
5: जी,
3: तो आप सेम स्थिति इसमें भी होती है कि यदि उसकी मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए या आप कान के अंदर की और कान के पर्दे की सही स्थिति का अंदाज़ा यदि ना लगा पाएँ तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घर पे यूज़ तो बिल्कुल ना करें। अगर कोई एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, वो यदि कर रहा है तो ठीक है, उसे करने दें, परंतु घर पे तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि 25-30 रुपए में, 40 रुपए में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शीशी आ जाती है और लोग यूजली इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न इनका, जो कान में नहाने के बाद पानी चला जाता है, इससे कैसे निपटें क्योंकि इसके बाद दर्द होने लगता है। देखिए, कान में नहाने के दौरान या नहाने के बाद पानी चला जाना ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और इसके बाद दर्द होना भी एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अब वो कई बार क्या होता है कि वो पानी फिर वापस जल्दी निकलता नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा है कि एक एक दो दो दिनों तक वो पानी उसी में रहता है, फिर वो सूख जाता है अपने आप से
5: और वो सुनाई नहीं पड़ता
3: है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जो हमारा कान का हिस्सा होता है जिसमें जो वैक्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी वहाँ टिकने नहीं देता है, वापस बाहर नहीं आने देता है, उसको अंदर ही एक जगह रोक करके रख देता है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, कान को साफ करने के लिए एक ईयरबड बनाना है आपको, क्योंकि जो बना बनाया ईयरबड आता है वो बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित नहीं होता है।
5: क्यूटिप
3: जी, तो एक कोई तीली लेकर के, और अगर आप माचिस की तीली ले रहे हैं तो जो फास्फोरस के अपोजिट साइड वाला, जिधर वो मसाला नहीं लगा होता है, उधर वाले साइड में रुई को लपेट करके एक बड्स बनाइए, और जो बड्स है वो खींच करके थोड़ा सा लंबा कर लीजिए ताकि वो तीली से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और फिर उसको गोल करके हाथों से नचा करके और उसको कानों में डाल करके और उसको गोल गोल यदि आप घुमाएंगे तो कॉटन में वो सारा पानी एब्जॉर्ब करके निकाल लेगा। लेकिन इसमें सारी प्रतिभा आपको बड्स को बनाने में दिखानी है, पहले एक तीली लेना है, तीली पे कॉटन को लपेट लेना है, और उसके बाद उस कॉटन को थोड़ा सा खींच लेना है ताकि वो तीली से थोड़ा सा दूर हो जाए, ताकि वो कहीं पर्दे में आपके जाके चुभे नहीं। ऐसे करके आप कानों को साफ कर सकते हैं और पानी साफ होने के बाद उसमें आपका दर्द वगैरह में भी राहत मिल जाएगा।
5: ऑलराइट, तो इतना कुछ करना है अगर आप चाहते हैं कि कानों से पानी निकल जाए।
3: जी बिल्कुल,
5: मेरे साथ भी होता है, स्पेशली तब जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं।
3: अक्सर ये सबके साथ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जैसे पानी जाता है वैसे ही वो वापस भी आ जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वो पानी चला तो जाता है बट वो वापस निकल नहीं पाता।
5: मैं तो सर ही टेढ़ा कर देती थी।
3: हाँ, सर टेढ़ा करने से भी आ जाता है, लेकिन जिनके कानों में वैक्सिंग ज़्यादा होती है तो वैक्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वहाँ पर पानी जो है वो अंदर ही ट्रैप कर देता है।
5: जी चलिए, तो भाई हमने ये बात करी आपसे अभी ईयर इन्फेक्शन के बारे में, और इतने सारे सवाल हमारे लिसनर की तरफ से ही आ चुके थे, तो अब हम बात करेंगे सर ये जो क्यूटिप होते हैं जिनको हम साफ यूज़ करते हैं ईयरवैक्स को साफ करने के लिए, और ईयरवैक्स को देखकर हर कोई मुंह बना लेता है कि यार ये कितना गंदा है, ये है वो है, बट ईयरवैक्स मुझे लगता है जहाँ तक हमारे कानों को बचाने का ही काम करता है।
3: बिल्कुल, देखिए जैसे जो नाक से जो पानी का रिसाव होता है या कान में जो ईयरवैक्स का रिसाव होता है, इनफैक्ट आपकी देखिए जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कोई भी चीज़, एक सिंगल जो पसीने की बूंद है, जो इंसान मलमूत्र का त्याग करता है, उस सभी चीज़ों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरह जो हमारे कान का पर्दा होता है वो कितना नाजुक होता है ये प्रकृति को और ईश्वर को बहुत अच्छी तरीके से पता था, तो इन्होंने इसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि वो कान जो है वो वैक्स को रिलीज़ करता रहे, और किसी प्रकार का यदि फॉरेन पार्टिकल, किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या धूल, इसके कोई भी कण यदि हमारे कान में प्रवेश करें तो वो पर्दे तक ना पहुंच करके हमारे ईयर कैनाल में ही, कान की जो नलिका होती है उसी में वो चिपक जाएँ और वो पर्दे को जा करके प्रभावित ना कर पाएँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे कान के पर्दे की सुरक्षा के लिए ही होती है, परंतु कुछ लोगों में वैक्स क्या होता है बहुत ज़्यादा निकलता है,
5: और इसीलिए मैंने सवाल यहाँ पे आपसे पूछना शुरू किया था
3: जी।
5: क्योंकि कई लोग घर पे साफ करने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि वो साफ नहीं करते, इवन ईयर ड्रम के और करीब भेज
3: देते हैं।
5: दूसरा, कितने टाइम के बाद आपको अपना ईयरवैक्स क्लीन करवाना इम्पॉर्टेंट होता है?
3: देखिए, आपको एटलीस्ट हर 3 महीने पे एक बार कान का रूटीन चेकअप कराना चाहिए कि इसमें ईयरवैक्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ईयरवैक्स सबको आते हैं, किसी को कम किसी को थोड़े ज़्यादा आते हैं। कभी ऐसे भी पेशेंट्स हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं, और ये वाले तो गांव और शहर दोनों में देखे हैं, जैसे वो कान बहने वाले पेशेंट तो शहरों में ज़्यादा नहीं देखे हैं, गाँव में ज़्यादा देखे हैं
5: जी।
3: बट ईयरवैक्स की वजह से ईयर कैनाल ब्लॉक होने वाले पेशेंट हमने शहरों में भी बहुत ज़्यादा देखे हैं।
5: ओके,
3: मतलब इतना आप समझिए कि एक काजू या बादाम जितना होता है उतना वैक्स कानों में से मैंने निकाला है।
5: ओह माय गॉड,
3: जो कि एक बार में पूरा निकल भी नहीं पाते हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में निकालना पड़ता है। पर ऐसे कंडीशन में भी हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको अंदर ही तोड़ करके और ज़्यादा मैश कर देगा।
5: अच्छा सर, मैंने बचपन में देखा था जब मैं मेला जाया करती थी तो कई लोग
7: द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य।
5: ओके, आई एम सो सॉरी
3: जी।
5: जब मैं मेला जाया करती थी
2: तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मेले के बीच में ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम आपके कानों को साफ कर दें
3: जी।
2: गांव में अक्सर मैंने देखा है कि लोग घूमने आते हैं और वो अजीब सा कोई तो गाना गाते हैं और कहते हैं कानों से जो भी कीड़ा वगैरह है वो निकाल देते हैं। एक तो चीज मुझे समझ में नहीं आई, इतने बड़े बड़े कीड़े कान में जा कैसे रहे हैं
3: जी।
2: दूसरी चीज, चलो चले भी गए तो वो गाने से बाहर कैसे आए। तीसरी चीज यहाँ पे सेफ्टी की बात आ जाती है
3: जी।
2: कि जो आपको ये बहुत इजीली अवेलेबल चीजें हैं या फिर आपको मेला में मिल रही है जो 10-15 रुपए में कहते हैं आपके कान साफ, क्या ये आपके लिए सेफ है?
3: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा मुझे सुन के हंसी भी आ रही है ये, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है मेले वगैरह में ऐसे मिल जाते हैं कान साफ करने।
2: और मुझे लगता है कि वो सेम चीज हर किसी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी बॉडी में एक ही चीज तो नहीं बार बार।
3: और मैं ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका हूँ।
2: क्या बात है
3: जी। तब मैं मेडिकल फील्ड में नहीं था और शायद मुझे ठीक से बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं है, बट मैं तब मैं एज ए स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और उस समय मैं जा रहा था तो मुझे लखनऊ में ऐसा एक आदमी मिला था।
2: ओके।
3: देखिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो मेले वगैरह में या किसी बड़ी जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, उनके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है, कान में एक छोटी सी डंडी लगी होती है और वो तीली वगैरह तरह तरह की तीलियाँ, बड़ी बड़ी तीलियाँ, छोटी तीलियाँ, लंबी तीलियाँ वो रहता है, तरह तरह की छोटी छोटी शीशियाँ भी रहती हैं उनके, जो छोटा सा बक्सा रहता है उनके पास।
2: मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था कुछ लोग गाना गाकर कान की सफाई कर रहे थे और मेरा सवाल था कि पॉसिबल कैसे हुआ,
3: तो इसी से पर्दा हटाते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि वो और यूजुअली ऐसा होता है, शायद जो लोग इस ट्रैप में फंसे हो वो लोग ये बता भी पाए उनको ऐसा अनुभव, वो पहले तो आपका कान साफ करने का 20-30 या 50 रुपए ऐसे छोटा अमाउंट चार्ज करेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि आपके कान में बहुत मोटा सा वैक्स फंसा हुआ है और अगर आप कहिए तो मैं एक दवा डाल के निकालूंगा, दवा डालनी पड़ेगी और यदि आप इसे नहीं निकलवाएंगे तो आप शहरों में जाएंगे, फिर डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन में 40-50 हज़ार रुपए आपके लगेंगे।
2: ऐसे डरा दिया जाता है ताकि आप उनसे काम करा लें और मुझे लगता है कि ये काम कराने के बाद आपके 40-50 हज़ार ज्यादा जा सकते हैं।
3: जी जी बिल्कुल। और फिर वो क्या करते हैं, वो लगभग 800-900 या 1000 रुपए के आसपास उसका चार्ज करते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते करते ये 400-500 रुपए में आपका कान साफ कर देते हैं। ऐसे में ये फिर आपके कान में कुछ एक दो बूंद किसी तरह का लिक्विड डालते हैं और उसके बाद थोड़ी देर उसमें कुछ भी हिलाने डुलाने के बाद, लकड़ी डालने के बाद, वो एक इतना मोटा सा, मतलब अगर आप समझिए तो आपकी जो कानी उंगली का आगे का सेगमेंट होता है, सबसे छोटा हिस्सा आगे का, उतना बड़ा वैक्स ये निकाल करके फिर आपको दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें फंसा हुआ था।
2: बट ये इतना बड़ा निकलता कैसे?
3: जी बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहूँगा। देखिए ऐसा सबके कान में नहीं होता है वैक्स, कुछ लोगों के कान में होता है, मैंने भी निकाला है और ऐसे पेशेंट तो मेरे पास बहुत आते हैं, कान के कुछ स्पेशलाइज्ड पेशेंट जैसे कान के पेशेंट्स हो गए और घुटने वगैरह के दर्द के पेशेंट हो गए, ऐसे पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं। आई डोंट नो कि वो मुझे इसका स्पेशलिस्ट समझते हैं या क्यों आते हैं, मुझे भी नहीं पता है, बट वो आते हैं। तो बेसिकली बहुत से लोगों के कानों में वैक्स होता है, उसको निकालते भी हैं धीरे धीरे तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में, कई बार पेशेंट को हमने दिखाया भी है, निकाल करके दिखाते हैं, लगभग इसमें 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तक कई बार टाइम लग जाता है निकालने में, पूरी तरह से साफ करने में। बट वो जो आपको निकाल के दिखाते हैं वो उनके पास एक्चुअली वैक्स रहता है, वो किसी तरह से इधर उधर उलझा करके आपको धीरे से निकाल करके दिखा देते हैं आपके कान के पास से और आपको लगता है कि ये मेरे कान से ही निकला हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है। उनके पास क्या दवाइयाँ होती हैं वो भी मुझे मालूम नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होती हैं। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं कराना चाहिए और कान खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं साफ़ करना चाहिए। यदि आपको उसमें लगता है कुछ तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वो उसको क्लीन कर देगा, हो सकता है उसके वो 100-200-500 रुपए चार्जेस लेगा, बट वो क्लीन कर देगा अच्छे से और वो ज़्यादा सुरक्षित, सेफ़ और अच्छा तरीका माना जाता है। तो वो चीज़ें जो आपको मेले में मिलते हैं वो बिल्कुल उनसे कान नहीं साफ़ कराना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेडिशन है, कुछ लोगों का रोज़ी रोटी उसके दम पे चल रही है, मैं उनकी रोज़ी रोटी पे प्रहार नहीं करना चाहता हूँ, बट थोड़ा बहुत साफ़ अगर आप करा भी ले रहे हैं तो उनसे वो जो केमिकल वगैरह डाल करके वो साफ़ करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, वो सेफ़ और सुरक्षित नहीं होता है।
2: बिल्कुल, और मैं ऐसी चीज़ों को अक्सर मना करती रहती हूँ, स्पेशली जो आपको मतलब आपके स्किन से जो चीज़ टच हो रही है, फिर चाहे वो आप टैटू बनवा रहे हो या मेहंदी लगवा रहे हो।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि केमिकल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इवन जो आप केमिकल यूज़ करते हो वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो सस्ता मिलता है,
5: कहाँ से आ रहा है, किस किस को इस्तेमाल किया गया है। जो टैटू लोग जाकर बनवा लेते हैं रोड साइड पर, मुझे नहीं पता वो सुई किस किस को लग चुकी है पहले।
3: अभी हाल में ही एक न्यूज़ स्प्रेड हुई है कि लगभग 60-70-80 लोगों को HIV हो गया है, और जब इसके पीछे जाँच की गई तो पता चला कि वो सभी लोगों ने एक मतलब शॉप से टैटू बनवाया था। मतलब कई 8-10 लोग मिले थे, फिर उस टैटू वाले को पकड़ा गया, फिर उसके यहाँ जितने लोग आए थे उन सभी लोगों को पकड़ा गया, और लगभग 70-80 लोग के आसपास। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले। तो इसके वजह से सोचिए HIV जैसी गंभीर बीमारियाँ भी संक्रमित हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकती हैं।
5: बस इसीलिए मैंने आपको रोका हुआ है, क्योंकि ये बात सच में है। आपको नहीं पता कि जो चीज़ें आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं वो कितनी सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स तो उनको कहीं ना कहीं साफ़ करके रखते हैं, एक सिरिंज को एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी एक नीडल को एक ही बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जो रोड साइड आपको मिल रही है वो अपना भी खर्चा बना रहे हैं, वो बचा भी रहे हैं, उसमें उनको बचाना भी है, उसमें आपकी भी चीज़ें करनी है। तो आपको नहीं पता वो चीज़ें कितनी बार इस्तेमाल हो चुकी हैं, किस किस को इस्तेमाल हो चुकी हैं, और जिसको इस्तेमाल हुई उसे कौन कौन सी बीमारी थी।
3: बिल्कुल।
5: फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं। आप अपने सवालों को तैयार रखिएगा चैट बॉक्स में, और हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी आशुनती और मेरे को होस्ट प्लस आपके हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
0: लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन

0: तरीके से संभव है अब, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
1: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
0: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
1: जी,
0: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
1: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
0: जी आज दीदी,
1: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
0: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
1: जी।
0: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
1: जी,
0: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
1: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
0: जी दीदी
1: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
0: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
1: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम क्लिनिक ज्ञान असली में। सेहत सही लाइफ के लिए बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को, और ऑफ कोर्स हम आपको बता दें भैया, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति, और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट प्लस आपके हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, और हम चलेंगे चैट बॉक्स में क्योंकि मैसेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं।
2: जी ज़रूर, तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिसनर्स ने हमें क्या भेजा है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं।
1: सनी पांडे जी लिख रहे हैं, डॉक्टर राहुल सर नमस्कार, आरजे मैम नमस्कार, हमारी तरफ से चाय।
2: बहुत बहुत नमस्कार आपको सनी पांडे जी को, हार्दिक स्वागत भी करते हैं इनका।
1: और शाका लाका बुम बुम वाली पेन होती तो मैं बता के इस चाय को निकाल चुकी होती।
2: बिल्कुल जरूर।
1: एंड सविता जी लिख रही हैं कि मैं भी आ गई हूँ, नमस्ते राहुल सर, उन्नति मैम नमस्ते टू यू, कैसी हैं आप?
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है इनका।
1: एंड सर, घंटी बजना, हॉर्न बजना, इसका क्या मतलब है? कान में घंटी क्यों बजती
2: जी, है? जी जी देखिए, एक बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, नॉर्मली कुछ मिस सिग्नल्स की वजह से, क्योंकि हमारे हेयर्स में कुछ सिलिया होते हैं, वो सिलिया जो है मतलब छोटे छोटे बालों की तरह संरचना होती है, और वही वो सारे ऑडियो सिग्नल्स पहुंचाते हैं, तो समटाइम्स उसमें सिग्नल्स में लैग करने की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल है, बट कभी कभार हो तो। पर अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कान में घंटी या सीटी बजना ऐसा होता है, इसके साथ चक्कर जैसी या कोई समस्या होती है, तो ये समस्या आपकी वर्टिगो कहलाती है। ये वर्टिगो नाम की एक बीमारी होती है, और अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए, और वो इसकी कुछ इलाज और कुछ दवाइयाँ चलाएँगे जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
1: सर, हम हेडफोन लगाकर गाने सुनते थे, उसकी वजह से मुझे सुनाई कम देने लगा है।
2: एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, चूँकि ये भी एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि एक दिन में मुझे नहीं लगता कि कवर कर सकते हैं, बट आपको कम समय में जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से समझिए कि जो जितने भी इन ईयर वाले ईयरफोन्स एंड ईयरबड्स होते हैं, इन ईयर वाले मतलब जो आपके कान के अंदर घुसते हैं, वो जिनमें रबड़ लगा होता है या जो छोटे प्लास्टिक के होते हैं जो आप अपने कानों के अंदर लगाते हैं, इनमें बहुत हाई साउंड, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे साउंड सुनना और लंबे समय तक सुनना, ये सेफ नहीं होता है। इससे धीरे धीरे आपका परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब कान की सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है, जो कि परमानेंट हो, जिसको दवा वगैरह से या ऑपरेशन सर्जरी किसी भी चीज़ से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए कानों की सुरक्षा करें, और कभी भी आप देखेंगे कि जिन भी जगहों पे व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से, जहाँ पर भी ये ईयरफोन, हेडफोन, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग यूज़ करते हैं वो ईयरफोन ना यूज़ करके बड़े वाले हेडफोन्स यूज़ करते हैं, जिसको ओवर हेड ईयरफोन्स बोलते हैं। एक होता है इन ईयर, एक होता है ओवर ईयर, ओवर हेड। तो जो बड़े वाले हेडफोन्स होते हैं, जिनको लंबे समय तक, मान लीजिए कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं आप, अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो ओवर हेड वाले ईयरफोन्स यूज़ करें, जिनको हेडफोन्स कहते हैं, क्योंकि वो उसके अपेक्षाकृत कम नुकसान करते हैं, पर उनको भी उसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो धीमा करके, स्लो करके आपको यूज़ करना है। हाई साउंड पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे और तेज़ आवाज़ में सुनने पर कानों का पर्दा और जो सिग्नल पहुंचाने वाला सिलिया है वो ख़राब होता है, और वो परमानेंटली हियरिंग लॉस कर देता है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अपना ईयरफोन किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, और दूसरे का ईयरफोन खुद भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे कानों में एक यूनिक बैक्टीरिया बैलेंस होता है, मतलब हमारे सबके कानों में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जो है वहाँ पर पल रहे होते हैं, जो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट यदि आप जब किसी दूसरे के कानों का ईयरबड्स यूज़ करते हैं या अपना ईयरबड किसी और को देते हैं फिर वापस यूज़ करते हैं उसको, तो इससे हमारे कानों का यूनिक बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर कानों में इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: जी, और इसके बाद है, ओके उन्नति मैम सुन कम पाती हैं सविता जी, ऐसा उन्होंने लिखा है। आई थिंक इसका जवाब सविता जी ही दे पाएंगी। एंड उसके बाद हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड मेरे सवालों पर काफ़ी हंसी आई है हमारी सविता जी को जी। उस्मान खान हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं शुभ संध्या जी मैम, शुभ संध्या आपको भी। एंड इसके बाद है, डॉक्टर साहब की जानकारी अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही बोल दीजिए।
2: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान जी का, और इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और पहली बार शायद हम इनसे जुड़ रहे हैं, इनका मैसेज हम पहली बार अपने शो में देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे
1: जी,
2: साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया एंड शुभ संध्या। इसके बाद लिखा है मेले में ऐसा ही होता है मैम, एक्चुअली मैंने काफी बार देखा
2: जी,
1: है
2: जी, बिल्कुल, तो इन मेले वाले स्कैम से बच के रहना चाहिए।
1: अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद सर मैम एंड मैम जय हिंद टू यू एंड साथ ही लिखा है सर ज्यादा चाय पीने से क्या होता है नुकसान या फायदा?
2: जी एक्चुअली ये चाय और निकोटीन वगैरह को लेकर के मुझे लग रहा है किसी प्रकार की मुहिम चला रहे हैं अविनाश शुक्ला जी, और ठीक है ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है एक सामाजिक कार्य, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। वो सवाल भी ये पूछते हैं, हमारे बीच रखते हैं, जिसका शायद इन्हें व्यक्तिगत कोई यूज़ ना होता हो। चाय पीना ये कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और विशेषकर जो दूध और चीनी पड़ी हुई वाली चाय होती है ये तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। पीने वाले पी सकते हैं बट कम पिए, सीमित मात्रा में पिए, दिन में एक ही दो बार चाय पिए, कम मीठी चाय पिए, और चाय को पीने से बचें, खाली पेट चाय पीने से तो ज़रूर बचें।
1: इसके अलावा है महेंद्र जी का मैसेज, मुझे सुनते हुए ईयरफोन से 16 साल हो गए हैं लेकिन वैसा ही सुनाई दे रहा है जैसा बाकी लोगों को, लेकिन मैं 40% पर सुनता हूँ, 15 से 16 घंटे लगातार सुनता हूँ।
2: बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बात यहाँ पर मेंशन की है महेंद्र जी ने, और काफ़ी गंभीर व्यक्ति लगते हैं महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका राजस्थान की धरती से। और देखिए इन्होंने एक बात भी कही कि 40% वॉल्यूम पर सुनता हूँ, तो सबसे पहले तो इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि ये लंबे समय तक ईयरफोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, बट उसको काफ़ी धीमी ध्वनि में 40% उसकी ध्वनि में सुनते हैं, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल हम आपको, और इन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे सुनाई देता था वैसे अभी सुनाई देता है और काफ़ी लंबे समय से भी सुन रहे हैं ये, बट मैं आपको ये बताऊँगा कि 15-16 घंटे अगर आप ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय के लिए 10-20 मिनट के लिए अपने कानों को रिलैक्स दिया करें, और बाकी ठीक है, अगर आप कम ध्वनि में सुनते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, अच्छी बात है। ज्यादा ध्वनि में सुनने वालों को ज्यादा समस्या होती है और जल्दी समस्या होती है।
1: ओके, तो भैया आपको पता चल गया है इसके आगे क्या नुकसान हो सकता है, आई थिंक
2: जी
1: यही सवाल भी था इनका,
2: इनका सवाल भी यही था कि अगर आप ऐसे कम ध्वनि पे सुनते हैं तो आपको कम से कम नुकसान होने की संभावनाएं हैं, और बस आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अपना ईयरफोन किसी और को शेयर ना करें, किसी और का ईयरफोन खुद ना यूज़ करें, और जो ध्वनि है उसकी सीमा जो है 40% ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल, फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो आप रखिएगा अपना ख्याल। ईयर इन्फेक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से इस टॉपिक पे वापस आऊँगी आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ, आपके अपने मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
3: आज कितना नीक लागत है, आंगनवा में सब आई हैं, देखो हरा हरा कपड़ा पहने हैं, मेहंदी लाग है सबके, हाँ क्या दुलारी कस लागत
4: बहुत है? नीक लागत है। राम राम बहनी,
5: राम राम चाची,
4: राम राम राम राम, राम राम राम राम,
3: बहुत अच्छा नीक लागत है आज हमारे।
4: आज बहुत भेड़िया है तोरे चटपटो घर में।
3: हाँ नहीं, सब आ जाते हैं एकदम, घर जैसे भर जाते हैं।
4: हाँ एक तो चलता है इसमें मौसम, वो तो वहाँ है
3: चला
4: था। सावन लागी गाओ, देखो जगह देखो हर तरफ हरियाली हरियाली है।
3: हाँ हम गए रहा ना, वो हाँ। मंदिर हो दुखहरण नाथ मंदिर हो
4: गोणा में है जोन
3: गोणा, वहाँ हाँ। गई रहा ना पहले सोमवार का।
4: टहरे गये रहा का?
3: हाँ टहरे नहीं,
4: गला चढ़ा
3: है। हाँ परछे,
4: अच्छा परछे गये रहा
3: तो बता। अच्छा। दे तू का हाँ। तो कतना भीड़, कतना मनई, कतना मेहरारू, कुछो पूछो ना दुलारी।
4: हाँ
3: अभी हमें ना हो आए दिन सब। हाँ हम कोई भोले बाबा होई, हमरे ऊपर जो है लोटा भर के पानी डाल दिन।
4: जाने तनी इतना भेड़िया होत है कि भेड़िया हम लोग ये ना ही देखते हैं कि शंकर जी पे पनिया चढ़ाते कि मनैया न पा।
3: ओ हमार नीक नीक साड़ी
4: लियो, हरियर की पहन के रहा, हरियर की,
3: हरियर की पहन के गए रहा।
4: जाओ गंधवा आए जा।
3: अब बताओ कैका का समझाए, अस पूजा होत है जेके ऊपर चढ़ावे है उसके ऊपर चढ़ाओ तो हमरे ऊपर चढ़ाए दियो।
4: वो देखा तो ना ही है ना।
3: और हम बहनी लड़ाका तो हो ही ना कि हम वह कर कर कर कर करे लगी।
5: हाँ चाची,
3: हमें लड़क तो रहा नहीं लेकिन बहुत हमें दृश्य लगा। फिर हम कहा कि भोले बाबा के जगह पे आए हैं ना, हमका रिस नहीं करे चाहिए, क्या दुलारी?
4: हाँ ठीक करू भाई, शंकर जी के थनवा पहुँच के रिस।
3: हम अपन गुस्सा पी गए जैसे भोले बाबा बीस पी
4: गुस्सा
3: पिया, ऐसे गुस्सा पिया हम नहीं बोला। हाँ हम कहा कि ये जब 20 पी गए तो हिया तो कोनो कुछ ना डारिन पनिया डारिन, अब हवा में निकल अब साड़ी सूख जाए। हाँ यह सोच के गुस्सा पी गए और कुछ नहीं बोले। पर हम यह कही थे कि भाई जाओ जेका नहुआवे के लिए गई हो, परछे के लिए गई हो, ओके ऊपर पानी डालो।
6: पूरे कहा तू वही कोनो गलत नहीं कहा।
3: हाँ तब तो फल मिली।
5: हाँ चाची
4: तू है ना, कोनो फल मिली थे उनका
3: तू गाड़ी पे है और का हमें ना होइए तो तू हम तो दुई गाड़ी दे मने हम दे और दे सामने तो दुई तो दे दिया।
4: ठीक करियो उनका समझाओ कि जाओ हुआ के मुड़ा आप चढ़ाओ खोपड़िया आप।
3: यहाँ सब करत है अत्ता मतलब जल्दियान रहत है कि कस बस जब चढ़ाए दे हमका फल मिल जाए, बिटी आई तो कहीं हमका दुल्हा अच्छा मिल जाए, लड़कियों आए तो कहीं हमका बिटिनिया अच्छी मिल जाए, और बुढ़ुआ कहीं कि हमार पतोहिया हमार सेवा करे, कुछ ना कुछ सब मनोकामना ले के आवत है।
4: हाँ तो हाँ। रहते है बहनी
3: तो वह कहते कि मन से चढ़ाओ तो भोले बाबा चढ़ाओ।
4: हाँ। एक बतिया और जान लो
3: का
4: जैसे इनका नाव है भोले बाबा वैसे ये भोले हैं, तनिक हम खुश हो जाए, एक लोटा जल चढ़ाई दो खुश हो गए, एक सोमवार भूखी रह जाओ दूसरे सोमवार तुम्हार ब्याह हो जाए। हाँ पूरा कही थे बहनी।
7: अच्छा ये बताओ बहनी के रहा थे
8: सोमवार का बाद? हम नहीं रहे थे चाची।
4: तू कहा नहीं रहा थी?
8: हम नहीं रहे थे।
4: तुम्हारा नाम लक्ष्मिया है कि कजरिया?
8: कजरिया।
4: अच्छा कजरिया नाम तो हम लक्ष्मी लक्ष्मी का है।
7: काजल हो।
4: अच्छा बहनी हम बहनी बिसर जाई थे।
7: तो देखो बहनी आप लोग जो है बढ़िया बढ़िया दूल्हा पाए जाओ, हमारी यही मनोकामना है।
8: हाँ मोहिनी रहा थी चाची,
7: तो मोहिनी के जल्दी मिल जाए दुल्हावा।
4: दुल्हावा मिली की मुँह ले आई। हाँ बहुत नीक दुल्हा मिली जान लो, शंकर जी का ये खुश करे ही।
8: हाँ बहुत।
7: तो दिखाओ तो बहनी अपन अपन मेहंदी दिखाओ सबे।
9: अरे चूड़ी भी देखो
7: ये बहनी बहुत बढ़िया नीक
4: कलर की पहने हो बहनी।
8: हां चाची
7: हमरे घर में एक जनी आई कल आई हमरे लिए हरी हरी वो साड़ी लेके आई है, चूड़ियां लेके आई है, पहनाई ना कर आई के हमका बहुत नीक लगा। हम कहा कि देखो हमार तुम्हें बहन बहन है नहीं ऐसे सब आई के हमका दई
8: नाखूनियो लगाए।
7: हरी हरी ना देखो नेल पॉलिश लगाए है, नेल पॉलिश हरी हरी
4: नेल पॉलिश लगाई है।
8: हां नाखूनी
7: लगाए
4: पूरा हरियाली इनके दही अब देखो।
8: हाँ पूरा हरियाली छाए
4: और नीको लागते चटपटो।
7: आज अब तो है सावन महीना, चारों तरफ देख लो सब हरियाली छाई है।
8: हाँ
7: कितना नीक लागत है, हर पूरा जौन मैदान मैदान हुआ ऐसे पड़ा रहा था, देखो माँ इतना बड़ा बड़ा घास लगा
9: हरा
7: हरा हरा पूरा, कितना नीक लागत है। अब क्या कहा जाता है वातावरण
4: वातावरण।
7: हाँ
4: वातावरण का होते बहनी
8: वातावरण
7: माने चारों तरफ हरियाली है, हरा हरा वातावरण है। तो समझ ना पाई हो तो हिंदी में नहीं पढ़ी ना अंग्रेजी पढ़ी, तो पढ़ी बस खाली देहाती
4: है। हमें देहाती ना कहो नहीं जान ही लो चटपटाओ।
7: देखो है वातावरण नहीं जान पा रहे, हम इतना समझाई था हिंदी में कही थे।
4: तू कही हुए की वातावरण ई वातावरण का होता है?
7: वातावरण नहीं को वातावरण कही थे, सीख लो तू वातावरण।
4: वातावरण
8: वातावरण
7: तो टांग जो तोड़ दे हो वातावरण की राह दे तू ना बोलो
4: वातावरण
8: वातावरण हुए चाची।
4: ई का दिन का
7: बात नहीं तो अंग्रेजी में बताए दो वातावरण, तनिक इनका अंग्रेजी बताए दो वातावरण
4: का होता बहनी
7: कौनो बता दो
4: अंग्रेजी में क्या होता वातावरण।
7: हमको भैया सिखाई ना हमें आद है कहीं ना एटमॉस्फियर, कहीं ना एटमॉस्फियर
4: एटमॉस्फियर।
7: हाँ ये बताए ना अपने भैया में आद है
4: यही क्या वातावरण कहा जाता है?
7: वातावरण कहा जाता है
4: ये क्या एटमॉस्फियर फियर एटमॉस्फियर
7: तब हरे का एटमॉस्फियर है इस समय।
4: हाँ,
7: अब तनिक भाई चहलाओ कीचर है
8: वो तनिक
7: हाँ नहीं नीक लागत है। हाँ। कि भाई गाँव की सड़किया अड़किया तो देखो कौन हाल होन जात है,
4: बहुत बुरा हाल है।
7: अब हम का जब खड़ा करियो तो हम खड़े होके सब बनवा रुडिया उडिया सब ठीक करा दे चका चका
4: है बहनी।
8: हाँ चाची
4: वो कहाँ गई कजरिया इनका वो जो पीछे अरे का कहा जाते दादा का बई बई बाइडर बाइनर बनवायो इनके फोटो वोटो ले गए हो बाइनर वा इनके बनेगा
8: बनेगा
4: तो इनके प्रैक्टिस कराए दो एक बार
8: जी
4: हां प्रैक्टिस
7: बोले बोले की प्रैक्टिस हो जाए और काम वैसे तो बोल ले थे लेकिन तनी तनी बहनी बताए दियो ना तो हम निक निक बोला प्रैक्टिस में
4: इनका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
8: बहुत
4: नहीं ये उल्टे पुल्टा बोली है कुछ।
8: हाँ चाची सही
4: कहा और वहीं में अंग्रेजी और तूर फार लगाए दे हैं।
7: हाँ अंग्रेजी तो हम बोल ले थे कहे नहीं बोल पाए थे।
4: हाँ बोला थी हाँ लेकिन तूर फार के बोला
7: थी हमार भैया अरमिका में बैठे हैं अगर हम नहीं बोल पाए अंग्रेजी तो जान लो कौनो ये दुनिया बोल ना पाई।
4: ये बाप रे बाप
7: हाँ बताए दिया
4: इनका भैया आर्मी कम बैठा है आए और ये ही अगर अंग्रेजिया ना बोल पाई तो कोनो दुनिया में ना बोल
7: ना बोल पाई।
4: अतना बड़ा बहनी ये बम फेंकी नहीं आए मुड़वा उड़वा दागी गा हमारा और का दिया खाओ तनी इनके बहनी।
7: अच्छा चलो ये सब छोड़ो।
4: हाँ
7: ये सब ठिठोली हंसी तो सावन में होता है। देखो जहाँ चार मेहरारू बैठे
4: हाँ
7: ये सब तो होबे करी
4: और ना होई तो कैसे पता लागी
7: पता
4: कि चार मेहरारू बैठे और का।
7: तो हम कहे थे कि बहनी लोग आई हैं कौनो एक बढ़िया सा जौन है सौनई गाओ।
8: हाँ चाची गाओ।
4: हाँ
8: गाओ चाची सावन लागे
4: होइन का चाही सावन नहीं गावे बहनी या आद है तोरे कोनो सौना
7: नहीं तू सुनाई दो तारे हम याद करी थे।
4: अच्छा तू याद कर रहे हो जबली का हम ये कठाओ हमरे ए गनवा तोरे याद है चटपटाओ जोन गाओ
7: तो अरे हमका तो इस समय बहुत याद है तो रेडुआ खोले रही थे।
4: हाँ।
7: और हम सुना करी थे कि सब सावन के आवत है ना सब बतावत है कि अब सावन लाग गा है।
4: हम तो वहाँ सुनी थी बहनी जो इनके सब पढ़ा थी कलजवा मा नारी स्थली
8: गान, गान, गान स्थली
4: वही नारी गान स्थली के जो रडंगवा होता ना।
8: हाँ।
4: वह खोली थे वही आठ लिखाओ आओ नाउ लिखाओ
7: अब बिंदी
4: लगाई दो और छा धाई दो वहाँ हम खोल के और वहाँ हम सीखे ने एक तो सुनाई थे तू है और मैंने जिनी कोनो ही किरण पांडे वह गावत ही अवधी गनवा उन्हें सीखे ने अब हमारे संगरिया गाव सब है। पुरवाई ले बाओ।
8: हाँ पुरवाई ले बाओ।
4: आस्था बहनी तू पुरवाई बाओ तो चलो सब पुरवाई ली आठ ढोलिया ले आऊ चटपटाओ।
7: हाँ अब तो रोजा हमें बोली मारत रही हूँ।
4: हाँ।
7: अब देखो कौन मेरे हम ढोरक मगाए
4: नवा खरीद
7: बतायो ना कौन को ना बतायो एकदम सांस ना लियो।
4: हाँ तू लोग पहनी क्यों ना
8: कहना
7: चाची घरे आ गई है
4: मांगनी चला जाते बहनी
8: मांग के ले जाए
7: फोड़ रही है
4: इनका ये ढोलिया फूट ही गए बहनी
7: पूरा बिना बताओ जाए
4: फूट गए और चदरों में लायक बांध वैसे दई गए और ये बुड़बक ही ये खोल के देखबो ना यकीन कि हमार नीक है कि बेकार है
7: दई गए बताओ। अच्छा भोले बाबा उनका दिखे तू गा।
8: हाँ, हाँ, जाए, जाए।
4: भोलेनाथ बाबा की
8: जय
4: दुखनाथ बाबा की
8: जय
4: और एक जने कहा है मजन
7: अरे सत्य नारायण बाबा की जय
4: और शंकर जी के जो हुआ है जहाँ जाए कहात रहू कली है
7: परथबीनाथ
4: परथबीनाथ बाबा की
8: जय।

0: यमहन ये बतावा गा है कि जैसे एक जनी सखी ही, जैसे मान लो हमारे सखी चटपटो ही आए, अब इनके मर्द मने लौटन भैया, वह चला गई विदेश का कमाए, अब ये बेचारो घर में बैठी ही, अब उनका आदि आवत ही का करें, तब यही गवनैया देखो
1: अगवा तो बोल लो, फिर हमहू बोलब ना तब जान लियो तो कि का हम कहब,
0: ये बहनी हम का गलत कहे ना कुछ गलत कहे ना है
2: ये कहागा
1: तो ये काहे कहा तू कि परदेश जई है, काहे जई है, हम जाए तब ना
0: बहनी,
1: हमने खेत हमने द्वार हमने घर सब हमरे है।
0: अरे सुनी लो, हम एक तो उद्यान है दाहरण दाहरण दिन जान है, वह दाहरण दिन है कि मानो ये हमारी सखी हो चली ये घर में रहा थी और इनके मर्द चला गए पर दिया
1: तो पारे जी का कहे नहीं कहो तो जीजू हमार जीजू चले जाए तो तू का करी
0: हो ये गवनैया क्या गावत है, हम गाई थे कि तू गावत थी तो हम अपन सखिए तो बताई बे एकदम बुड़बक होन जाती जा चटपटो तू है खड़ा का करी थी प्रधानिक लगे तू बिलान जा तू आए बिलान चाहती है प्रधानी में खड़ी हो गई तभी निकल का हुई बहनी करिए प्रधानी जीत गई
1: हमार उदाहरण दे दीन अपन कहे नहीं दियो
0: तो हमार सखी हम ही बन जाई हो हमार सखी के बन जाई तो हो
2: तो बनिए
0: जाओ चटपटो अगवा सुनो
2: सुना
0: बारी।

0: अब देखो हमार सखी कहा थी कि हम अकेले ना रह पाई भाई, और जो घरवा ना आई बो तो फसरी लगा चटपटो तू ना लगायो
1: लगायो आपका प्रधान बने
2: सुनो। हाँ हमका तो प्रधानी लड़े खड़े हो लेकिन हम फसरी ना लगाए, पर ये जान लियो कि कोई फसरी लगाई ले हमसे प्रसन्नताप राखी वो फसरी लगाई ली।
0: तो क्या लगाई बहनी तू हमारी कहा तू कहा
1: आप ही सुनावे थी
0: ये खेलो तनी ये चटपटो हमार सखी हुए और कसकई हम मैं देखो कहा कहा थी कि हम फसरी लगाई
3: फसरी लगाई ले
0: हम फसरी हम ना लगाई बे चटपटाओ हम फसरी ना लगाई बे का जान लिए
2: नहीं भाई देखो ऐसी तो मजाक की बात है।
0: हाँ
2: है, हम तो कबो नहीं चाहते कि हमार जो सखी हो फसरी लगा या फसरी हम फसरी लगा
0: वही ना लगावे भजदी सबके मर्दे आए जाए
2: बस बस वह बात
0: काहे तो, कोई फसरी लगाए मर जाए आए
2: ना ही कौनो नहीं कौनो लगाए हमें लगाए ना देवी का टंगिया पकड़ के घसीट
0: घसीट लेबे और का काहे को कोई फसरी लगाए रहे ऐसे में नीक सुख रहे बहनी है कि नहीं। और मर्दे कमाए तो जाबे कर ही कमाई है ना लई है तो खाव का हम
1: तब
0: है कि नहीं बहनी।
1: हाँ चाची
0: हाँ
2: वो समझ लो कि दुलारी एक हमें गाना याद आएगा है बहुत हमका नीक लागत है कि अपने घर भी रोटी है अस है ना गाना एक वो एक ठो गावत है पंकज उहास
0: वो कहा थी वो चिट्ठी आई है
2: रोटियों अपने घर है
0: हमका आधा है गौ दूल्हे ने गाय ली
2: गाय दो गाय दो बहुत लागत है
0: जे भैया जे बहिनी जे परदेश बैठी हो देखे तो करियज निकर जा है कि नहीं अपन घर
2: द्वारवा कोई हो चाहे बहन हो चाहे बहिनी
0: हां घर द्वारवा छोड़ के कोई जावा चाहत है सबका अपने घर में नीक लागत है अपने परिवार वर्ग बिचम।
2: हां तो सुनाई दो सुनिए ना बहन
0: दो लाइन याद आएगा
2: नीक लाइन बहुत

0: बहुत निक लागत सुनी सर तो हमरे आस बहेला।
1: हाँ पूरा एक आस बहेला पूरा। अब देखो इतना त्योहार आवत है बहुत मनई ऐसे हुए हैं जो परदेश बैठा हुए
0: बैठा जाए दो हमरे जौन सैनिक लोग हैं।
1: हाँ सैनिकन का देख लो
0: देखो बॉर्डर पर लगे रहा था। हाँ, कि दुश्मन ना आए जा
1: ना जा। हम सब यहाँ गुड़िया मनाई रखौंदी मनाई था सावन मनाई था
0: छुट्टी नहीं मिला
1: अब उन सबका बताओ कौनो त्योहार नहीं
2: कौनो त्योहार छुट्टी नहीं मिला
1: वो अपने वहाँ अपन नौकरी करते बहन सियाना है तो सियाना
0: है कि उन्हें अपन घर आ दावत हुई है बहन भाई आ
1: हाँ,
0: दावत
1: और अब देखो भाई यही बचवा में है आई उहा आई जाई
2: गुड़िया
1: आई जाई जो 15 अगस्त
0: वाला है 15 अगस्त आवे वाला है ना
1: बहन 15 अगस्त वो आई जाई तभी एक ठो वहाँ गाय दिन जाई अब
2: हाँ
1: देश गीतियों गाय जाई अब
0: नहीं तो देखो ये त्योहार जो है हमारा देश जब आजाद भा रहा है तब का तब के गाना है बहुत नीक नीक गाना है पर आजकल कोनो गवते नहीं है
1: ना ही गवते देश गीतिया सब भुलाए जाते खाली बस 15 अगस्त कहीं कहूँ बाजत सुनाई पड़ा
0: बस बस
1: वो कह रहे दूसरे दिन से बंद
0: ये गनवा रोजे बाजे
1: बहनी हाँ। सबका याद रहे
0: बैठे हैं हम आप लोगों के बीच में कही थे कि अस गाना जो है रोजे बजावा जाए
1: रोजे बजावे मने इनका बच्चन का ये जान वो जान पावे हमारे देश कैसे आजाद भा रहा है कितना सैनिक लोग कैसे जान दिहिन्ना कैसे का भवा रहा ये सबका मालूम हो चाहिए
0: बिल्कुल बहनी तो लोग सुना करो जो देश भक्ति गाना होत है
1: हाँ वो कैसे भक्ति गाना होत है एक सुना करो
0: भगवान की भक्ति से पहले देश की भक्ति है जहाँ हम पैदा हुए हाँ, हाँ, हाँ। जन्म लिया है सबसे बढ़िया
1: और का
0: वही भक्ति करे चाहिए
1: वही भक्ति भाई देखो हम लोग आए नहीं यहाँ अपने पैदा भयन देश में तो हमारे सबके अपने देशों के लिए तो कोनो जिम्मेदारी है
0: सबके जिम्मेदारी है
1: हम जब जन्म लिए नहीं यही का कहा जाता है जन्म जहाँ का हमने खाया अन्न जहाँ का हमने पाया वो है प्यारा देश हमारा इसकी रक्षा कौन करेगा हम करेंगे
0: बहुत आज याद दिला दियो बचपने की स्कूला
1: हाँ सही सही कहा तू बहनी याद है
0: लोग स्कूल में जाए रहे ऐसे चिल्लाए गए देश की रक्षा कौन करेगा
3: हम करेंगे
1: तो बहनी ये सब चीज याद रखे चाहिए हमेशा है ना
0: और का तू लोग उनका आवत है कौन देशभक्ति गीत तो लोग तो गोबर गणेश हुई गई हो हाँ?
1: तुम्हारे कॉलेज में तो इतना नीक नीक सिखावा
0: कॉलेज में तो लोग पढ़ाती हो
1: हाँ
0: और वहाँ से गनवा सीख
1: कौन कॉलेज में नारी स्थली
2: हाँ, नारी ज्ञान स्थली
0: वहाँ से सीख क्या करो बहनी
1: तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत नीक है वहाँ बहुत चीज सिखावा जाते बहनी
0: सबका आवत है पर खिसियात ही है और कोनो बात
1: तो जब बिटिया पढ़ाती तो स्मार्ट हो जाती खिसियात नहीं तो लोग स्मार्ट नहीं हो
2: स्मार्ट
1: वही वही स्मार्ट वही तब तू सब कहे कि खिसियात हूँ बहनी चलो गाय दो एक ठो गौ नहीं करो आवत है
0: हम कहावत है एक ठो जो हम मास्टर साहब सुनावत नहीं रहे कितना नीक गावत रहे मास्टर साहब
1: गाय दो
0: तो वहाँ
1: गाय दो गाय दो और देश गीत गाय दो
0: हाँ देश गीत है ये
1: हाँ
0: वो हम सिखावत रहे मास्टर साहब को याद है ना
1: हाँ मास्टर साहब आवत है हाँ याद
0: बुड़ रहे जो
1: हाँ हाँ हाँ
0: परवा नहीं रहे
1: झंडे वाले के खड़ा हो जाता है
0: हाँ नीक गावत रहे
1: हाँ
0: वो गान हमका याद है
1: सुनाई दो आज तू
0: सुनाई दी थे थोड़ी बहुत आवत है ज्यादा नहीं आवत
1: चलो जितनी याद है
0: अब देखो कितना टाइम हुईगा ना
1: हाँ भाई तो
0: हम लोगों का कितना टाइम हुईगा
1: हाँ
0: लेकिन अब याद है निक निक होत रहा है गाना और सब
1: चटपटो पहले मने ही जो राहत रहे
0: आद करा
1: बहुत याद राहत राहत रहा
0: आद करा दे भाई सब बच्चेवन का पढ़ावत रहा की आज तक हम भूलबे नहीं करें
1: हाँ अब नहीं ऐसे अब बच्चेवन का आज पढ़ाओ जूते पूछो जूते
0: पढ़ाते नहीं सब नहीं पढ़ावत है
1: ये सब तो कौनो नहीं पढ़ावत है
0: हम लोगों के टाइम ही सब पढ़ावा जा रहा है
1: ये तो बतिया पूरे
0: कौनो नहीं पढ़ावत है ये जनता अपने नहीं जानत है तो लड़कवन का काम
1: अपने नहीं जानत हुई कैसे देशवा आजाद भा
0: वो ध्यान करके हमार गनवा सुनी
1: हाँ चलो सुनाओ

0: कितना याद है बड़ा नहीं, बस यही एक दो लाइन ऐसे बस याद है दिमाग हुआ है तो
1: हाँ सही बात
0: हाँ तो चलो भाई अब हम जो कुछ बनाए है ना अब बहनी लोग आई
2: ये दो लेनिया और हम गाय दे हमारे दुई लेनिया याद आवत जो हमारे मटर सुनाई ना नहीं दूसर का
0: मटर सुनावत रहे
2: ए वो कैसे रहा तू हूं गावत तू हूं जाना तू चटपटो जहां

0: अपने देश का सलूट है, सलाम है।
1: हाँ
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखो जय लिखा ही गाना, जे गावा ही गाना। हाँ। आज देखो कितना पुराना ये सब गाना हम लोग गाए थे और तुम लोग गई हो।
2: हाँ।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चला आवत।
0: हाँ। तो जब सीखी हो तब गई हो,
1: गई हो।
0: तब तोरे लड़का ने बाले हुई है, वही गई है, सीखी है।
1: नहीं दुलारी।
0: हाँ।
1: जब ये सब गाना गई है तो इनके अंदर अपने से भक्ति भाव जागर।
0: हाँ, उनका
1: हाँ जागी
0: बिल्कुल। तो जागी।
1: हाँ बहन जी, आप लोग सीखो स्कूल में और गावा करो हमरे साथ बैठ कर। हाँ। चौपाल में हमरे।
2: ठीक है। हाँ।
1: तो चलो भाई, कुछ बना के रखा है आप लोगों के लिए, तो एक छोटा सा ब्रेक ले ली थे। अब ब्रेक लेके तू लोग का बढ़िया सावन का बस खवाई तक का बना ना। अबे बताइबे ना,
0: आज बनी वो है परपराइज।
1: सिर पराइज
0: हो
1: ना ही, सिर पराइज होता है,
0: सिर पराइज।
1: हाँ चलो बाद में बहस कर बे। तू तो बस तू टंगिया तोड़ दो हिंदियों की अंग्रेजियों की, हम तो बहुत परेशान।
0: तब जो हम पढ़े हैं वो है तो कहा बे चटपटाओ तू। हम कहीं पर आई
1: जाए तो ददई बस शांत हुई जाओ, कुछ लाए बनाए हैं खा।
0: चलो चलो चलो चलो बहनी चलो, हमारे इनके झगड़ा लाग रही है।
2: चलो
0: चलो
1: लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9281 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: बड़ा नीक बनाए रहे बहनी,
2: नीक बना रहा
1: है। जाने का रहा है, घुइया पाता लगा रहा है।
0: हाँ, वो हम जान गए। सोहिनवा बनाए रहे
1: घुइया पाता पाई गए, तो हम कहा कि अब बस भिगोए दिया दाल और बढ़िया देखो बनाई डाला। हाँ।
2: तो बड़ा नीक
1: सब बरखा और
2: बरखा
1: बहुत नीक लागत है। और हमार फरा तो ऐसे जनती है, कितना बढ़िया लागत। दाल जब भेज दिया तो हम कहा लो फरो बनाई डालो, बहुत बनाई।
0: अरे तू बनावे में बहुत तेज, हम जानी तो चटपटाऊ।
1: तू खाए में बहुत तेज, हम जानी थन दुलारो।
0: तो तू बनाई पो तो हम खाब।
1: चटनिया
0: इतना नीक बनाई है, एमन का नेबुआ निचोड़े हाँ।
1: हाँ, बिना नेबुआ के तो आजकल हमें कुछ ना अच्छा लगे।
0: बहुत नीक बनाई चटपटाऊ, बहुत नीक।
1: निचोड़ दिया जर को नहीं कनकना।
0: ए चटपटो, तू एक और सलाह दिए
1: का बता।
0: एक होटल खोल लो, ढाबलिया खोल लो।
1: के आई हमरे पास।
0: अरे बहुत मन है, पूरा गाँव पहुँच जाये।
1: अब तू का खुलवाइयो, हमें पहले ये बता दो कि हम खड़ी हुई कि हम बैठ जाए खनवा बनावे के लिए। तू बता,
0: ये काम करो,
1: हमें खड़ा करे।
0: ये काम करो, पहले तू खड़ी हो जाओ, वो मान जीत जाओ, बस जूता बैठ जाओ। जीत जाओ,
1: नोट मिलबे करी,
0: नोटिया तो मिलबे करी। एक तू ढाबा बनवाई लो, पहले लिख दो चटपटी ढाबा। हाँ बहनी, चटपटी ढाबा,
1: चटपटा ढाबा
0: या चटपटा ढाबा कह दो, चटपटा ढाबा। और तू यह चटनिया
1: नाम नहीं ठीक लगी।
0: हाँ
1: हम बताए थे, अब उमर नाम ये रही चटपटी दुलारी चटपटा
0: ढाबा या हमका जरूर समेट ले हम ताकि जान तू कहे सुनी लो कहे कि हमें समेटा थी ये तो नीक नीक बनाई है और बर्तनवा कुल हम ही मान जाए यही से हमार नौवा ये लपेटे ही कि ये तो बनी है चटपटा सामान और जो बर्तनवा निकली है दुलारी अगर साफ कह लो है दुलारी अगर साफ कह लो दुलारी मंजबाई करी है मंजबे करी है प्लेट
1: तो रुपया तो मिली तुमका
0: अरे रुपया मिली खाए पानी कुल मिली मांजत माने हमार अंगुरिया खियाई जाई
1: तब देखो परपंच से बचा रहा जाए
0: अरे परपंचवा तो हम सब नाई करे थे बहनी
1: ए पूरे गांववा मशहूर हो के तू बहुत परपंच करती हो
0: हां तोहरो ना हुआ मशहूर है बहनी ना जानो कलिया हमें मिले ना सुकुल कहा था कि चटपटो बहुत परपंची नहीं
1: बताओ भवानी पर
0: आ जानी का कहीं
1: जौने दिन हमका मिल गए ना
0: तो सुकुल कहत रहे कि चटपटो हल्ला मचाई नहीं पूरे गांव में कि हमार पतोहिया भाग गए
1: हाय रे दादा रे
0: हां यह सुकुल कहत रहे
1: कहता ना का कहे
0: गाड़ी कहे हो है
1: नहीं गाड़ी निकलत हमने मुंह से
0: तू उनके धूपे से कहे हो है ये बतिया
1: हम काहे बतुआ भी जो हमार पतुआ ऊपर बैठी सोवत है हम काहे का बताओ
0: वही कहत रहे कि वही कहीं नहीं चटपटाओ कि सुकुल कहे जोन पतोहिया ही
1: ये सुकुल का पूरा खानदान मटिया मेट हम कर डालब ये जान लो तू
0: तो पहले जीत जाबो तब कह पेबो कुछ ना कह पेबो सुकुल कह तू
1: हमें बहुत रिस लाग गा
0: चाहे
1: देखो अब झूठे बोला था ना कहा था कि हम परपंची
0: वही क्रिया खात रहे क्रिया वो क्रिया खात रहे
1: तो हम क्रिया खाप जानित है
0: हाँ तो वो क्रिया खाए कहीं कि हम कहो के क्रिया खा ले और चटपटो के मुंह पाए हम कर
1: चलो हमें कुछ ना ही करे खाए उनका ऐसे नाश हुई जाए
0: तो तू काहे कहू कि उनके पतोहिया भाग गए
1: नहीं हम नहीं बतवाए दुलारी ये हम अम्मा कसम खाई थे
0: तू क्रिया खा ली
1: हम अम्मा कसम खाई थे दुलारी
0: देखो किरवा खा ली नहीं फिर से
1: नहीं हम नहीं कहा वो बहुत मनाई होए तो दूर रहे हो तू
0: हाँ
1: हाँ उसे दूर रहे ना
0: बाजू कहा पूरे गाँव चटपटो के नाम बदनाम है
1: ना सुई जाए और का हम कहिए ना सुई जाए
0: आई ना कहो इस सब ना कहे इस समय सावन चलत है
1: तब चलत है ना अब वही हम तो सच्चे दिल की होई हमरे दिल माँ भोलेनाथ विराजत है और जौन कहत है भोलेनाथ कहत है ये जान लियो तू
0: देखो फिर मारिन बड़की बोलिया देखियो ऐसे बमकत ही है कहूँ कहूँ और सुन लियो गई ही कुछ लावे सुन लियो गई ही पानी लावे हमारे बतिया तू लोग सुन ऐसे ये बमकी है ऐसे बमकी है तब जब ये ठाड़ हुई है तो का जनी का अहिली बहली ये बोली है बस हार जी है जान लियो ये कहूँ बमकी कि हमारे अंदर भोलेनाथ बैठा है बस भोलेनाथ के सपो निकली इनका फन दमन ये का जान लियो इनसे कह दो बम क्यों ना हुआ
1: लो बहनी लो पानी वानी पियो
0: ला पी ली लाओ
2: ला चाची
1: हाँ पानी पियो
0: ला पनिया पियाई दो और ये चटपटाओ
1: का
0: ए कहिया इनके वो इलेक्शन वा है बहनी
2: बस आला
0: है यही रखाउंदी एक बादे है जानो
2: हाँ हाँ
0: तो रखाउंदी
1: रखाउंदी बादे है
0: हाँ
1: तब बड़ा हमका
2: सबसे प्यार से बोलो चाची
1: अरे बहनी हमरे बुमा तो एकदम जैसे मिश्री भरा हो
2: हाँ
1: निशानिया
2: का है चाची
1: मीठा बोली थे
0: निशानी का है तुहार भैंसिया
1: अब ये जोन कहे
0: यही कहीं ना कि ये कहीं ना कि हमार निशानी कह दो भैंसिया तो इनके बहनरवा पर बनवाई वो भैंसिया बनवाई हुआ है
2: बनवायन है
0: काली काली खूब करिया करिया हुआ मोटे
2: के मोटे
0: हाँ
1: चलो ठीक भैंसियों को ना बुरा ना ही है दुधवा देत है गोबर देत है तो काहे बुरी है
2: बहुत अच्छी
1: ना ही ठीक हमारे देश का जनावर हो
0: और का आज जैसे गाय हमारी माता है भैंसिया हमारा पिता है
1: भैंसिया ना ही पिता हो
0: भैंसवा
1: भैंसवा भले हुई जाए
0: भैंसवा
1: भैंसिया ना ही पिता हो
0: माता
1: ही होती भैंस माता गाय माता
0: तो भैंसिया माने वो होए सौतेली महतारी
1: हाँ महिला होए महिला
0: भैंसिया
1: हाँ
0: तो सौतेली महतारी हो जाए
1: हाँ तो ऐसे कह लो कि कारी महतारी एक गोर महतारी
0: अच्छा
1: चलो ये बहस खत्म करो
0: हाँ
1: एक ठो अब शिव जी का गाना गाओ
2: चाची गाओ
0: चलो भोलेनाथ की ये जाना थी चटपटो इनके जीवमा भोलेनाथ बैठा
2: बैठा है ना तो ज्यादा गाना जा रहे
0: अबे फुपकार फुपकार गई है चला गाओ हो
1: तो चलो गवाई लियो पूर करो
0: हाँ चलो
2: चलो

0: भोलेनाथ बाबा की जय।
1: तब देखो अगर भोले सोए गए हो हाँ। इतना पानी चढ़ाते हैं उनके ऊपर, दुधुआ चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते, सब चढ़ाते है ना, तो सोए गए हुई है मस्त लाद फान करके आराम करत हुई है। अब कहा
0: बहुत गाऊ चटपटो हमार हथवा पिराए बहुत गाय
1: गौरा मैया एक ऐसी है जो जगाए लावे
0: जगाए लावे कुछ बोल नहीं
1: सकते बोल सकते। तो भाई देखो आज तो बहुत आनंद आवा बहुत आनंद आवा
0: चल बटो पर अब किस उम्र वक्त चलबो पर छे तो हम हो के यहाँ चले
1: हाँ तो चलो
0: तू समय चलबो
1: भोरे चलो भोरे एकदम
0: हाँ भोरे चलबे तो तोरे लोग आ जाओ
1: चार बजे आ जाओ और सबे निकल।

0: डिजाइन।
1: तो हम लोग तो ऐसे बुंदा धैली थे एक,
2: हाँ बुंदा धरे उंगुरिया में लगा लिए,
1: उंगुरिया में लगा लिए, बस हो गया तनी गोड़े में लगा लिए, हुई गास आए।
2: और
1: ये सब आजकल बहुत बहुत तरह तरह के मेहंदी चली है, लगाए लगाए सब निकल। अरे का बताई, इतना सुंदर सुंदर मेहरारू इतना सवेरे कैसे तैयार हुई जाती, हमका तो बड़ा
2: कहाँ के देख लियो मेहरारू
1: हुए गए रहा ना
2: परछे
1: गोड़ा परछे गए।
2: अच्छा हम हो लोग सजलिन जाए ना ही बनी
1: अच्छे बजे लिपस्टिक लगाए के कजरा लगाए के पट्टिक लिपस्टिक लगाए एकदम बढ़िया
2: लाल लाल
1: हाँ सब बढ़िया
2: चम चम चम चम
1: सब सड़िया बढ़िया बढ़िया पहन के
2: हम हो सब पहन लिन जाए
1: ना बढ़िया लागत रहा। अब का बताई मतलब कहीं ना पाई थे हम ये अतना एकदम वातावरण जो रहा वो एकदम सुगंधित
2: एड मास
1: पियर
2: वो बहुत सुगंधित रहा। देखो लौटन भैया फोनवा कई दिन एको मिनट तोहरे बिना रह ना पावत हाय जैसे आवत ही तैसे पीर पीर पीर पीर करे लागत।
1: अबे लिही ना ना वो छुटका वाला तो हम छीन लिया।
2: हाँ
1: हम कहा कि अब ना चलाओ हम खड़े देखो खड़े हुए खे ना हम तो प्रधानी बने खे कहा कि अब्बे से इज्जत बनावे खे छोट वाला धई दे बड़का खरीद लो तो बड़का खरीदी ने वह सौकियाए रहा था पिनेट पिनेट बजावा कर रहे
0: बहुत ख्याल रखा
2: तब भाई तो रिसियानी ना जब कहना पर दिया चला गया अब जान लो यही से इनके चटपटो खान सब बहनी चलो चला जाए और तैयारी करे खे इनका जितावे खे बहनी
1: कहाँ जाई हो कहाँ जाई हो अबे कहूँ नहीं जाए कभी बैठो
2: सुना बहनी हमका जाए के बाजारे आज।
1: अच्छा तो पर वो सोमवार है
2: हाँ तो ओका खर्तिन समनवा अरे पर छे खर्तिन बहनी
1: हाँ हाँ
2: जाई तो कुछ कपड़ा उपड़ा ले आई बोले नाथ खर्तिन चूड़िया चढ़ाई दे है नहीं
1: नहीं दान वान करे चाहिए तो हमका का
2: तो काव दान करी काव दान करी
1: देखो कपड़ा वस्त्र दान होते है
2: वस्त्र दान
1: हाँ अब चुड़िया दान कह दो मेहंदी दान कह दो बिंदी दान कह दो आलता वालता लैया बढ़िया नीक सुंदर वो दान कह दो है गौरा तो, गौरा जी का सामान हो
2: तो कहाँ दान कह दी क्या कह दे दी
1: अब हम ही का दे दी हो और का
2: या हा देख
1: तब का
2: हम ही दान करी ये हम सखी ले ले तू पंडित तो हो ना
1: ए पंडित का दान दे हो
2: और नहीं तो का पंडित एक दिन जाते दान
1: तो दान है चाहे जे जरूरतमंद हो जे गरीब गुरबा हो का दे दे
2: तू है दान दे हमार निकली परान हम चटपटो तू है दान ना दे
1: हमरे लगे अबे पैसा ना ही आवा है तो अबे हम गरीब हो जब तक हम
2: काहे गरीब तुहार आर्मी का भैया बैठा है उनसे मांगते हो ना नोटिया।
1: अरे देखो वही आर्मी का वाले आर्मी का रहा था हमसे काल बहनी का कोई ऐसे बस साल भर में आए कुछ पकड़ाए दीन 10-5 रुपया।
2: हाँ आज तू फुर बोली है आज फुर बोली बहनी सुनी लो इनके कहानी ना अब तू हमार सुन लो यही जो कपड़ा पहन के आवे और इनसे हम जो कह दे हे चटपटो तुहार कपड़ा वाले हे हमारे अरिमिका वाले भैया लाए है और कुछ मलवा पहनी आवे और जो पूछ रही हे चटपटो तुहार मलवा बड़ा निक हमारे अरमिका वाले भैया ने अब कहा थी कि कहूँ साल भर पे आओ थे तो दाई दिए थे 10 रुपया अब तो हार आज फूरे निकरा है
1: हम अब देखो अब अपने घर की कौनो कहे ना चाहिए ना हमारे भाई तो हैं कौनो दुश्मन तो है नहीं तो हम तो चाहे थे कि उनकी बढ़त मनाई है तो ऐसे झूठ ऊट बोले पड़त है ना कि ना हमारे भैया देगा ना हमारी भैया लाए ना ये साड़ी हमारे भैया लाए कहे पड़त है दुलारी न यही है कि फटहा है भैया ना ही पूछा था इनका
2: तो दुलारी से तो ना झूठ बोलती हूँ
1: ना ही तो से झूठ ना ही बोले हैं जो लाए तू का बताए हैं ना वैसे हम उका चार गुना ज्यादा बताई थे दूसरे से
2: आई जुन आज पहरी वही फराक घस पहरे हूँ
1: फराक लागत है तुम का तरी निक साड़ी पहने तू का फराक लागत है
2: तो ये क्या लावा रहा अरबी का सावा हुई
1: जीजू लाए रहा
2: जीजू लाए रहा तनी देखो कितना शर्मा थी मुआ भर लाल हो गया इनके देख लो तनी बहनी अखिया उखिया देखो कस मटकई लाग चमकई लाग वाह रे चटपटो बिलान ही है बुढ़ापम बिलान जाती दादा
1: नहीं
2: ये हलिया देख लो तनी वाह रे चटपटो वाह रे जस तोहार नाम तैसे तू हो भैया अब लागत है हमें कि तू जीत जाबो
1: जीत जाबे
2: हाँ अगर तू बम की उन्ना तो तू जीत जा।

0: तू बम क्यों?
1: देखो सब निक निक रही, हम निक रही
2: हाँ।
1: और कहूँ तनिक भर कोई अगर हमारी तरफ उंगली ऐसे दिखाई दी
2: तो हम
0: तू एक दिखाई तू दू दिखाई दी हो चार दिखाई दी हो
1: हम बांध के यहाँ दिखाई मुक्कबा
0: ई कुल ना की हो चटपटाओ नहीं तू हार जाबो हम खड़ी हो जाब है ना बहनी जब ये हारे लगी हैं तब इनका बैठा दियो हम खड़ी हो जाब
1: हारब तो हम ना ही जान लो कि ये चटपटी का बहु जो हारे नाम आए जात है
0: हाँ।
1: तो हम भगवान का फिर छोड़त नहीं
0: देखो फिर बम की है फिर बम की है बहुत बम कर
1: भोला बाबा हमका जीतई है और भारी बहुमत से जीतई है
0: सुन लियो बहनी बम के लगी
1: ये देख लियो तू
0: और जब कहूँ ये हार गई तो इनका पटक पटक हुए पटक पटक इसके जवाब
1: तू है तू हमारे तरफ से तू बुलियो
0: हाँ।
1: चार लोगों से कहियो कि ना कि चटपटी का दियो
0: हम लोग तो नारा लगे
1: ऐसे ऐसे ये है काजल है ऐसे सब है यहो है वो बहनी है सब
0: सबका नाम भुलाएगी देखो
2: हाँ।
1: ना ही भुलाए ना ही मोहिनी हो देखो बेटी कैसे मुस्कात है मोहिनी
2: महिमा
1: महिमा
2: आस्था
1: हो तो हाँ। ये चार चार कम से कम कहीं अगर चार चार लोग और चार चार लोग चार चार लोग से कहीं
2: हाँ।
0: अपने बहनी ना अपने घर हम सबका कहो कि नहीं चटपटाओ चाची गोड दे हैं
1: लोगों से कहती हो कि वही और लोगों का बताई है
2: बताइए सबका
0: हाँ और सब के जो आए डाल दे हैं
1: तो हर लोगों की जिंदगी हम बनाए दे
2: पोस्टर छपवाई लगाए देवे
0: बस यही ध्यान रखियो कि ये खड़ी हुई है तो ये गिर ना पा रहा
2: हाँ, ठीक है
0: कैसे गोड़वा इनके पिरान करते
2: हाँ।
0: तो असना हो गोड़वा पिराए लब लब लब लब होए लगे बस ये फाट पड़े नीचे
1: तो हम तो यह जानी थे कि भाई खड़ा रहे हमको बहुत मतलब ताकत लागी सब लागी गोड़वा हमारा जो कमजोर हो
0: ये बहनी एक काम करो तोहरे लोग अपने गाँव से चार जनी हो
2: हाँ।
0: तो तोहरे लोग अपने गाँव से फंटी ले आयो बसवा वाली
1: फंटी काहे के लिए
0: इनके गोड़वा में बांध देते भाई इनके गोड़वा कमजोर है बहनी
2: हाँ।
1: ए बहनी बताई काहे कमजोर है हमार ये कमजोरी ऐसे ना ही आई है
2: हाँ चाची
1: दिना भर हम चलित है
2: हाँ, दिना भर
1: यहाँ से हमार गोड़ जो है कमजोर हुई गए
0: तो तू दिना भर काहे चलती हूँ
1: तू काहे चलती हूँ
0: हम तो बैठ जाई थे
1: तू कब बैठती
0: हम बैठ जाई थे दिना में
1: दिना भर गोबर काछती हो
0: सब करी थे कमवा
1: के जाती हो
0: घरा सुनो घरा के कुल टहलिया करी थे
1: हाँ
0: लेकिन एक बाद ये घंटा जाई थे बैठ जाई थे तो तू दिना भर काहे चल तू ये घंटा काहे नहीं बैठे
1: बैठ जाए तो घर हमार बैठ जाए जाने की नहीं जाने
0: अरे बहनी तोरा पतो हिया
1: है रहती है देखो अब वो का कहा जात है बनी है रावण का भाई का राम मेघनाद
0: सुम्भकरण सुम्भकरण
2: कुम्भकरण
0: सुम्भकरण
2: कुम्भकरण
0: अच्छा कुम्भकरण
1: कुम्भकरण की नींद सोवती
0: अच्छा
1: जागी में सुट्टे से चाय पी ली अब जो उठी
0: हाँ
1: तो बस चवा बनी रखी है तू लोग अभी पियो हो ना बची गई है
0: हाँ हाँ
1: बस वो सुट्टे से पी के
0: फिर सो जाइए अरे मोरी मैया ये क्या पतो हिया दादा
1: ऐसा हो ना हम परपंचिन हो अब तुसे बताई थे तो तू कहो कि हम परपंचिन हो पूरे बतवाए भर का ना ही है
0: पूरा ही बतिया तो पूरे कहूँ बहनी अपने हमारे घलक वाहे हलवा है का
1: हाँ। तब देखो कैसे ऐसे जैसे मगरमच्छ ना ही होते पड़े रहा थे
0: हाँ।
1: ऐसे पड़ी है कोनो काम ना ही कोनो धंधा ना ही
2: हाँ।
1: और हम लोगों के पास ना काम है कि
0: बहुत काम करे बहुत काम
1: काम ना उराई बहनी काम ना उराई
0: काम है कि हम लोग के कोनो उठा ना ही बहनी रतिया ना होए रतिया ना होए
1: हाँ,
0: तो हमें लगन का वल्यक नहीं बता है
2: हाँ,
0: नहीं पतो हमरो पतो
1: अब ये कही था कि ऐसे जैसे हम लोग काम करी थे और करे
0: हाँ,
1: आगे करत रहब
0: हाँ,
1: ऐसे सबे करत रहे सबका सब कुछ ठीक रहा
0: और का भगवान नीक हाँ, सुख रखे
1: सुख रखे सबका
0: तब चलो
1: चलो चला जाए
0: बहुत देर होएगा
1: अब हमें इनके संगे जाए के गोड़ा बाजार
2: बाजार
0: हाँ बाजारिया हमें चले के जाए के बहनी
1: तो हम कुछ ले लेगा
0: हाँ
1: दान पुण्य करे खातिर
0: हाँ चली हम समनवा खरीद ले आए
1: हाँ
0: अब तब फिर मीटिंग हो तब फिर बैठे हो
2: ठीक चाची
0: चली आए तोरे लोग
2: ठीक चाची
1: तो मैं अपने दर्शकों से दर्श और देखो बोल ना ही पाए थे यहाँ कही था कि
0: ये तो अपने लौटन के फनवा जो पीर पीर पीर पीर कही दो उनसे उनसे ही कह दियो कि फोनवा ना लगाओ, हम बैठन मीटिंग मा।
1: हाँ तो यह कहे पड़ी आ जाओ, अब हम कह देव उनसे कि देखो हम बिच्चे बिच्चे में आपका फोन नहीं।
0: हाँ, ये डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब।
1: हाँ
0: हाँ, अंग्रेजी बोल देंगे, देखो
1: डिस्टर्ब नहीं
0: डिस्टर्ब
1: डिस्टर्ब डिस्टर्ब
0: डिस्टर्ब
1: ऐसे बोलो ना, डिस्टर्ब।
0: ये तो हर गोल गोल मुंह हम कटोरिया नहीं कह पाई थे, डिस्टर्ब डिस्टर्ब।
1: तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और आप अच्छे रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, हमारी तो यही कामना है। और सुनते रहिए हमारा प्यारा सा रेडियो प्रोग्राम यानी चटपटी चाची, और सुनते रहिए
0: 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने शाम की स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ मौजूद है बेसिक एजुकेशन जैसे अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलदीप पांडे, नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज गोंडा। एक बार वापस से आपका हम स्वागत करते हैं सर। और जाने से पहले हमने कहा था कि एक बहुत अहम सवाल है और सच में हमारे श्रोताओं के मन में भी ये है कि भाई बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ज्यादा, टीचर या फिर पेरेंट्स। हमेशा से न जाने कब से ये मुद्दा चलता चला आ रहा है, इस पे मैं आपसे राय जानना चाहूंगा आपकी।
1: बड़ा गंभीर विषय है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल,
0: एग्जैक्टली,
1: टीचर या फिर
0: पेरेंट्स।
1: पेरेंट्स तो इसमें 70% मैं रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल पेरेंट्स को ही कहूंगा। आज मैं भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स हूँ
0: जी।
1: बच्चों को किताबी भाषा में भी लिखा हुआ है, प्रथम पाठशाला माता
0: जी बिल्कुल
1: पिता ही होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइन में बोलूं तो इसलिए 70% रिस्पॉन्सिबल माता पिता पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को, मैं आज देख रहा हूं कि एक ही चीज कहते हैं कि बेटा बस पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसे कमाओ। बस बेटा पढ़ लो, आईएएस बन गए ना तो बहुत पैसे कमाओगे, बस बेटा इंजीनियर बन गए ना तो बहुत पैसे कमाओगे। ये जो विचारधारा दिमाग में डाली जा रही है बिल्कुल गलत है।
0: ओके।
1: पढ़ने का अभिप्राय पैसे कमाने से नहीं होना चाहिए, पढ़ने का अभिप्राय ज्ञानी बनने से होना चाहिए। हमारे बाबूजी हमसे कहा करते थे बेटा पढ़ लो, खूब आने लगेगा ना तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी हमारे बाबूजी ने हमसे ये नहीं कहा। और अब मैं देखता हूँ कि जिस घर में जाता हूँ कहते हैं अरे देखो डॉक्टर अंकल है ना, ऐसे ही पढ़ोगे खूब पैसे कमाओगे।
0: मतलब आपको एग्जांपल देख करके
1: या मैं, काफी मेरे मित्र हैं जुडिशरी में हैं, काफी मेरे मित्र प्रशासनिक सेवाओं से हैं, तो वो लोग भी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि बच्चों के दिमाग में कहीं ये घर नहीं कर देना चाहिए कि पढ़ने का अभिप्राय पैसा है, पढ़ने का अभिप्राय ज्ञानी बनना है, पढ़ने का अभिप्राय नॉलेजफुल होना है। और मुझे लगता है हमें हर

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जी हाँ, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला।

जी हमारे साथ मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, गुड इवनिंग जी। हाँ आपको भी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं आप। और नागेश्वर धाकर जी दिखाई पड़ गए भाई, गुड इवनिंग आरजे अनुसर जी। जी हाँ आपको भी शुभ संध्या, कैसे हैं। सबलू सावंत जी हैं सांता कुछ मुंबई से, शुभ संध्या आरजे मनु जी। जी आपको भी शुभ संध्या। और वो तो आता नहीं कभी, मगर आलम ये है कि रोना बहुत आता है। वो तो आता नहीं मगर आलम यह है कि रोना बहुत आता है। दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आँखों में। क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर, बहुत उदास से कोई तेरे चुप हो जाने से। हो सके तो बात कर किसी बहाने से, आंसू आते हैं उससे पसीना बताकर टाल दिया करते हैं। कुछ ऐसा करके हम अपना गम छुपा लिया करते हैं। क्या बात है भाई। और मेरे साथ जुगल किशोर वर्मा जी भी हैं मध्य प्रदेश से, आपको भी प्रणाम करते हैं। जुगल किशोर जी कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सावन का महीना चल रहा है तो सावन के गीत हैं। और आइए अब आपको बुलाते हैं, जो बाकी हमारे बचे हुए श्रोता हैं उनको बुलाते हैं। और बुलाने का माध्यम है ये प्यारा सा गीत। आखिर आपको आना पड़ेगा, हम बुलाते हैं आपको कुछ इस अंदाज से।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

जी हाँ, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो हमारे साथ भाई न्योता दिया और खट से हमारे साथ जुड़ गए। जी हाँ, कौन जुड़ गए? हमारे साथ श्री अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। शुभ संध्या अनु जी, चरण स्पर्श, शुभ संध्या आपको भी। और जी, ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, तुम बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, तुम बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। लोग तो बेवजह भी पूछ लेते हैं, लोग तो बेवजह भी पूछ लेते हैं, तुम पूछते तो बताता कि हाल क्या है। अगर मैं उतर जाता बेवफाई पे, अगर मैं उतर जाता बेवफाई पे तो अरे पत्थर भी गला देता, ये दाल क्या है। लोग कहते हैं दाल नहीं गली। अगर मैं उतर आता बेवफाई पे तो पत्थर भी गला देता, ये दाल क्या है। ये दांव मैं अपनी मर्जी से हारा हूं वरना, ये दांव मैं अपनी मर्जी से हारा हूं वरना, मालूम था मुझे तुम्हें, मालूम था मुझे तुम्हारी अगली चाल क्या है। जी हाँ, कभी कभी अपनों को जीता देने में, और अगर ये किसी का मानना ये है कि चलो हम किसी से जीत कर खुश हैं, तो कभी कभी हार कर भी खुशी का एक एहसास होता है। कभी महसूस किया होगा आपने। और आज तो भाई बुक लवर्स डे है, यानी उन लोगों के नाम जिन लोगों ने अपने जीवन में पुस्तकों को बड़ा महत्व दिया। इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में एक पोम चलती थी, एक कविता थी, छठवीं पोएम द स्कॉलर, रॉबर्ट साउदे ने उसको लिखा था। उन्होंने लिखा कि माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरा जो समय है वो जो मरे हुए विद्वान है, मृतक विद्वान है, उनकी पुस्तकों के साथ बीता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड एंड वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट द माइटी माइंड्स आर ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। यानी वो कहते हैं कि मैं अपने घर में, उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी है और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं। ऐसे विद्वान जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहा जाता है साहित्य कभी नहीं मरता, क्योंकि लोग उसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि द पोएट सेज दैट, आप एक्सप्रेशन लिखते होंगे, तुलसीदास जी कहते हैं जी कि, सूरदास जी कहते हैं, विलियम शेक्सपियर कहते हैं, मतलब वो आज भी कह रहे हैं। इतिहास में इंसान जो है वो मृतक होता है कि उस राजा ने कहा, उस नवाब ने कहा, सेनापति ने कहा, तो जो साहित्य है वो कभी नहीं मरता। और पोएट ने कहा माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, किताबें मेरी कभी न धोखा देने वाली मित्र है, विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं प्रतिदिन बातचीत करता हूँ। तो भाई जो लोग हमको सुन रहे हैं, आप लोग जरा बताइए कि आपने जो किताबें पढ़ी आज तक, कहानियाँ पढ़ी, किस्से पढ़े, उपन्यास पढ़े, या गज़ल की कोई किताब पढ़ी, तो आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, उसकी कौन सी रचना है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो जरा हम आपके बारे में भी जाने कि आपको कौन से लेखक की कौन सी कृति बहुत पसंद आई। तो अब इंतज़ार करेंगे, आपसे एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर हम उम्मीद करते हैं कि हमको चैट बॉक्स में मिलेगा। और आज का दिन किताबों के नाम करने के बाद आज एक महत्वपूर्ण तिथि और है। फिलहाल एक गीत आपको सुनाते हैं और गीत के बाद फिर बुक लवर्स डे के अलावा एक दिन आज और है, उस दिन की भी करेंगे बात। फिलहाल आप हमको हमारे संदेश वाले खाने में लिखकर बताइए कि आपके सबसे प्रिय लेखक का नाम और उनकी द्वारा लिखी गई जो सबसे अच्छी रचना है, जिसने आपको अंदर तक छू कर रख दिया,
वो रचना कौन सी है। फिलहाल सावन पर आधारित ये गीत आपको सुनाते हैं और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपका इंतज़ार।

जी हाँ भाई, अभी तो देखिए आपके लेखक का नाम नहीं आया, सबलू सावंत। सबलू जी लिखते हैं, भाई हमारे साथ मुंबई से हैं, कि साथ मांगा मिला नहीं, खुशी मांगी मिली नहीं, प्यार मांगा किस्मत में नहीं था, क्या बात है, और दर्द बिन मांगे ही मिल गया। आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, हिम्मत ही नहीं होती अपना दर्द बांटने की, जो चोट जिंदगी देती है उस नासूर की दवा क्या है, इतनी सजा दी मेरे मौला आखिर मेरी खाता क्या है, जाने वालों का क्या पता यादों का बोझ कितना भारी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और कभी कहा था किसी कवि ने कि कृष्ण बिहारी नूर जी ने कहा था, मुझे याद आ गया उनका नाम, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लिखते हैं कि जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास नहीं आती, ये अपने अपने नसीब की बात है, कोई भूलता नहीं और किसी को याद तक नहीं आती, क्या बात है भाई। और पैरों की पायल जब भी चमकती होगी, मेरी धड़कने बेकाबू होकर तुम्हें बुलाती हैं, तेरी पायल की आवाज़ चुरा ले जाती हैं, चैन मेरा तू पास न होकर फिर भी तेरा एहसास रहता है, इन घुंघरुओं ने मेरी रातों का सुकून छीन लिया, जब से तेरे पैरों में ये पायल सजा दी हमने, क्या बात है। आँखों में बस गया है आपका ही नूर, अब तो आपके बिना जीना भी है ना मंजूर, थोड़ी सी जिद थोड़े से नादान हो तुम, मगर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम, सांसों में रहकर तुम मेरी पहचान बन गए, दूर रहकर भी तुम मेरी जान बन गए, हर पल खुशी तुमसे है, मेरी ज़िंदगी की हर हंसी तुमसे है। जी हाँ, और हमारे साथ नवीन राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, राधे राधे जय श्री कृष्ण जी, आपको भी राधे राधे जय श्री कृष्ण। सबलू सावंत जी हैं, आज बादल काले घने हैं, बादलों से कह दो बरसात की भीगी रातों में ज़रा ठहरो, बारिश का थम जाए मेरे दिल की ज़मीन, बहुत दिनों से ये आसमान की साजिश, रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बारिश की बूंदों ने छातों से रोका न करो, बहुत दूर से मिलने आती हैं बारिश के बहाने, क्या बात है। और अनूप मिश्रा जी, आहा भाई, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, शिकायतों की पाई पाई जोड़ रखी थी मैंने, तुमने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया, क्या बात है। शुभ संध्या आपको भी। और जी आज भाई बुक लवर्स डे है, और आप लोगों से हमने अनुरोध किया था कि आप अपने प्रिय लेखक का नाम और उनकी रचना का नाम हमें अवश्य बताएं, ताकि हम थोड़ा बहुत आपको समझ सकें। फिर एक बार आपसे कलबद्ध निवेदन है कि आपने जो कुछ भी किताब अगर पढ़ी है तो कोई ना कोई एक ऐसा राइटर होगा, कोई ऐसा लेखक होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, तो आज चूंकि उनका दिन है तो मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में जिन साहित्यकारों को, जिन कवियों को, जिन लेखकों को या गज़लकारों को पढ़ा, उनमें से कौन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा भावुक किया, मर्म स्पर्शी कोई कहानी जो आपके किसी राइटर की हो, अगर कोई आपने उपन्यास पढ़ा हो बहुत पसंद आया हो, कोई गीत लिखने वाला व्यक्ति है जो आपको अच्छा लगा हो तो जरा बताइए। इंग्लिश राइटर की बात की जाए तो जूलियस सीजर जैसा कोई नहीं, क्या बात है। ये देखिए भाई, अनूप मिश्रा जी ने लिख दिया कि अगर हम जूलियस सीजर की बात करें, विलियम शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल नाटक और उसकी एक पंक्ति, एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, जो अभी भी अमर है, मतलब हम अगर अंग्रेजी के साहित्य को उठाते हैं तो कहा जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और ये वो ट्रुथ है जहाँ पर जो कहानी का हमारा प्रोटागोनिस्ट है हमारे ड्रामे का जूलियस सीजर, वो कहता है कि कावर्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, बट द गैलेंट टेस्ट द डेथ ओनली एट वंस। जो
कायर इंसान होता है वो मरने के पहले कई बार मरता है, लेकिन जो बहादुर होता है वो जिंदगी में सिर्फ एक बार मरता है। बहुत प्यारी पंक्ति। और मतलब कहानी का जो सबसे उसका करीबी दोस्त ब्रूटस, जिस पर वो भरोसा करता है कि सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे लेकिन ये पैट्रियाट है और ये देशभक्त है, मेरे साथ रहेगा, और षड्यंत्रकारी उस ब्रूटस को अपने पक्ष में मिलाते हैं और ये बताते हैं कि ये एमबीसीएस हो चुका है और अब इसका राजा बने रहना रोम की जनता के हित में नहीं है। सीनेट में जूलियस सीजर बैठते हैं, एक एक करके कॉन्स्पिरेटर आते हैं, कास्का, सिन्ना, कैसियस, मुझे भी नाम याद है, और इस टाइप करते हैं, तलवार घोपते हैं। सीजर वहीं बैठा रहता है अपने राजगद्दी पर। अंत में जब ब्रूटस खंजर निकालता है, आहा, सीन मुझको याद आता है, मैं बच्चों को पढ़ाता था, अब तो खैर सिलेबस से हट गया इंटर के, नहीं तो सिलेबस में था, तो स्टेटमेंट एक्ट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, कहता है ब्रूटस तुम भी अब मर जाओ सीजर, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। जी हाँ, ये बीच की लाइन है जब वो मरते हैं, लास्ट की लाइन, और ब्रूटस को जब एहसास होता है बाद में कि उसने जूलियस सीजर को मार कर गलती की है, तो ब्रूटस ही कहता है, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी एट दाई स्पिट वॉक्स अबाउट एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड इनटू आवर प्रॉपर इंट्रेल्स, हे जूलियस सीजर तुम मरकर भी महान हो, तुम मरकर और शक्तिशाली हो गए, और हमारे ही हाथ हमारी ही तलवारों को हमारी ही अतड़ियों में घुसा देते हैं। सब लोगों ने आत्महत्या की वहाँ पर, जान पड़ा कि मतलब सीजर को मार करके गलती हो गई। और विलियम शेक्सपियर के एक और नाटक की बात करूँ आपसे, तो उसका नाटक का नाम है हैमलेट, और हैमलेट की माँ हैमलेट के चाचा के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर देती है, उसके कान में जहर डाल देती हैं, और उसके पश्चात हैमलेट जो उसका पुत्र है प्रिंस हैमलेट, वो बाहर पढ़ने की ओर जाता है, और जब खबर मिलती है कि पिताजी नहीं रह गए तो वो आते हैं, बेटा आता है, तो किंग हैमलेट का बेटा प्रिंस हैमलेट, और उनकी उधर माँ जो होती है वो शादी कर लेती है। तो जब जर्टूट शादी कर लेती है तो उसके दोस्त, उसका एक दोस्त है होरेशियो, वो पूछता है कि तुम्हारे पिता को मरे हुए भी महीने भर भी नहीं बीते और तुम्हारी माता ने दूसरी शादी कर ली। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने जितना कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत, अगर व्यंग की बात करें तो शेक्सपियर ने हैमलेट के मुँह से निकलवाया है पंक्ति है, थिफ्ट थिफ्ट हो रेशियो, ये मितव्ययिता है, जो खाना मेरे पापा की तेरही में बच गया था वो मेरी मम्मी की शादी में काम आ गया। कल्पना करके देखिए कितना दर्द होगा उस बेटे को। इससे गजब का सटायर, इससे अच्छा व्यंग शायद मैंने नहीं पाया अपने जीवन में, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते। और मुंशी प्रेमचंद जी की कोई तोड़ नहीं हिंदी साहित्य में। जी हाँ, सविता नीलता, शुभ संध्या सर जी, मुझे गुलजार, और जानते हैं गुलजार का रियल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और जी हाँ सब जो सावन जी, मुंशी प्रेमचंद की रचना मुझे भी अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, आपको भी अच्छी लगती है। तो चलिए फिर, अब इसके पश्चात आज एक दिवस और भी है, उस दिवस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस संगीत में अंतराल के उस पार आइए, अब आपको सुनाते हैं। सावन की बात है तो बिना झूलों के सावन कहाँ, अधूरा है। अब आपको ले चलते हैं झूलों की दुनिया में, थोड़ा सा झूल लीजिए, हम भी झूल लें, और झूल करके फिर लौटते हैं और करते हैं आपसे प्यारी सी बातचीत।

जी हाँ, और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा थी आपको। जी 7:45 हो चुके हैं और अब अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में। पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब गीत बजेंगे और वो बजेंगे जो आप चाहेंगे। जी हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। आज विश्व मतलब बुक लवर्स डे है, तो जो साहित्य से प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं कहानियों से, गज़लों से, आज उनका दिन है। लेकिन फ़िलहाल किसी का कहना यह है कि हमको किताबें नहीं, बहुत सी पढ़ी लेकिन चेहरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जी हाँ, तो पहली फरमाइश हमारे पास आ चुकी है अनु जी की, जो हमको सुनती हैं बिलसर से, और गीत उन्होंने चाहा है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। जी हाँ, फिल्म और बाजीगर में आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने।

जी हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। और आइए अब चलते हैं भाई, बहुत ही प्यारी फरमाइश हमारे पास, सावन से संबंधित तो नहीं लेकिन हाँ बारिश से संबंधित ज़रूर है। हाय हाय ये मजबूरी, और इसमें सावन भी है बारिश भी है। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, पर्दे पर है मनोज कुमार। और मनोज कुमार एक ऐसा नाम है कि जब मनोज जी मनोज कुमार को देखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस सदी में पैदा हुए, आपका नाम चल रहा था और हमारा भी नाम आपके नाम पर रखा गया। धन्य है मनोज कुमार जिनके नाम पर मनोज जी का नाम मनोज पड़ा। आइए हाय हाय ये मजबूरी।

आइए इस खूबसूरत से नगमे के बाद चलते हैं, ज़माने को अब तक नहीं है पता। और ये प्यारी सी फरमाइश हमारे पास भेजी है राजू विश्वास जी ने, जो हमको सुनते हैं सीतापुर से। देखिए, अब तक ज़माने को नहीं पता था लेकिन अब पता लग जाएगा क्योंकि राजू जी ने ऐलान कर दिया है।

जी हाँ, और अब चलते हैं अपने बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता श्री राजेश सिंह जी की तरफ और उनकी फरमाइश है, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, और अच्छी भी है, किसी से बीती हुई बातों को पूछने का कोई फायदा भी नहीं है। आइए फरमाइश पूरी करते हैं श्री राजेश सिंह जी की।

जी हाँ, और वास्तव में भाई, और हम भी यही कहते हैं कि गमों की दास्तां लिखी है किताब नले, गमों की दास्तां लिखी है किताब नले, मेरे गुनाहों का मुझसे हिसाब नले, मुझे तलाश है कैसे हम सफ़र की है, जो सवाल करता चले मगर जवाब न ले, बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए। और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे और आदरणीय श्रोता की तरफ, यहाँ बहुत ही प्यार करने वाले श्री के गुप्ता जी, जो हमको सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और गीत उन्होंने मौसम के हिसाब से भेज दिया है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जी हाँ, एक अलग ही मज़ा है, आइए सुनते हैं श्री के गुप्ता जी के इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ भाई, केके गुप्ता जी का ये प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया, बहुत ही प्यारा गीत। अब चलते हैं अपने प्यारे श्रोता श्री इम्तियाज जी की तरफ, और फरमाइश है कुरिया शहर दिया। और जब कभी भी इम्तियाज जी की फरमाइश आती है तो हम लोग जानते हैं कि जो कुछ लेटेस्ट है और जो बहुत ही कर्णप्रिय है वो सुनेंगे हम सभी। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत कुरिया शहर दिया, फिल्म का नाम पोस्टर बॉय।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं संदीप जी, और गीत चुना है जुगनी जुगनी।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। और अब चलते हैं श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की ओर। फरमाइश है क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम। बहुत ही प्यारा सा गीत श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश, और इसके पश्चात आएंगे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर भूल जा मेरे दिल सज्जाद अली की आवाज़ में।

थोड़ी सी फिक्र कर लो। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ये हमने धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश पर सुना। अब चलते हैं भाई धर्मेंद्र मोहन जी को, और आज उन्होंने बहुत दर्दीला गाना चुना है। पता नहीं कहाँ से इतना दर्द, एक तो धर्म भी हैं और धर्मों में भी इंद्र हैं और इसके पश्चात मोहन भी हैं, मतलब तीन तीन पदवियों को अपधारण करने वाले श्री धर्मेंद्र मोहन जी। गीत के बोल भूल जा मेरे दिल, और आवाज़ सज्जाद अली की।

जी हाँ, भूल जा मेरे दिल बहुत ही प्यारा सा गीत, ये धर्म इंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। और अब चलते हैं भाई जिनके हाथ में जादू है, श्रीमती शशि सिंह जी, फरमाइश है चाहे दूर रहो चाहे रहो पास, बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
3: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड।

0: आएगी।
1: जी हाँ, आपके सपनों की रानी बिल्कुल आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी, निश्चिंत रहिए आप। और अब चलते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता है नागेश्वर धाकर जी, और गीत उन्होंने भेजा है मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। जी हाँ, आपके यार के जैसा हंसी इस दुनिया में निसंदेह कोई नहीं है। आइए नागेश्वर धाकर जी को प्रस्तुत करते हैं ये प्यारा सा गीत।

बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप चलते हैं भाई, जब चांद की बात आ गई है तो हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री राम हेयर कटिंग सैलून से आनंद जी को सुनना है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा जी। हाँ, जब बात चांद की आई तो चलिए चांद पर एक गीत और सुनाते हैं। श्री राम हेयर कटिंग सैलून आवाज़ विकास।

जी हाँ, क्या गीत है भाई आनंद जी, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया। और अब चलते हैं भाई पूर्णिमा जी की तरफ, और उन्होंने गीत चुना है झटका मारे फिल्म का नाम क्योंकि।

जी हाँ, और अब फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं अपने दर्द कुमार और सुरेश कुमार जी की तरफ। गीत के बोल हैं, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। क्या गजब का गीत चुना है आपने।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा,
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, तो शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ महेंद्र दीपेन जी, आपका संदेश बहुत लिंक बहुत देर में मिला और आपका गीत नहीं बच पाया। हाँ अगर आप कोई गजल सुनना चाहते हैं तो अगर उस गीत को हम नहीं पूरा कर पाए तो आपकी इस फरमाइश को हम जरूर पूरा करेंगे। आपके उस गीत के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि देर से संदेश मिला, काफ़ी देर से जब सब लोगों के गीत आ चुके थे। तो हाँ अगर कोई गज़ल आप सुनना चाहें तो आपका स्वागत है। और आप ऐसा ना कहें कि मेरा गाना नहीं बजा, जी हाँ बिल्कुल बजेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि ये बहारे गज़ल है तो इस गज़ल में हम आपको गज़ल सुना सकते हैं। अगर आपको कोई प्यारी सी खूबसूरत सी गज़ल पसंद हो तो बिल्कुल। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। तो वो शायरी है। और आज शायरी की बात जब करते हैं बहारे गज़ल में, तो आज बात करेंगे सलीम सिद्दीकी साहब की। एक ऐसा मोहतरम नाम जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी एक मुख्तलिफ सी पहचान बनाई। उन्होंने लिखा कि इतनी कुर्बत भी नहीं ठीक है अब यार के साथ। कुर्बत का मतलब होता है नज़दीकी। इतनी कुर्बत भी नहीं ठीक है अब यार के साथ, जख्म खा जाओगे खेलोगे जो तलवार के साथ। जख्म खा जाओगे खेलोगे जो तलवार के साथ, एक आहट भी मेरे घर से उभरती है अगर, एक आहट भी मेरे घर से उभरती है अगर, लोग कान अपने लगा लेते हैं दीवार के साथ। पांव साकित है, साकित मतलब स्थिर, पांव साकित है मगर घूम रही है दुनिया, पांव साकित है मगर घूम रही है दुनिया, जिंदगी ठहरी हुई लगती है रफ्तार के साथ। एक जलता हुआ आंसू मेरी आंखों से गिरा, एक जलता हुआ आंसू मेरी आंखों से गिरा, बेड़ियां टूट गई जुल्म की झनकार के साथ। कल भी अनमोल था मैं आज भी अनमोल हूं मैं, कल भी अनमोल था मैं आज भी अनमोल हूं मैं, घटती बढ़ती नहीं कीमत मेरी बाजार के साथ। कज कुलाही मतलब ऊंचे पद पर होना, कज कुलाही पे न मगरूर हुआ कद इतना, सद उतर आते हैं शाहों के भी दस्तार के साथ। कभी कभी देखा है राजा जिस मुकुट पर घमंड है, गर्दन के साथ वो मुकुट नीचे आ जाता है। कौन सा जुल्म खुदा जाने हुआ है साबित, कौन सा जुल्म खुदा जाने हुआ है साबित, मशवरे करता है मुंसिफ जो गुनाहगार के साथ। मुंसिफ का मतलब जज,
शहर भर को मैं मयस्सर हूँ सिवाय उसके। मयस्सर मतलब उपलब्ध। शहर भर को मैं मयस्सर हूँ सिवाय उसके, जिसकी दीवार लगी है मेरी दीवार के साथ। जी हाँ, यह होता है जिंदगी में कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने सिर्फ एक इंसान को चाहा और मुझे वही न मिला। ये जिंदगी की कभी कभी रीत हो जाती है। महेंद्र दीपेन जी भाई, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहेंगे ज़रूर कि आप कोई गज़ल सुन लें हमसे और फिर शिकायतें न रह जाएं, क्योंकि शिकायतें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, दूर कर देनी चाहिए। हमारे साथ दादा आ चुके हैं। गुड इवनिंग मनु जी। दादा चरण स्पर्श कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, गज़लों की दुनिया में। रात है लेकिन कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कहीं कहीं कहीं कहीं ये रात खोई खोई सी लग रही है, कहीं चांद भी खोया खोया सा है। आइए इस रात में, इस ख्वाब में, इस चांद में शरीक करते हैं इस प्यारी सी गज़ल को आप सभी के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, ये है गोड़ा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

बात कर रहे हैं सविता शास्त्री जी हैं जी। हाँ, शुभ संध्या आपको भी चरण स्पर्श। और अब चलते हैं शकील सिद्दीकी साहब की तरफ। बावस्ता होते हैं उनकी गजलों से। उन्होंने कहा कि अपने जीने के हम असबाब दिखाते हैं तुम्हें। असबाब मतलब तरीका, माध्यम, हमारे पास जो है। अपने जीने के असबाब दिखाते हैं तुम्हें दोस्तों आओ, कि कुछ ख्वाब दिखाते हैं तुम्हें। हुस्न का तुमने गरकाब सफीने तो बहुत देखे हैं। गरकाब सफीने का मतलब होता है जहां पर नावें डूब जाती हैं भंवरों में। तुमने गरकाब सफीने तो बहुत देखे हैं, सर पटकते हुए सैलाब दिखाते हैं तुम्हें। हुस्न का शोर जो बरपा है जरा थमने दो। हुस्न का शोर जो बरपा है जरा थमने दो। इश्क का लहजाए नायाब दिखाते हैं तुम्हें। जहां देखिए साहब, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, और इसीलिए शायद दुनिया के अलग अलग लोगों के लिए खूबसूरती अलग अलग जगह है। मेरे फैले हुए दामन के कभी साथ चलो। मेरे फैले हुए दामन के कभी साथ चलो। मुंह छुपाते हुए अहबाब दिखाते हैं तुम्हें। मतलब देखिए, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, ईश्वर न करे आए किसी पर, लेकिन रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको जरूरत पर याद करते होंगे। हो सकता है व्यस्त समय में से उनको समय न मिल पाता हो, और जब कभी वो परेशानी में होंगे तो आपका नाम उनके दिमाग में आया होगा। और प्रयत्न कीजिएगा कि अगर उन्होंने आपको अपनी जरूरत पर बुलाया है तो आप जहां तक संभव हो सके वहां तक उनकी मदद कीजिए। क्योंकि लोग मोमबत्ती को तभी ढूंढते हैं जब अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब आप में उजाला करने की क्षमता है, आप माचिस की वो तीली हैं, आप उम्मीद की एक किरण है उनके लिए। और अक्सर ये होता है कि हम अगर अपने दोस्तों से कह दें कि भाई अब शादी करनी है, बेटी की घर बनवाना है, ऐसा कुछ करना है, तो कभी कहकर देखिए, लोग स्वयं कहने लगते हैं क्या बताएं, 50,000 रुपया अभी उनका बाकी है, LIC की किस्त नहीं जमा कर पाए हैं, वो स्वयं रोने लगेंगे आपसे पहले। उसका कारण समझिएगा। उसका कारण ये होता है कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कुछ हमारी सहायता मांग लें। और जब इंसान ऐसा बोल दे कि अभी किस्त नहीं जमा कर पाए हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फैले हुए दामन के कभी साथ चलो। मुंह छुपाते हुए अहबाब मतलब दोस्त, मुंह छुपाते हुए अहबाब दिखाते हैं तुम। उन्होंने कहा मेरे साथ चलिए, दुनिया को देखना हो तो। वो जो दोस्त है, जो दोस्त कहते हैं ना, वो आवश्यकता पड़ने पर मुंह फेर लेते हैं। और ईश्वर न करे कि अगर हमारे पास ऐसे किसी मित्र का फोन आए, जरूरत पड़ने पर ही उसने याद किया, तो हमारा फर्ज है कि हम जहां तक निभा पाए वहां तक निभाएं। रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अच्छे रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, निभाना चाहिए। छत पे आ जाओ हर एक काम से फारिग होकर, सारा काम निपटा कर छत पे आ जाओ। चांदनी रात के मेहराब दिखाते हैं तुम्हें। आओ, मतलब आपने देखा होगा अर्धचंद्राकार जो बना होता है घर के आगे, कॉरिडोर टाइप का ऊपर से मेहराब,
कहता है कैसे आंखों में उतरते हैं लहू के कतरे, कैसे आंखों से उतरते हैं लहू के कतरे, कैसे बनता है ये तेजाब दिखाते हैं तुम्हें। दर्द की चरम अवस्था इंसान के आंख की आंसू है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसू इस दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है, सबसे महंगा तरल पदार्थ, जिसमें 99% दर्द होता है और 1% वाटर होता है, पानी होता है। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा, सोचा भी और कोशिश भी करता हूँ कि मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू आए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो ये मेरे लिए चुल्लू भर पानी वाली बात हो जाती है। हमारे कारण कोई न रोए, हमारे कारण कोई हंसे, हमारे लिए कोई रो दे, वो एक अलग बात है। लता जी जिस दिन दुनिया से विदा हुई उस दिन लोग रोए, लता जी के लिए रोए, उनके कारण नहीं रोए। रफी साहब गए, दुनिया रोई, बहुत नामचीन लोग गए, कलाम साहब गए, दुनिया रोई, हिंदुस्तान रोया, तो उनके लिए रोना, आपके लिए रोना और आपके कारण रोना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो आप समझिए आप महान हैं, और आपके कारण रो रहा है इसका मतलब हम आप अपराधी हैं। तुमने कहा कि कैसे आंखों में उतरते हैं लहू के कतरे, कैसे बनता है ये तेजाब दिखाते हैं तुम्हें, तुम जरा प्यास की मेराज पे पहुंचो तो सही। मेराज मतलब उच्चतम बिंदु। तुम जरा प्यास की मेराज पे पहुंचो तो सही, रेगजारों में भी गिरदाब दिखाते हैं तुम्हें। रेगजारों मतलब होता है क्या कहते हैं, रेगिस्तान। रेगिस्तान में भी हम आपको पानी दिखाएंगे। एक मकसद के लिए अग्नि की तहरीरों में खून से लिखे हुए अबाब दिखाते हैं तुम्हें। इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सामने वाले हो कि ख्वाहिशों के कत्ल करने से नहीं डरता, ये वो दुनिया है। और इस दुनिया में अच्छे बनकर जीना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ हो जाना आसान है, सहज है, लेकिन सहज हो पाना बहुत मुश्किल है। डीएम बन जाना कठिन नहीं है, आसान है। आईआईटी क्रैक कर लेना कठिन नहीं है, आसान है। आसान है सरल होना, सहज होना। अगर आप सरल हैं और सहज हैं

और भारत की परंपरा में तो सहज होना रहा। आज वर्ल्ड बुक्स लवर्स डे है भाई, तो आज तो मतलब पुस्तकों की बात अगर हम करें तो जिस पुस्तक ने मुझे बहुत प्रभावित किया वो पुस्तक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते श्री रामचरित मानस बाबा तुलसी, और अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर बहुत पसंद मुझको। और गज़लों की दुनिया की हम बात करें तो वसीम बरेलवी मुझको बहुत पसंद है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिखते हैं। संस्कृत की बात करें तो कालिदास का शायद ही कोई तोड़ है। छोटी कहानियों और उपन्यास की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। मैथिली शरण गुप्त की साकेत बहुत अच्छी लगती है मुझको। जयशंकर प्रसाद की कामायनी या छायावाद के लगभग लगभग सभी कवि, पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा। क्या दर्द है, महादेव वर्मा ने लिखा कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और ये वही छायावाद है जहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये वही छायावाद है जहाँ जयशंकर प्रसाद कामायनी के श्रद्धा मनुसर्ग में श्रद्धा से कहलवाते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, नहीं दुख की रात के बाद सुख का सवेरा आता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत उसको जाओ भूल। उन्होंने कहा दुख भगवान का वरदान है, और दुख है क्या, सुख की लालसा ही दुख है। अगर आप खुशी चाहते हैं इसका मतलब आपने दुख को इनवाइट कर लिया, बुला लिया। सुख की इच्छा ही दुख है। अगर आपसे कोई पूछे दुख क्या है, मैं तो एक लाइन में बोलता हूं, सुख की इच्छा ही दुख है। अगर हम सुख की इच्छा न करें तो शायद हमको दुख कभी नहीं होगा। करके देखिए, किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। तो बात मैं कर रहा था सहज होने की, जहां से ये बात आई बाबा तुलसी की। तो उन्होंने लिखा कि आप सभी पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा मन जा ही राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। माता सीता एक ऐसा पति चाहती थी जिसमें तीन विशेषताएं हो, सहज हो, मतलब ये ना दिखाए कि हम बहुत काबिल है, सुंदर हो, और तीसरी क्वालिटी सांवला, मतलब कहा जाता है सब रंग कच्चा संवरिया रंग पक्का। और सूरदास जी को तो काला पसंद है, वो लिखते हैं सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो सहज होना बड़ा कठिन है। हिंदी में आप जाएं तो सुख का विलोम दुख है। जब आप साहित्य को पढ़ते हैं तो आपको आनंद आता है, और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं, या मुझे जहां तक पता है, आनंद शब्द का विलोम शब्द बना ही नहीं हिंदी में। सुख का विलोम दुख है, हर्ष का शोक है, आनंद का विलोम ही नहीं है, क्योंकि आनंद के जैसी अनुभूति उसके जस्ट अपोजिट कुछ हो ही नहीं सकता। आनंद का आप सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है गूगल वाले बाबा आपको बताए, लेकिन हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आनंद का विलोम मैंने नहीं पढ़ा, मुझको नहीं अभी तक पता। या अगर नहीं पता है तो अगर आप जानते हो तो बताइए। वैसे मुझको लगता है कि आनंद शब्द का विलोम नहीं है। आइए आनंद की दुनिया में चलते हैं, और इंसान का जो दर्द होता है उस दर्द का अपना एक अलग आनंद होता है, दर्द का अपना एक अलग मजा होता है। रमेंद्र मोहन लिखते हैं, मनुष्य जी गुड इवनिंग,
जिंदगी में बहार आई, आप आई, शाम की गजलें बहार आई। मुस्तफ़ा जी लिखते हैं, सर आपने ये बात बहुत अच्छी बात कही कि रोने दो तरीका का होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो तरीके का होता है। आप चाहे तो इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब अपने आसपास। आइए अब चलते हैं भाई, तो आप सभी के अपने कवि, आप सभी की अपनी पसंद, और फिर आज चलते हैं हम भाई, आज दर्द की आवाज़, एक दर्द भरी आवाज़ को आवाज़ दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से गज़लों में अगर दर्द बहुत है और उस जिस आवाज़ में दर्द है, तो उनका नाम है अताउल्लाह खान। आइए आपको ले चलते हैं, तीन चार दिन हो गया आपने अताउल्लाह खान की कोई गज़ल नहीं सुनी, आज सुनाते हैं आपको अताउल्लाह खान की ये प्यारी सी गज़ल।

जी हाँ मित्रों, अब घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि घड़ी की सुइयों ने ये आज्ञा दी है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल सोमवार को फिर मिलेंगे आपसे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, रात गहरी है, हवाएं कुछ कह रही हैं और शायद आज भी कोई ऐसी कहानी आपका इंतजार कर रही है जिसे सुनने के बाद आप सो तो जाएंगे लेकिन चैन नहीं पाएंगे। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो पर अपना लेट नाइट हॉरर शो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो केवल एक भूत की कहानी नहीं है, वो एक माँ की कहानी है, एक ऐसे वादे की कहानी जो उसने अपने बच्चे से किया और जिसे निभाने के लिए उसे मृत्यु से भी लौटना पड़ा। लेकिन याद रखिए, आज जो भी आप सुनेंगे उसमें डर कम होगा और प्रेम शायद आपकी कल्पना से भी अधिक। कहानी का नाम है आखिरी लोरी। एक प्यारा सा घर, सुबह चिड़ियों की आवाज, रसोई में चाय उबाली जा रही है, घर हंसी से भरा हुआ है। आरती हंसते हुए अपने पति से कहती है, नीरज जरा जल्दी आइए, देखिए आपका बेटा फिर से शरारत कर रहा है। नीरज मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अभी ये दुनिया में आया भी नहीं और अभी से शरारते, आप खुद आकर देखिए। नीरज झिझकते हुए आरती के पेट पर हाथ रखता है। अचानक बच्चा हल्की सी हरकत करता है, नीरज का चेहरा खिल उठता है। सच, इसने मुझे महसूस किया। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और आरती के पेट से बातें करने लगता है। सुन रहे हो छोटे साहब, मैं तुम्हारा पापा हूँ। देखो मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना, तुम्हारे लिए मैंने छोटा सा पालना बनवाया है, चांदी की एक घंटी भी है। और हाँ, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरती उसे देखती रहती है, उसकी आंखों में खुशी भी है और जाने क्यों एक हल्की सी उदासी। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नीरज की माँ छोटे छोटे मोजे बुन रही थी। आरती उनके पास धीरे से आकर बैठ जाती है। कुछ देर दोनों चुप रहती हैं। फिर आरती धीरे से कहती है, अम्मा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? माँ जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बहू तू पूछ कर तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। आरती कहती है, माँ जी अगर मेरे बच्चे को मेरी जरूरत पड़े और मैं उसके पास ना रहूं तो? माँ जी तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख देती हैं, चुप ऐसी बात कभी मत कहना, बच्चे के आने से पहले माँ ऐसी बातें नहीं करती। आरती मुस्कुरा देती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, पता नहीं अम्मा, पिछले कई दिनों से एक ही सपना बार बार आता है। मैं बहुत लंबा रास्ता चल रही हूँ, चारों ओर धुंध है, पीछे से कोई छोटा सा बच्चा बार बार मुझे माँ कहकर बुला रहा है। मैं मुड़ना चाहती हूँ लेकिन मुड़ नहीं पाती। माँ जी का चेहरा गंभीर हो जाता है, वो आरती का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, आज से बहू ऐसे सपनों को यहीं छोड़ दो, भगवान तेरे घर आने वाले हैं, उन्हें ऐसी अशुभ बातें पसंद नहीं है। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आता है, बरामदे में टंगी छोटी सी चांदी की घंटी अपने आप एक बार बजती है। चल, दोनों एक साथ उसकी ओर देखते हैं। हवा अचानक रुक जाती है। आरती बहुत देर तक उसे देखती है, फिर कहती है, अम्मा पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बहुत दूर बुला रहा है। प्यारे श्रोतागण, क्या ये केवल उसका एक वहम था या आने वाले समय की दस्तक? उस समय न आरती जानती थी न नीरज कि 24 घंटे के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिस दिन हमारी दुनिया बदलने वाली होती है उस दिन सब कुछ सुंदर लगता है। दूसरे दिन आरती रसोई में खीर बना रही थी। दादी कहती हैं,
क्या बात है आज बहू? आरती कहती है, हमारे नन्हे मेहमान की फरमाइश है। दोनों हंसती हैं। नीरज अंदर आता है। अरे भाई क्या चल रहा है? आरती बोली, कुछ नहीं, आज जल्दी घर आना, हम साथ खाना खाएंगे और एक सरप्राइज भी है आपके लिए। नीरज कहता है, ठीक है। नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। आरती उसके माथे पर टीका लगाती है, फिर पता नहीं क्यों धीरे से कहती है, नीरज अगर मैं कभी पहले चली जाऊं तो मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। नीरज तुरंत रोक देता है, ऐसी बातें मत करो आरती, हम हमेशा साथ रहेंगे। आरती हल्के से मुस्कुराती है। शाम के समय तेज बारिश हो रही थी। अचानक आरती दर्द से नीचे झुक जाती है और कहती है, अम्मा दर्द हो रहा है। माँ जी भी घबरा जाती है। नीरज दौड़ते हुए कार निकालता है। तेज बारिश हो रही है, कार तेजी से दौड़ती है अस्पताल की ओर। आरती पीछे लेटी है, माँ उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है। नीरज भी बार बार पीछे देखता है। आरती घबराओ मत, बस पहुँच गए। आरती कहती है, अगर मैं बच्चे को गोद न ले पाऊँ तो उससे कहना उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। नीरज की आवाज भर्रा जाती है, आरती कुछ नहीं होगा तुमको, तुम उसे गोदी लोगी। अस्पताल आ जाता है, कार रुकती है, स्ट्रेचर आता है, चारों तरफ भागदौड़ है। नर्स चिल्लाती है, जल्दी पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन थिएटर। आरती को अंदर ले जाया जाता है। नीरज का हाथ आरती के हाथ से छूट जाता है और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो दरवाजा सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर का नहीं था, उसके उस पार एक माँ अपने सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी और घड़ी धीरे धीरे उस समय की ओर बढ़ रही थी जो आने वाले वर्षों में ठीक 2:13 की ओर जा रही थी। एक ऐसा समय जो अगले 7 वर्षों तक हर रात किसी को वापस लेकर आने वाला था। अस्पताल में दो लड़ाइयां चल रही थी, एक डॉक्टर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर एक माँ अपने बच्चे के लिए बराबर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मेहरा ने पूछा, ब्लड प्रेशर कितना है? नर्स बोली, 60/40 सर, बीपी लगातार गिर रहा है। डॉक्टर मेहरा बोले, 1 यूनिट और ब्लड, जल्दी जल्दी। आरती आधी बेहोशी में है, उसकी पलकों के कोने भीगे हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से बोल पाती है। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक है। अरे आप घबराइए मत, हम आपको और बच्चे को दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप झूठ अच्छा नहीं बोल पाते, मैं समझ रही हूँ। डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कहते, उनकी आंखें मॉनिटर पे टिक जाती है। आरती धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, डॉक्टर साहब अगर ऐसा समय आ जाए कि आपको मुझ में और मेरे बच्चे में किसी एक को चुनना पड़े तो आप प्लीज मेरे बच्चे को बिना सोचे बचाइएगा। डॉक्टर मेहरा चौंक जाते हैं, अरे ऐसी बातें मत सोचिए। आरती कहती है, नहीं डॉक्टर मुझे सच पता है, मैं माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, आप वादा कीजिए आप उसे बचाएंगे चाहे मुझे जान देना पड़े। डॉक्टर बेहरा की आंखें भर आती है, वे कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बहुत भारी मन से कहते हैं, मैं वादा करता हूँ। आरती ने संतोष से आंखें बंद कर लिया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। नीरज ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था, बार बार दरवाजे की ओर देखता। माँ जी माला फेर रही थी। नीरज कहता है, माँ कुछ होगा तो नहीं? आज सुबह ही तो वो हंस रही थी, खीर बना रही थी, मुझसे लड़ भी रही थी, इतनी जल्दी इतना सब कैसे बदल सकता है? माँ जी
कुछ उत्तर नहीं देती, सिर्फ माला पेरती रहती हैं। भगवान पे भरोसा करो बेटा। तब तक नर्स अंदर घबरा के डॉक्टर मेहरा से कहती है, सर हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। डॉक्टर मेहरा की आंखें बंद हो जाती हैं। सिर्फ 2 सेकंड, लेकिन उन 2 सेकंड में एक परिवार का भविष्य तय करना है। उन्हें आरती का वादा याद आता है, उनकी आंखें, उनकी आवाज सब धीरे से कहते हैं, बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन थिएटर में कुछ क्षण सन्नाटा छा जाता है और फिर पूरा कमरा एक नवजात शिशु के रोने की आवाज से गूंज जाता है। आरती बहुत धीरे से आंखें खोलती है। उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसके होंठों पे मुस्कान आ जाती है। रो रहा है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत जोर से, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। आरती की आंखें बंद होने लगती है। वो अचानक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है, इतनी मजबूती से कि डॉक्टर साहब भी चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा वादा निभाया। डॉक्टर मेहरा का सर झुक जाता है। आरती सब समझ जाती है, लेकिन वो रोती नहीं, वो मुस्कुराती है, इतनी शांत मुस्कान। डॉक्टर मेहरा जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। आरती ने कहा, डॉक्टर साहब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की। अगर माँ और बच्चे में कभी चुनाव करना पड़े तो हर माँ अपने बच्चे को ही चुनेगी। आज आपने भी वही किया जो मैं करती। डॉक्टर मेहता फूट फूट कर रो पड़ते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बचा पाया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपने मुझे नहीं खोया, आपने तो मेरी पूरी दुनिया बचा ली। एक वादा कीजिए, अगर कभी मेरा बेटा पूछे मेरी माँ कहाँ है, तो उससे ये मत कहिएगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उससे कहिएगा उसकी माँ ने उसे चुना था। और अगर कभी रात के 2:13 पर उसे मेरी जरूरत पड़े, तो भगवान से कहिएगा मुझे बस थोड़ी देर के लिए उसे भेज दे। डॉक्टर मेहरा का गला भर जाता है। वे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। मैं वादा करता हूँ आरती, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। घड़ी धीरे धीरे 2:13 बजाती है। उसी क्षण आरती अपने बच्चे की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मेरा लाल, तेरी माँ जा रही है, लेकिन हर रात 2:13 पर वो तेरे पास आएगी। मॉनिटर पे एक लगातार बीप चल रही है। बाहर बिजली तेजी से कड़क रही है, बारिश बहुत तेज हो गई है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर मेहरा बाहर आते हैं। उनकी बाहों में एक नवजात शिशु है, लेकिन उसकी आंखों में 7 जन्मों का दुख। डॉक्टर मेहरा रूंधे गले से कहते हैं, नीरज जी आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। नीरज मुस्कुरा देता है, मगर अगले ही पल पूछता है, और आरती? डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कह पाते, बस सिर धीरे से सर झुका देते हैं। नीरज की मुस्कान उसी पल हमेशा के लिए टूट जाती है। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: प्यारे श्रोतागण, आरती की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और उसी घर में एक नन्ही सी जान अपनी माँ को ढूंढ रहा था। कभी कभी पहली रात सबसे लंबी होती है और खास तौर पे जब माँ साथ ना हो। नीरज घर में एंटर करता है अपने बच्चे को गोद में लिए। उसकी चाल में थकान है और एक खालीपन। माँ दरवाजे पे खड़ी है

हाथ में थाली जिसमें दीपक जल रहा है, लेकिन आज कोई स्वागत नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई मंगल ध्वनि नहीं। आज उसी घर में आरती की तस्वीर सजी है। तस्वीर के सामने फूल रखे हैं। माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो दीपक तस्वीर के सामने रखती हैं, बहुत सावधानी से, जैसे जरा सी भी चूक से सब बिखर जाएगा। कुछ पल वो तस्वीर को देखती रहती है, फिर उनकी आवाज टूटती है। भर्राए स्वर में कहती हैं, बहू तू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, सोचा था एक दिन माँ बनकर इस घर को हंसी से भर देगी, लेकिन तू तो अपनी सारी हंसी यहाँ छोड़कर चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। नीरज वहीं खड़ा है, वो तस्वीर को देखना चाहता है, लेकिन इतना दर्द है कि वो देख ही नहीं पाता। उसकी नजरें बार बार झुक जाती है। रात गहरी हो गई। नवजात बच्चा लगातार रोता है। थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर रोने लगता है। दादी माँ बच्चे को गोद में लेती हैं, धीरे धीरे झुलाती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लोरी भी गुनगुनाती हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता। उसका रोना जैसे किसी को पुकार रहा हो। नीरज कमरे में टहल रहा है, धीरे फिर तेज फिर रुक के। वो बेचैन है, उसकी सांसें भारी हैं। कुछ देर बाद वो रुकता है और कहता है, माँ इसने शायद अपनी माँ की खुशबू पहचान ली है। इसे कैसे समझाऊं कि जिसे ये ढूंढ रहा है वो। नीरज आगे नहीं बोल पाता, उसकी आवाज रुक जाती है। कुछ पल वो बस बच्चे को देखता रहता है, फिर धीरे से उसे गोद में लेता है, सीने में लगाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी माँ को नहीं बचा पाया। कमरे में सिर्फ बच्चे का रोना, माँ की और नीरज की सिसकियाँ रह जाती है। 2:12 हो गए। कमरे में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। बच्चा अभी भी रो रहा है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। धीरे धीरे 2:13, चांदी की घंटी धीरे से बजती है। पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैलने लगती है और बच्चा चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसे गोद में ले लिया हो। दादी चौंक जाती है, पूछती है, अरे नीरज ये क्या है, क्या तुमने घंटी बजाई है। पालना भी धीरे धीरे हिलने लगता है। माँ जी फुसफुसा के कहती हैं, हे राम। नीरज बहुत सावधानी से पालने के पास जाता है, अंदर झांकता है। उसका बेटा आरव अब रो नहीं रहा था, ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रहा है। उसकी छोटी सी मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है और फिर बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ उसने कस के पकड़ रखा है। और फिर कमरे में धीरे धीरे एक लोरी सुनाई दे जाती है, सो जा मेरे लाल, माँ यही है। आवाज बहुत हल्की है, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट। माँ जी रोते हुए कहती हैं, बहू तू आ गई। नीरज भी कुछ नहीं देख पाता, लेकिन उसके कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। वो पूछता है, आरती क्या सचमुच तुम हो। जैसे ही वो बोलता है, लोरी धीरे धीरे थमने लगती है। मोगरे की खुशबू भी हल्की पड़ने लगती है। पालना धीरे धीरे रुक जाता है और फिर कमरे में वही सन्नाटा। माँ और बेटे दोनों ही अभी इसी अनुभव में डूबे हुए थे कि दरवाजे के बाहर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। नीरज ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, बहुत ही परिचित आवाज, मत खोलो।
नीरज का शरीर एकदम सख्त हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो ये आवाज पहचानता है, अरे ये तो आरती की आवाज है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है, धीरे से शांत स्वर में कहता है, आरती अगर ये तुम्हारी चेतावनी थी तो मैं समझ गया, मैं अब बिना तुम्हारी बातें सुने कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। प्यारे श्रोतागण, उस रात नीरज ने दरवाजा नहीं खोला और कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे ये पता नहीं था कि अगर उसने वो दरवाजा खोला होता तो शायद उसका बेटा 7 साल का होने से पहले ही अपने पिता को खो देता, क्योंकि उस दस्तक के पीछे कौन था ये सच अभी आना बाकी था। सुबह हो गई, लेकिन उस घर में किसी को नींद नहीं आई। तभी पड़ोसी के रमेश जी का फोन आता है और वो पूछते हैं, नीरज भैया आपने दरवाजा तो नहीं खोला ना? नीरज कहता, नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे आपके दरवाजे पर रात की आंधी की वजह से 11,000 वोल्ट का तार दरवाजे पे गिर गया था, अगर कोई बाहर निकलता तो दादी के हाथ से तो लोटा गिर जाता है। नीरज भी एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आई आरती की आवाज, दरवाजा मत खोलना। वो आरती की तस्वीर की तरफ देखता है और फिर कहता है, आरती तुमने हमें बचा लिया। कुछ महीने बाद आरव धीरे धीरे घुटने के बल चलता है। घर में हंसी लौट आई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर रात 2:13 पर घंटी और मोगरे की खुशबू और वो लोरी। पर अब कोई डरता नहीं, अगर कभी लोरी में देर हो जाए तो दादी माँ मुस्कुरा के कहती हैं, अरे भाई आज बहू को देर हो गई, और सब एक साथ हंसते हैं। एक दिन आरव चलने की कोशिश करता है और वो लड़खड़ाता है तो किसी ने जैसे इसको थाम लिया है, वो गिरता नहीं है। आरती, नीरज भावुक होके कहता है, देखो आरती तुम्हारा बेटा चलने लगा। उस रात की लोरी भी अलग थी, 2:13 पे खुशी से भरी हुई थी, चलना सीख गया मेरा लाल, अब दुनिया उसकी राह बने। उस घर में अब डर नहीं था, वहाँ थी एक माँ की दुआ जो हर रात 2:13 पर अपने बच्चे को सुलाकर चली जाती थी। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, समय किसी का इंतजार नहीं करता। 7 वर्ष बीत गए। नन्हा आरव अब दूसरी कक्षा में पढ़ता था। दादी माँ के बाल पूरे सफेद हो चुके थे। नीरज की मुस्कान अब लौट आई थी। लेकिन रात के 2:13 पर हर रात सब जाग जाते थे, क्योंकि सबको पता था उस समय एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। आरव अब बहुत बातें करने लगा था। एक रात नीरज आरव के कमरे में बैठा था। आज उसने निश्चय किया कि वो अपने बेटे से सब पूछेगा। उसने कहा, बेटा एक बात पूछूं? हाँ पापा, पूछिए। जब मम्मी आती हैं, तो कैसे दिखती हैं? आरव ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, बिल्कुल फोटो जैसी, बस पापा थोड़ा ज्यादा मुस्कुराती हैं, और उनकी साड़ी से, उनके बालों से हमेशा मोगरे की खुशबू आती है। नीरज के हाथ कांप जाते हैं। वो तुमसे क्या बातें करती है बेटा?
2: बहुत सारी बातें पापा, कभी कभी तो आपकी बहुत शिकायत भी करती है।
1: दादी हंस पड़ती हैं। अरे भाई, हमारी बहू आज भी वैसे ही है लगता है। आरव कहता है, पापा, वो कहती है तुम्हारे पापा आज भी चाय में चीनी ज्यादा डालते हैं। नीरज एकदम चौंक जाता है। ये बात सिर्फ आरती जानती थी। कुछ देर बाद आरव बहुत गंभीर हो जाता है और कहता है, पापा मम्मी आजकल एक बात बार बार कहती हैं। क्या? उन्होंने कहा अब समय आ गया है, आप लोग डॉक्टर अंकल से मिले।
2: डॉक्टर मेहरा?
1: हाँ पापा। लेकिन क्यों? मम्मी कह रही थी 7 साल से एक इंसान मेरी वजह से हर रात रोता है, अब उसे आजाद करना है।
3: नीरज का चेहरा बदल जाता है। उसे पहली बार डॉक्टर मेहरा की भीगी आंखें याद आती है। ऑपरेशन थिएटर, वो झुका हुआ सर, वो टूटी हुई आवाज। क्या सचमुच डॉक्टर मेहरा किसी बात के लिए अपने को दोष दे रहे हैं?
1: अगले दिन नीरज, दादी और आरव तीनों डॉक्टर मेहरा के घर पहुँचे। 70 वर्ष के डॉक्टर मेहरा, झुके हुए कंधे, आँखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर गहरी थकान। उनके दीवार पर दर्जनों बच्चों की तस्वीर लगी है, लेकिन एक फ्रेम अलग रखा था, उसमें आरती की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर।
3: नीरज कहता है, डॉक्टर साहब आपने आरती की तस्वीर?
1: डॉक्टर मेहरा की आंखें भर आती है। कुछ मरीज नीरज डॉक्टर की फाइल से निकल जाते हैं, लेकिन उनके दिल से नहीं निकलते। वे कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते, फिर अचानक दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। आज मैं आपको एक सच बात बताने वाला हूँ, जो 7 साल से मेरे सीने पे पत्थर बनकर रखा है। बाहर हवा चल रही है, अंदर एकदम सन्नाटा, और अचानक पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैल जाती है। डॉक्टर मेहरा फुसफुसा के कहते हैं, आरती तुम क्या यहीं हो?
3: दोस्तों, 7 वर्षों से दबा हुआ सच अब सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो एक डॉक्टर को अपराधी बना गया, एक पति को अधूरा, और एक माँ को हर रात 2:13 पर अपने घर लौटने के लिए मजबूर करता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान की तरह उन्हें कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसका दर्द वे सारी उम्र अपने भीतर लिए फिरते हैं।
1: डॉक्टर मेहरा कहते हैं, नीरज जी उस रात की पूरी कहानी मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब समय आ गया है। डॉक्टर मेहरा उस रात की पूरी घटना बताते हैं, कैसे ऑपरेशन के दौरान हालत अचानक बिगड़ गई, कैसे उन्हें कुछ ही पलों में एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, और कैसे उस निर्णय ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी आवाज में
3: पछतावा साफ था। उस दिन से नीरज, मैंने अपने को माफ नहीं किया। नीरज और दादी माँ की आंखें नम थी। डॉक्टर मेहरा आगे बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद कुछ क्षणों के लिए आरती को होश आया था। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात कही थी। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया बल्कि एक माँ की तरह अपनी आखिरी इच्छा जताई। उसने बस इतना कहा था कि डॉक्टर साहब, जब भी उसका बच्चा उसे पुकारे, उसे उसके पास आने दिया जाए। दादी माँ रो पड़ती हैं। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज आती है। डॉक्टर मेहरा घुटने के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं, 7 साल से मैं हर रात 2:13 पे जाग जाता हूँ। ऐसा लगता है आरती शायद मुझसे नाराज होगी। पर इतने में आरव मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, देखिए देखिए मम्मी आ गई हैं। फिर कहता है, डॉक्टर साहब, मम्मी कह रही हैं, डॉक्टर अंकल अब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की, आपने मेरा वादा पूरा करवाया, आप अपने आप को माफ कर दीजिए। डॉक्टर मेहरा की रुलाई फूट पड़ती है। वे तस्वीर के सामने सिर झुका देते हैं। मोगरे की तेज लेकिन मधुर खुशबू, घंटी की आवाज और कमरे में मौजूद चारों लोग एक साथ वही लोरी सुनते हैं, सो जा मेरे लाल। मगर अब किसी को किसी बात का डर नहीं था। श्रोतागण, 7 वर्षों का बोझ एक पल पे उतर गया। एक डॉक्टर को माफी मिल गई, एक पति को उत्तर मिल गया, एक दादी को सुकून मिल गया, लेकिन एक माँ को अभी एक वादा पूरा करना था। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
4: चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे।

श्रोतागण, कभी कभी किसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भूत नहीं होता, प्रेम होता है। और प्रेम जब वचन बन जाए तब उसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती। आइए सुनते हैं आखिरी लोरी का अंतिम अध्याय। डॉक्टर मेहरा के घर से वापस आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। अब कोई डर नहीं था। हर रात ठीक 2:13 पर सब कुछ एक तय क्रम से होने लगा। दादी उठती, दीपक जलाती, नीरज खिड़की खोल देता और आरव हल्की मुस्कान के साथ कहता, मम्मी मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर वही परिचित संकेत, चांदी की घंटी की हल्की आवाज, टन मोगरी की खुशबू धीरे धीरे कमरे में फैल जाती और लोरी शुरू हो जाती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। लोरी वही थी, घर वही था, पर उसके शुरू में एक गहरी विदाई का एहसास था। आरव धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन आंख में आंसू भी थे। नीरज ने पूछा, क्या हो गया बेटा तुमको? आरव कहता है, मम्मी कह रही है आज वो आखिरी बार आई है, दादी की आंखें भर आती है। नहीं नहीं बहू, इतनी मत, जल्दी मत जा। आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, पापा, दादी, मम्मी कह रही हैं, अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो वहीं रहूँगी जहाँ आपने मुझे हमेशा रखा है, अपने आशीर्वाद में। नीरज धीरे धीरे उठता है, आरती की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ क्षण चुप रहता है, जैसे शब्द खोज रहा हो, फिर शांत स्वर में बोलता है, आरती जब तुम आई थी मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, तुमने हर वादा निभाया, यहाँ तक कि वो भी जो मृत्यु के बाद का था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। आज कह रहा हूँ धन्यवाद, तुमने मुझे पिता बनना सिखाया, धन्यवाद मुझे माँ का प्रेम समझाने के लिए, और धन्यवाद उस रात के लिए जब तुमने हमारे घर की रखवाली की, मेरी जान बचाई। उसकी आवाज हल्की सी कांप जाती है। अब तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे उसके सामने खड़ा हो वो भी अपना छोटा सा हाथ आगे करता है। मम्मी आपने कहा था मैं पापा का सहारा बन जाऊं, तब आप चली जाएंगी। देखिए अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पापा को दवा याद दिलाता हूँ, दादी का ध्यान रखता हूँ, मैं अब रोता नहीं हूँ, पढ़ाई अपने आप से करता हूँ। आप जाइए माँ, आराम करिए, मैं पापा का हाथ पकड़ूंगा माँ। इतना कहकर वो एक हाथ से नीरज का और दूसरे से दादी का हाथ पकड़ लेता है। तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहली बार और आखिरी बार आरती की आवाज साफ सुनाई देती है, बहुत शांत, बहुत स्नेह से। अम्मा अपना ध्यान रखिएगा, नीरज समय पे खाना खा लिया करना, और मेरे लाल याद रखना, माँ कभी दूर नहीं जाती, सिर्फ दिखाई देना छोड़ देती है। कुछ क्षण का मौन, फिर वही लोरी, सोचा मेरे लाल अब तेरा हर सपना तेरी माँ की दुआ है। लोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है, पोगरे की खुशबू भी धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। दीपक की लौ एक बार हल्की सी तेज होती है, फिर स्थिर हो जाती है। अगली रात घड़ी में फिर वही समय 2:13। तीनों जाग रहे हैं, लेकिन इस बार न घंटी, न लोरी, न मोगरे की खुशबू, घर पूरी तरह शांत। नीरज कहता है, माँ वो अपना वादा निभा के चली गई। उसके आंख में आंसू है लेकिन उनमें सुकून है। दादी माँ भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है, जा बहू अब चैन से रहना, तेरा घर तेरा लाल हम सब संभाल लेंगे। आरव खिड़की से आसमान की ओर देखता है,
एक चमकीला तारा टिमटिमा रहा है। वो धीरे से हाथ हिलाता है और कहता है, गुड नाइट मम्मी। श्रोताओं, आखिरी लोरी यहीं खत्म होती है, पर उसका एहसास शायद कभी नहीं खत्म होगा। अगर माँ साथ है तो उसे गले लगा लीजिए, और अगर नहीं तो उसकी एक सीख आज भी जी लीजिए, क्योंकि माँ का प्रेम कभी जाता नहीं, बस एक अनसुनी लोरी बनकर साथ रहता है। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे थे 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। अपनों का हाथ थामे रखिए, क्योंकि कुछ वादे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ है मीठी छुरी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम

0: इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।